एफएम के 101.7 मेगा हर्ट्स पर हम आकाशवाणी के चायपासा केंद्र से बोल रहे हैं। आज शनिवार है, शक संवत 1948, भाद्रपद माह की तिथि 13, तदनुसार 5 सितंबर ईस्वी सन 2026। इस समय हमारे स्टूडियो की

0: एफएम के 101.7 मेगा हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये चायबासा केंद्र है। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में अब से कुछ ही देर में सुबह के 6 बजने वाले हैं। वक्त है आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित समाचारों का, तो आइए समाचारों के लिए आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी दिल्ली।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। शिक्षक दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षकों से अपने ज्ञान को लगातार बढ़ाने, नई तकनीक अपनाने और पढ़ाने के नए तरीकों का इस्तेमाल करने का आह्वान किया है। राष्ट्रपति ने कहा कि शिक्षक विद्यार्थियों की प्रतिभा को निखारने और उनके चरित्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने शिक्षकों से विद्यार्थियों में स्वतंत्र सोच और जिज्ञासा की भावना विकसित करने का आग्रह किया। राष्ट्रपति ने सभी समर्पित शिक्षकों के योगदान के लिए आभार व्यक्त किया और कहा कि वो ऐसी पीढ़ियों का निर्माण करते रहे जो देश को नई ऊंचाइयों तक ले जाएं। उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति और शिक्षाविद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को श्रद्धांजलि देते हुए उन्हें महान शिक्षक बताया। शिक्षक दिवस पर हर वर्ष 5 सितंबर को डॉक्टर राधाकृष्णन की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। इस अवसर पर राष्ट्रपति आज नई दिल्ली में 48 स्कूली शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगी। ये शिक्षक 27 राज्य, 7 केंद्र शासित प्रदेश और 6 केंद्रीय संस्थानों से चुने गए हैं। इसके अलावा उच्च शिक्षा संस्थानों और पॉलिटेक्निक के 21 शिक्षकों और प्राध्यापकों को भी राष्ट्रीय पुरस्कार दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय का ये कॉलेज देश के प्रमुख उच्च शिक्षण संस्थानों में से एक है। कॉलेज की स्थापना वर्ष 1926 में उद्योगपति और समाजसेवी सर श्रीराम ने की थी। पिछले 100 वर्ष में इस संस्थान ने कई विद्वान, पेशेवर और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने वाली प्रतिभाओं को तैयार किया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज चेन्नई के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो इंडिया वॉल्स में शामिल होंगे। ये हृदय से जुड़ी बीमारियों के इलाज को बेहतर बनाने पर केंद्रित एक राष्ट्रीय शैक्षणिक सम्मेलन है। ब्रिक्स देशों के मुख्य न्यायाधीशों का 3 दिन का सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया कि सम्मेलन में ब्रिक्स सदस्य और सहयोगी देशों के मुख्य न्यायाधीश और वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी भाग ले रहे हैं।
2: भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने रूस, चीन, संयुक्त अरब अमीरात, दक्षिण अफ्रीका, ईरान और उज्बेकिस्तान सहित कई देशों के न्यायिक प्रतिनिधिमंडल के प्रमुखों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। इन बैठकों में देशों के बीच न्यायिक सहयोग को मजबूत करने, न्यायपालिका की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को एकीकृत करने, तेजी सैनिक प्रक्रियाएं पूरी करके लोगों के बीच संबंध बेहतर करने और अलग अलग देशों के बेहतरीन कानूनी तौर तरीकों पर चर्चा की गई। अनुपम मिश्र के साथ ऋषु जायसवाल, आकाशवाणी समाचार दिल्ली।
1: विदेश मंत्रालय ने बताया है कि नेपाल के बाढ़ग्रस्त त्रिशूली बाजार इलाके से 3 और भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकाला गया है। इनमें 5 साल का एक बच्चा भी शामिल है। सुरक्षित निकाले गए भारतीयों की संख्या 169 हो गई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि 275 भारतीय अब भी लापता हैं। वहीं चीन से 1907 भारतीय सुरक्षित नेपाल पहुंच चुके हैं। उन्होंने बताया कि भारत ने नेपाल में बाढ़ के बाद अब तक लगभग 95 टन राहत सामग्री भेजी है। भारत आगे भी नेपाल की जरूरत के अनुसार मदद जारी रखेगा।
3: We have extended our solidarity and support to the government and people of Nepal.
4: हमने नेपाल सरकार और वहाँ की जनता के प्रति अपनी एकजुटता और समर्थन व्यक्त किया है। एक करीबी मित्र और साझेदार के रूप में भारत ने तुरंत सहायता पहुँचाई और हम नेपाल के पुनर्निर्माण और राहत के प्रयासों में लगातार सहयोग करते रहेंगे।
3: And recovery efforts in the country.
1: महिला क्रिकेट में T20 एशिया कप के ग्रुप ए के अंतिम मुकाबले में आज भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। ये मैच दुबई में रात 8 बजे से शुरू होगा। भारत ने थाईलैंड और हांगकांग को हराकर पहले ही सेमीफाइनल में जगह बना ली है। उधर विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला का तीसरा चरण आज गुजरात के अहमदाबाद में शुरू होगा। इसमें 19 देशों के 105 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। भारत पहली बार इस प्रतियोगिता की मेजबानी कर रहा है। बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय पुरुष डबल्स की जोड़ी आज चाइना मास्टर्स के सेमीफाइनल में मलेशिया की जोड़ी के साथ खेलेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलख कहउ मुनिनाथ। हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजसु विधि हाथ। श्री रामचरित मानस का ये दोहा भारतीय जीवन दर्शन का मानो एक आधार स्तंभ है। राजा दशरथ की अंत्येष्टि तथा दशगात्र विधान संपन्न हो जाने के पश्चात मुनि वशिष्ठ ने राजसभा में भरत को धीरज बंधाते हुए ये वचन कहे थे। राजा दशरथ के निधन पर सोच करने का औचित्य नहीं है। सोच उस राजा के बारे में करना चाहिए जो नीति निपुण नहीं होता और जिसे प्रजा प्राणों के समान प्रिय नहीं होती। मुनि वशिष्ठ ने इस प्रकार नारी वर्ग सहित समाज के विभिन्न वर्णों, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थी तथा अन्य लोगों के हित अहित और उन कार्यकलापों की चर्चा की जिनके कारण वे सोच करने के हेतु बनते हैं। राजा दशरथ तो सब प्रकार से बड़भागी थे, अतः उनके कारण विषाद व्यर्थ है। उन्होंने भरत को राज दिया है तो भरत को पिता के वचन को साकार करना चाहिए।

आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान। आज के कलाकार थे भूपेंद्र सिंह और शोभना राव। संगीत था सतीश भाटिया का। FM के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये चायभाषा केंद्र है।

श्रोताओं, इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 6:20 हो चुके हैं। वक्त हो चला है भक्ति गीतों के कार्यक्रम समर्पण का, तो लीजिए प्रस्तुत है भक्ति गीतों का कार्यक्रम समर्पण। भक्ति गीतों के कार्यक्रम समर्पण की ये पहली भक्ति रचना श्रोताओं हम आपको सुनवा रहे हैं गायक कलाकार अनुराधा पौडवाल और साथियों के स्वरों में।

गायक कलाकार पीयूषा कैलाज अनुज के स्वरों में ये भक्ति रचना आपने सुनी। आइए कार्यक्रम की अगली भक्ति रचना अब हम आपको सुनवाते हैं भजन गायक नितिन मुकेश के स्वर में।

गायक कलाकार नितिन मुकेश के स्वर में गाई हुई इस भक्ति रचना के साथ ही श्रोताओं, हमारा आज का ये भक्ति गीतों का कार्यक्रम समर्पण अब यहीं समाप्त होता है।

श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 6:40 हो चुके हैं। वक्त हो चला है आप सभी श्रोताओं को हमारे यहाँ से प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी देने का। तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण।

आइए श्रोताओं, अब हम आपको हमारे यहाँ से प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा दे दें। श्रोताओं, अब से कुछ ही देर बाद यानी कि सुबह के 6:45 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सुगम संगीत। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे एक ही गायक कलाकार मृणालिनी आखुरी को। सुबह के 7 आप सुनेंगे आप सभी श्रोताओं का पसंदीदा कार्यक्रम हिंदी फिल्म संगीत का कार्यक्रम जोहार चायबासा। सुबह के 8 का प्रसारण समय रहेगा आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित समाचार प्रभात का। यहीं से प्रसारित मॉर्निंग न्यूज को आप सुनेंगे सुबह के 8:15 पर और सुबह के 8:30 पर हम आपको लिए चलेंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र, जहां से आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। लोक गीतों का कार्यक्रम माटी की महक, इस कार्यक्रम का प्रसारण समय रहेगा सुबह के 8:40 का। आज के इस कार्यक्रम के तहत हम आपको सुनवाएंगे संथाली लोकगीत कलाकार सोना मुर्मू और उनके साथियों के स्वरों में। कार्यक्रम विविधा, इस कार्यक्रम का प्रसारण समय रहेगा सुबह के 9 का। 9:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम रस रंजन और पूर्वाहन के 10 आप सुनेंगे कार्यक्रम फिल्म संगीत। पूर्वाहन के 10:30 पर हम आपको लिए चलेंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र, जहां से आप सुनेंगे आकाशवाणी रांची के कार्यक्रमों को। दोपहर के 1:10 पर आप सुनेंगे आकाशवाणी रांची से प्रसारित प्रादेशिक समाचार और 1:20 पर आप सुन सकेंगे आकाशवाणी रांची के कार्यक्रमों को, जो कि प्रसारित किए जाएंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र से। दोपहर के 2:55 पर आप सुनेंगे मुख्य समाचार। दोपहर के 3 आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित न्यूज इंडिया समाचार। दोपहर के 3:15 पर हम आपको एक बार फिर से लिए चलेंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र, जहां से आप सुनेंगे आकाशवाणी रांची के कार्यक्रमों को। संध्या के 4 प्रसारित होंगे मुख्य समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से। 4:02 पर आप आनंद लेंगे आकाशवाणी रांची के कार्यक्रमों का। संध्या 5 आप सुनेंगे आकाशवाणी रांची से प्रसारित मुख्य समाचार और 5:02 पर आप जानकारी लेंगे हमारे यहाँ से प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की, यानी कि आप सुनेंगे कार्यक्रम विवरण को। संध्या के 5:05 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम गुलदस्ता। आज के कार्यक्रम गुलदस्ता के तहत आप सुनेंगे भूले बिसरे गीत। संध्या के 5:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत। संध्या 6 आप सुन सकेंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र से प्रसारित मुख्य समाचार। संध्या के 6:02 पर प्रसारित होगा बांग्ला कार्यक्रम सात रंग और संध्या के 6:30 पर आप सुनेंगे साप्ताहिक कार्यक्रम आपका स्वास्थ्य। संध्या 7 आप सुनेंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र से प्रसारित प्रादेशिक समाचार। यहीं से प्रसारित जिले में आजकल का प्रसारण होगा संध्या 7:10 पर। संध्या के 7:15 का प्रसारण समय रहेगा आप सभी श्रोताओं के फरमाइशी खतों पर आधारित फिल्म संगीत के कार्यक्रम आपकी पसंद का। संध्या 7:30 पर आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक होंगे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। रात्रि के 8 का प्रसारण समय रहेगा आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित महिला एशिया कप T20 क्रिकेट मैच के 2026 के अंतर्गत भारत और पाकिस्तान के बीच खेले जाने वाले क्रिकेट मैच का आंखों देखे हाल का।
रात्रि के 8:45 पर आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित समाचार संध्या। यहीं से प्रसारित न्यूज़ एट 9 को आप सुनेंगे रात्रि के 9:00। 9:15 पर हम आपको एक बार फिर से लिए चलेंगे आकाशवाणी दिल्ली, जहां से आप सुनेंगे महिला एशिया कप T20 क्रिकेट मैच 2026 के तहत खेले जा रहे भारत और पाकिस्तान के बीच के क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल। इस मैच के समापन के बाद आप सुनेंगे हमारे यहाँ से सभा समापन की उद्घोषणा। आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण। ये आकाशवाणी का चायवासा केंद्र है FM के 101.7 MHz पर। प्रस्तुत है हमारा आज का अगला कार्यक्रम सुगम संगीत। कार्यक्रम सुगम संगीत सुनने वाले हमारे तमाम श्रोता दोस्तों का इस कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत है। श्रोताओं, आज के कार्यक्रम सुगम संगीत में हम आपको सुनवा रहे हैं एक ही गायक कलाकार मृणालिनी आखुरी को।

गायक कलाकार मृणालिनी आखुरी के स्वर में गाए हुए इस गीत के साथ ही हमारा आज का ये कार्यक्रम सुगम संगीत अब यहीं समाप्त होता है।

हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 7 बज चुके हैं। वक्त हो चला है आप सभी श्रोताओं के पसंदीदा कार्यक्रम फिल्म संगीत के कार्यक्रम जोहार चाईबासा का। तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम जोहार चाईबासा।

कार्यक्रम जोहार चाय पासा सुनने वाले हमारे तमाम श्रोता दोस्तों को मेरा यानी कि आपकी रेडियो सखी संगीता का प्यार भरा नमस्कार जोहार।

बहुत बहुत स्वागत है आप सभी श्रोताओं का हमारे आज के इस कार्यक्रम में। श्रोताओं, आज की प्यारी सी सुहानी सी सुबह की शुरुआत आज हम कर रहे हैं चंद सदाबहार नगमों के साथ। तो आइए करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत फिल्म आंखें के इस गीत के साथ, जिसे आवाज दी है गायक कलाकार लता मंगेशकर ने।

मुझको भी रहा था बना ले नंदलाल। श्रोताओं, ये गीत आपने सुना फिल्म अनकही से। आवाज़ थी गायक कलाकार आशा भोसले की। इस गीत के बोल लिखे थे बाल कवि वैरागी ने और धुन थी जयदेव की। आइए अब इसके बाद हम आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला नगमा फिल्म अवतार से। आवाज़ें हैं गायक कलाकार किशोर कुमार और लता मंगेशकर की, बोल आनंद बख्शी के हैं और धुन है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की।

फिल्म अवतार का ये गीत श्रोताओं आपने सुना गायक कलाकार किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। इस गीत के बोल लिखे थे आनंद बख्सी ने और धुन थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की। इस गीत के बाद आइए सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला नगमा फिल्म राजा और रंग से। बोल है आनंद बख्सी के, धुन एक बार फिर से लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की और इस गीत को अपनी आवाज़ दी है गायक कलाकार मोहम्मद रफ़ी ने।

लूट मार सुनवा रहे हैं कार्यक्रम का अगला नगमा इसी फिल्म से। ये गीत निकला है अमित खन्ना की लेखनी से, सजा है राजेश रोशन की धुन पे और आवाज़ है गायक कलाकार आशा भोसले की।

गायक कलाकार किशोर कुमार, मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर के स्वरों में आपने ये गीत सुना फिल्म बदलते रिश्ते से। इस गीत के बोल लिखे थे अनजान ने और धुन थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की। इस गीत के बाद श्रोताओं आइए सुनते हैं ये जरूरी संदेश।

आकाशवाणी चायबासा से हमारे श्रोता इस समय आनंद ले रहे हैं फिल्म संगीत के कार्यक्रम जोहार चायबासा का। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत फिल्म बाबू से। आवाज़ गायक कलाकार लता मंगेशकर की है, बोल मजरू सुल्तानपुरी के हैं और धुन दी है राजेश रोशन ने।

फिल्म बापू के इस गीत के बाद श्रोताओं सुनवा रहे हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत गायक कलाकार लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम के युगल स्वरों में फिल्म एक दूजे के लिए से। इस गीत के बोल लिखे हैं आनंद बख्सी ने और धुन से सजाया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

फिल्म प्रेम रोग से ये गीत श्रोताओं आपने सुना, गायक कलाकार सुरेश वाडेकर और लता मंगेशकर के युगल स्वरों में। इस गीत को लिखा था पंडित नरेंद्र शर्मा ने और धुन थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की। आइए अब कार्यक्रम को अंजाम की ओर लिए चलते हैं और सुनवाते हैं आज के कार्यक्रम का ये आखिरी गीत फिल्म दो दिलों की दास्तां से। आवाजें एक बार फिर से गायक कलाकार लता मंगेशकर और सुरेश वाडेकर की, बोल लिखे हैं अनजान ने और धुन है कल्याण जी आनंद जी की।

फिल्म दो दिलों की दास्ता के इस गीत के साथ ही श्रोताओं, हमारा आज का ये कार्यक्रम जोहार चायबासा अब यहीं समाप्त होता है। अब इस कार्यक्रम से मुझे यानी संगीता को विदा दें। नमस्कार।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम जोहार चायबासा। ये आकाशवाणी का चायबासा केंद्र है FM के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में अब से कुछ ही देर में सुबह के 8 बजने वाले हैं। वक्त है आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित समाचारों का। तो आइए समाचारों के लिए आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी दिल्ली। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षक दिवस पर शिक्षकों से प्रौद्योगिकी अपनाने और नवीन शिक्षण पद्धतियों को लागू करने का आग्रह किया। 48 शिक्षकों को आज राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह को संबोधित करेंगे। सरकार ने ISO 10 कंटेनरों में पेट्रोलियम के आयात और परिवहन के लिए 3 साल की अनुमति तथा कड़े सुरक्षा नियमों का प्रस्ताव रखा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, भारत संघर्ष समाप्त करने में यूक्रेन और रूस के साथ निरंतर संपर्क में है। संयुक्त राष्ट्र ने अफ्रीका का सटीक आकार दर्शाने वाले नए विश्व मानचित्र को अपनाने के पक्ष में मतदान किया।
1: विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला का तीसरा चरण अहमदाबाद में आज से शुरू और दुबई में महिला T20 एशिया कप क्रिकेट में आज भारत का सामना पाकिस्तान से।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षक दिवस पर शिक्षकों से प्रौद्योगिकी अपनाने और नवीन शिक्षण पद्धतियों को लागू करने का आग्रह किया है। शिक्षक दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि शिक्षक विद्यार्थियों की प्रतिभा निखारने और चरित्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि आज 48 शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा।
2: हर वर्ष 5 सितंबर को पूरे भारत में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। यह दिन देश के पूर्व राष्ट्रपति, प्रसिद्ध शिक्षाविद, लेखक और दार्शनिक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। यह अवसर राष्ट्र निर्माण में शिक्षकों और शिक्षाविदों की महत्वपूर्ण भूमिका का सम्मान करता है। शिक्षक विद्यार्थियों के जीवन को बदलते हैं, पीढ़ियों को दिशा देते हैं और समाज की नींव को मजबूत करते हैं। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज सुबह नई दिल्ली में 48 स्कूली शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगी। चयनित 48 शिक्षक 27 राज्यों, 7 केंद्र शासित प्रदेशों और 6 केंद्रीय सरकारी संगठनों से हैं। राष्ट्रपति उच्च शिक्षा संस्थानों और पॉलिटेक्निक के 21 शिक्षकों और संकाय सदस्यों को भी राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करेंगी। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कल शाम राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार विजेताओं से बातचीत की। श्री जोशी ने कहा कि शिक्षकों को बच्चों को 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने के लिए तैयार रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि विद्यार्थी देश की सबसे बड़ी शक्ति हैं और उन्हें हर क्षेत्र में सक्षम बनाने की दिशा में काम किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय का ये कॉलेज देश के प्रमुख उच्च शिक्षण संस्थानों में से एक है। इसकी स्थापना वर्ष 1926 में उद्योगपति और समाजसेवी सर श्रीराम ने की थी। पिछले 100 वर्ष में इस संस्थान ने कई विद्वान, पेशेवर और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने वाली प्रतिभाओं को तैयार किया है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज चेन्नई इंडिया वॉल्व सम्मेलन में शामिल होंगे। यह हृदय से जुड़ी बीमारियों का उपचार बेहतर बनाने पर केंद्रित एक राष्ट्रीय शैक्षणिक सम्मेलन है। उपराष्ट्रपति गिंडी में इंडिया वॉल्व्स पंजिका का विमोचन भी करेंगे। सरकार ने ISO 10 कंटेनरों में पेट्रोलियम के आयात और परिवहन के लिए 3 साल तक की अनुमति देने का प्रस्ताव किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने पेट्रोलियम संशोधन नियम 2026 का मसौदा जारी किया है। इसमें आवेदन प्राप्त होने पर 7 कार्य दिवस में मंजूरी देने का प्रस्ताव है। इसके अनुसार पेट्रोलियम से भरे या पेट्रोलियम के लिए इस्तेमाल होने वाले ISO 10 कंटेनरों को बिना अनुमति आयात नहीं किया जा सकेगा। आवेदन पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन के ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से करना होगा और इसके साथ जरूरी तकनीकी और सुरक्षा दस्तावेज जमा कराने होंगे। मंत्रालय ने मसौदे पर 30 दिन के भीतर सुझाव और आपत्तियां मांगी हैं। प्राप्त सुझावों पर विचार करने के बाद नियमों में बदलाव किया जाएगा। ये समाचार हमारे NewsOnAIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर उपलब्ध हैं।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
5: एवरी ग्रेट जर्नी बिगिंस विद पीपल कमिंग टुगेदर टू लिसन, टू लर्न, टू इमेजिन व्हाट्स पॉसिबल। दिस इज द ब्रिक्स 2026, अ मोमेंट where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with

0: the people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली के भारत मंडपम में 11 से 13 सितंबर तक ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इस कड़ी में ब्रिक्स देशों के मुख्य न्यायाधीशों का 3 दिन का सम्मेलन कल शुरू हो गया। सम्मेलन के लिए व्यापक स्तर पर सुरक्षा और तैयारियां की जा रही हैं। आज मोटर कारकेड का पूर्वाभ्यास किया जाएगा। दिल्ली यातायात पुलिस के अनुसार पूर्वाभ्यास सवेरे 10 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगा। इस दौरान भारत मंडपम और आसपास के क्षेत्रों में 35 से अधिक सड़कों पर यातायात नियंत्रित रहेगा। यातायात पुलिस ने रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डे जाने वाले यात्रियों को अतिरिक्त समय लेकर निकलने और वैकल्पिक मार्ग अपनाने की सलाह दी है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत संघर्ष समाप्त करने के लिए रूस और यूक्रेन के लगातार संपर्क में है। वॉर्सो में पोलैंड की विदेश मंत्री राडोस्लाव सिरोस्की के साथ बातचीत के बाद उन्होंने कहा कि युद्ध का कोई विजेता नहीं होता।
2: भारत का मानना है कि अंतहीन युद्ध समाप्त होना चाहिए और युद्ध का कोई विजेता नहीं होता। हर अतिरिक्त दिन का अर्थ है अधिक मौतें, अधिक तबाही, दोनों देशों के लिए अधिक नुकसान और बाकी दुनिया के लिए अधिक लागत। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने इस चिंता को सार्वजनिक रूप से व्यक्त किया था। इसलिए हमारे प्रयास बातचीत और कूटनीति को बढ़ावा देने पर केंद्रित होने चाहिए।
1: विदेश मंत्री ने कहा कि भारत संघर्ष समाप्त करने में हर संभव मदद करने के लिए तैयार है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उनके विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और उनके दामाद जेरेड कुशनर रूस और यूक्रेन का दौरा करेंगे। दोनों का उद्देश्य रूस यूक्रेन युद्ध समाप्त करने के लिए शांति समझौते की कोशिश करना है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अफ्रीका का वास्तविक आकार बेहतर ढंग से दिखाने वाले नए विश्व मानचित्र के पक्ष में मतदान किया है। 164 देशों ने प्रस्ताव का समर्थन किया जबकि अमेरिका ने इसके विरुद्ध मतदान किया। 6 देश मतदान से अलग रहे। मर्केटर मानचित्र में अफ्रीका का आकार वास्तविकता से बहुत छोटा दिखाई देता है जबकि अफ्रीका ग्रीनलैंड से लगभग 14 गुना बड़ा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी एक्सपर्ट @AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
1: मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिन तक पूर्वोत्तर राज्यों बिहार, मध्य प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तराखंड, सिक्किम, बंगाल और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी तेज वर्षा की आशंका है। लखनऊ से हमारे संवाददाता ने बताया है कि उत्तर प्रदेश में भी कई जिले बाढ़ से जूझ रहे हैं।
4: राज्य में अयोध्या, वाराणसी, आजमगढ़, बलिया, गोरखपुर, लखीमपुर खीरी, चित्रकूट और बाराबंकी सहित 26 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर बाढ़ग्रस्त इलाकों में राहत और बचाव अभियान लगातार जारी है। बाढ़ राहत आयुक्त के मुताबिक लगभग 3.5 लाख से अधिक आबादी बाढ़ से प्रभावित होने के बावजूद राहत और बचाव तंत्र की सक्रियता से लगभग 72,000 बाढ़ राहत किट और 3.5 लाख से अधिक प्रभावितों को लंच पैकेट वितरित किए जा चुके हैं। इसके अलावा 17,000 से ज्यादा लोगों को शरणालयों सहित सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है। इस बीच मौसम विभाग ने प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: बिहार के 14 जिलों में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं और निचले इलाकों में पानी भरा हुआ है।
5: आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार 8,50,000 से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। पशुपालन विभाग के अनुसार करीब 70,000 पशु भी प्रभावित हुए हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों की सुविधा के लिए 700 नावों का परिचालन किया जा रहा है। वहीं बाढ़ राहत शिविर और सामुदायिक रसोई घर भी संचालित किए जा रहे हैं। जल संसाधन विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों में गंगा और सोन नदियों के जलस्तर में कुछ कमी आने की संभावना है। हालांकि पटना में पुनपुन नदी के बढ़ते जलस्तर के कारण गया पटना रेलखंड पर रेल परिचालन प्रभावित हुआ है। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
1: भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व कल पूरे देश में श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया गया। श्री कृष्ण जन्माष्टमी से जुड़ा दही हंडी उत्सव आज महाराष्ट्र में धूमधाम से मनाया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
6: मुंबई और आसपास के जिलों में दही हांडी भगवान श्री कृष्ण के जन्म से जुड़ा एक पारंपरिक उत्सव है। इसमें गोविंदा मानव पिरामिड बनाकर मिट्टी के हांडी फोड़ते हैं। इस उत्सव के दौरान कुछ गोविंदा कभी कभी चोटिल हो जाते हैं, इसे ध्यान

0: देखते हुए बीएमसी ने अस्पतालों को पूरी तरह तैयार रहने और घायल गोविंदाओं को मुफ्त उपचार उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। इस बीच महाराष्ट्र सरकार ने 1,60,000 गोविंदाओं के लिए बीमा कवरेज की घोषणा की है। अस्पताल में भर्ती होने स्थायी पूर्ण या आंशिक दिव्यांगता की स्थिति में 1,00,000 से 10,00,000 रुपए तक का बीमा लाभ दिया जाएगा। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला का तीसरा चरण आज गुजरात के अहमदाबाद में शुरू होगा। इसमें 19 देशों के 105 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। भारत पहली बार इस प्रतियोगिता की मेजबानी कर रहा है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कल शाम प्रतियोगिता का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि भारत आने वाले वर्षों में खेलों का प्रमुख केंद्र बनेगा।
2: 19 देशों से 108 से ज्यादा पैरा एथलीट्स हिस्सा ले रहे हैं उस वक्त कि अहमदाबाद, गुजरात और भारत आने वाले दिनों में खेल जगत की, चाहे वो ओलंपिक्स से जुड़े हुए खेल हो, सभी प्रकार के खेल का एक बहुत बड़ा सेंटर बनने वाला है।
1: एशिया कप महिला टी20 क्रिकेट के ग्रुप ए के अंतिम मुकाबले में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। ये मैच दुबई में रात 8 बजे से शुरू होगा। भारत ने थाईलैंड और हांगकांग को हराकर पहले ही सेमीफाइनल में जगह बना ली है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
3: धन्यवाद मुकेश। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यूएस उपग्रह के सफल प्रक्षेपण की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान ने लिखा है, इसरो ने अंतरिक्ष में स्थापित किया तीसरा नेत्र। जनसत्ता की सुर्खी है, देश के पहले उपग्रह का प्रक्षेपण, इसरो की एक और कामयाबी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो और उद्योग जगत की साझेदारी को अंतरिक्ष क्षेत्र की बड़ी उपलब्धि बताया। कहा, हमारे देश के लिए गर्व का पल। दैनिक जागरण के अनुसार, प्रधानमंत्री जिस प्रोजेक्ट का करेंगे लोकार्पण, उसकी 6 महीने तक होगी निगरानी। कुछ घटनाओं से सीख लेकर NHAI ने कार्यक्रमों की SOP में जोड़े नए दिशा निर्देश। दैनिक भास्कर ने शिक्षक दिवस पर विशेष सुर्खी से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का विशेष लेख साझा करते हुए लिखा है, विजेता होते हैं शिक्षक, लेकिन शिष्य से पराजित होने की शिक्षा उन्हें महान बनाती है। पंजाब केसरी ने शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी के लेख पर विकसित भारत के सफर में शिक्षकों की भूमिका देते हुए लिखा है, ये दिन सिर्फ सराहना करने के दिन से कहीं ज्यादा मायने रखता है। पंजाब केसरी की सुर्खी है, नंद के घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। मथुरा में रात 12 बजते ही हर तरफ उल्लास और हाथी घोड़ा पालकी। जय कन्हैया लाल की का उत्साह देखने को मिला। राजस्थान पत्रिका का शीर्षक है, ब्रज में बाजे बधाई नंद घर आई कन्हाई। नवभारत टाइम्स ने चमत्कार शीर्षक से दिया है, नेपाल में सुरंग से 9 दिन बाद 2 को जिंदा बचाया, जन्माष्टमी पर सुरक्षित निकाले गए। फोरमैन संजय शाह ने कहा, हरे कृष्ण महामंत्र जपता रहा। अमर उजाला की सुर्खी है, सुरंग में गूंजा जिंदगी का मंत्र। राजस्थान पत्रिका ने बदलेगी गैजेट की दुनिया देते हुए लिखा है, बेकार जाने वाली गर्मी से भी बनेगी कान की बिजली।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षक दिवस पर शिक्षकों से प्रौद्योगिकी अपनाने और नवीन शिक्षण पद्धतियों को लागू करने का आग्रह किया। 48 शिक्षकों को आज राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह को संबोधित करेंगे। सरकार ने ISO टैंक कंटेनरों में पेट्रोलियम के आयात और परिवहन के लिए 3 साल की अनुमति तथा कड़े नियमों का प्रस्ताव रखा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, भारत संघर्ष समाप्त करने में यूक्रेन और रूस के साथ निरंतर संपर्क में है। संयुक्त राष्ट्र ने अफ्रीका का सटीक आकार दर्शाने वाले नए विश्व मानचित्र को अपनाने के पक्ष में मतदान किया। और दुबई में महिला टी20 एशिया कप क्रिकेट में आज भारत का सामना पाकिस्तान से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: गुड मॉर्निंग, दिस इज आकाशवाणी।

नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की, धनबाद की शिक्षिका मुन्मुन भट्टाचार्य समेत देश के 48 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से करेंगी सम्मानित। राज्यपाल और मुख्यमंत्री जन्माष्टमी के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में हुए शामिल, राज्यवासियों को दी शुभकामनाएं। भाजपा ने झारखंड में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया में नियमों के उल्लंघन का लगाया आरोप, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। जेएसएससी की भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितता के मामले में सीआईडी की विशेष जांच टीम ने की कार्रवाई, आयोग के सचिव के आवास और कार्यालय की ली तलाशी। और मोराबादी चैलेंजर ट्रॉफी फुटबॉल टूर्नामेंट इस

0: 13 से 20 सितंबर तक किया जाएगा आयोजित। रांची और आसपास के प्रमुख फुटबॉल क्लब लेंगे हिस्सा। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में 48 स्कूली शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगी। धनबाद के एमएस बरमसिया मध्य विद्यालय के शिक्षिका मुनमुन भट्टाचार्य को भी राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। वह इस वर्ष झारखंड से राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए चुने जाने वाली एकमात्र शिक्षिका हैं।
1: पाँच सितंबर को पूरे भारत में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। यह दिन देश के पूर्व राष्ट्रपति, प्रसिद्ध शिक्षाविद, लेखक और दार्शनिक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। यह अवसर राष्ट्र निर्माण में शिक्षकों और शिक्षाविदों की महत्वपूर्ण भूमिका का सम्मान करता है। शिक्षक विद्यार्थियों के जीवन को बदलते हैं, पीढ़ियों को दिशा देते हैं और समाज की नींव को मजबूत करते हैं। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज सुबह नई दिल्ली में 48 स्कूली शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगी। चयनित 48 शिक्षक 27 राज्यों, 7 केंद्र शासित प्रदेशों और 6 केंद्रीय सरकारी संगठनों से हैं। राष्ट्रपति उच्च शिक्षा संस्थानों और पॉलिटेक्निक के 21 शिक्षकों और संकाय सदस्यों को भी राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करेंगी। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के अवसर पर आज राज्य भर में कई कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस अवसर पर स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग द्वारा राज्य की दो शिक्षिका पूर्वी सिंहभूम की रंजिता गांधी तथा पश्चिमी सिंहभूम की शिल्पा गुप्ता को राज्य शिक्षक पुरस्कार दिया जाएगा। वहीं राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए जिलों से नामांकित 69 शिक्षकों को जिला स्तरीय पुरस्कार तथा 121 को विशेष शिक्षा सम्मान दिया जाएगा। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने रांची के बोड़ैया स्थित श्री मदन मोहन मंदिर में आयोजित श्रीकृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव में श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी और मंदिर को झारखंड की ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक विरासत का महत्वपूर्ण केंद्र बताया। इस अवसर पर राज्यपाल ने श्री मदन मोहन स्वामी स्तुति का लोकार्पण किया और मंदिर समिति को बधाई दी। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मोरहाबादी में आयोजित श्रीकृष्ण जन्मोत्सव एवं दही हांडी प्रतियोगिता में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने भगवान श्रीकृष्ण से समस्त झारखंडवासियों के कल्याण की कामना की, साथ ही उन्होंने दही हांडी के युवा प्रतिभागियों का उत्साह वर्धन किया। भाजपा ने झारखंड में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया में नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। पार्टी ने बरहेट में झामुमो की बैठक में बीडीओ की कथित मौजूदगी, रांची में बीएलओ द्वारा फॉर्म 7 स्वीकार नहीं किए जाने और एसआईआर के दौरान ऑफलाइन जाति, आय व आवासीय प्रमाण पत्र जारी करने पर सवाल उठाते हुए उच्च स्तरीय जाँच की मांग की है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितता और पेपर लीक से जुड़े मामलों की जांच कर रही है। सीआईडी की विशेष जांच टीम ने कल नामकुम स्थित जेएसएससी कार्यालय में आयोग के सचिव सुधर गुप्ता से पूछताछ की और परीक्षा से जुड़े कई दस्तावेजों की जांच की। इससे पहले सीआईडी की टीम ने मोरहाबादी के हरिहर सिंह रोड स्थित सचिव सुधीर गुप्ता के आवास पर भी तलाशी ली। आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। ब्रिक्स देशों के मुख्य न्यायाधीशों का 3 दिन का सम्मेलन नई दिल्ली में शुरू हुआ। हमारी संवाददाता ने बताया कि सम्मेलन में ब्रिक्स सदस्य और सहयोगी देशों के मुख्य न्यायाधीश और वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी भाग ले रहे हैं।
2: भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने रूस, चीन, संयुक्त अरब अमीरात, दक्षिण अफ्रीका, ईरान और उज्बेकिस्तान सहित कई देशों के न्यायिक प्रतिनिधिमंडल के प्रमुखों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। इन बैठकों में देशों के बीच न्यायिक सहयोग को मजबूत करने, न्यायपालिका की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को एकीकृत करने, तेजी सैनिक प्रक्रियाएं पूरी करके लोगों के बीच संबंध बेहतर करने और अलग अलग देशों के बेहतरीन कानूनी तौर तरीकों पर चर्चा की गई। अनुपम मिश्र के साथ ऋषु जायसवाल, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: रांची के बिरला प्रौद्योगिकी संस्थान मेसरा के वार्षिक तकनीकी महोत्सव पैंथियन 2026 का उद्घाटन कल जीपी बिरला ऑडिटोरियम में भव्य समारोह के साथ हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि शहरी प्रशासन नगर विकास विभाग की निदेशक नैंसी सहाय थीं। इस समारोह में संस्थान की एयरोस्पेस क्षेत्र की उपलब्धियों और स्काई रूट एयरोस्पेस के रॉकेट प्रक्षेपण अभियान में पूर्व छात्रों की भूमिका का उल्लेख किया गया। जमशेदपुर में 6 सितंबर को शिक्षा व्यवस्था की कमियों और सुधार के मुद्दों पर फैक्ट फाइंडिंग सेमिनार का आयोजन किया जाएगा। यह आयोजन स्वर्णरेखा क्षेत्र विकास ट्रस्ट और नेचर फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में होगा। विधायक सरयू राय ने बताया कि इस सेमिनार में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा तथा छात्र युवा असंतोष जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी।
3: संगोष्ठी का उद्देश्य है कि हमारे शिक्षा के क्षेत्र में या शिक्षा व्यवस्था में कमियां क्या हैं। कमियां हैं विद्यालयों में, इनको दूर करिए। अपने बजट में एक साल शिक्षा के लिए बहुत अधिक प्रावधान कर दीजिए और कुछ ऐसे विभाग हैं जिनमें आप कटौती करिए। शिक्षा को प्राथमिकता देकर काम करिए।
0: धनबाद जिले में केंदुआ के अग्नि प्रभावित इलाके कुर्मीडीह पांडे बस्ती के पास अचानक दो बड़े गोफ बनने और गैस का रिसाव होने की बात सामने आई है। इससे इलाके के लोग दहशत में हैं। बीसीसीएल के अधिकारी लव प्रताप सिंह ने बताया कि खाली जगह को भरने का काम शुरू हो गया है।
4: सभी लोग से हम लोग का यही निवेदन है कि सब सुरक्षित स्थान पे चले जाएं, नहीं कभी भी दुर्घटना किसी के साथ हो सकती। हम लोग दूसरा जो गोप है उसको फेंसिंग करा दिए कि कोई व्यक्ति वहां न जाए। यही निर्देश है कि किसी के साथ दुर्घटना न। पुनर्वास की प्रक्रिया चल रही है और करीब करीब यहाँ के लोगों को भी बैलगाड़ियां शिफ्ट करने के लिए आवाज दी।
0: और अब मौसम का हाल। झारखंड में आज मौसम का मिजाज मिलाजुला रहने वाला है। राजधानी रांची समेत कई जिलों में बादल छाए रहेंगे और हल्की बूंदाबांदी के आसार हैं। राजधानी रांची के मोरहाबादी में 31 वर्षों से आयोजित मोरहाबादी चैलेंजर ट्रॉफी फुटबॉल टूर्नामेंट इस वर्ष 13 से 20 सितंबर तक आयोजित किया जाएगा। मोरहाबादी क्रीड़ा केंद्र द्वारा आयोजित इस टूर्नामेंट में रांची और आसपास के प्रमुख फुटबॉल क्लब हिस्सा लेंगे। आयोजकों के अनुसार विजेता टीम को 71,000 रुपये और उपविजेता टीम को 51,000 रुपये की पुरस्कार राशि दी जाएगी। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित अधिकांश अखबारों ने जेएसएससी कार्यालय में सीआईडी के छापे की खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, जेपीएससी की एसीएफ और एफआरओ परीक्षा में भी धांधली का खुलासा। प्रभात खबर ने महिला पर्यवेक्षिका परीक्षा में निजी विश्वविद्यालय के डिग्री पर सवाल उठाए हैं। शीर्षक है, संदिग्ध मिली 33 डिग्रियां, विश्वविद्यालय पर कार्रवाई के लिए सरकार ने यूजीसी को भेजी रिपोर्ट। दैनिक जागरण ने लिखा है, राज्य के प्लस टू स्कूलों में कंप्यूटर साइंस, कोडिंग, एआई विषयों की पढ़ाई के लिए तैयार होगा सिलेबस। और हिंदुस्तान ने अदालत के हवाले से लिखा है, झारखंड के थानों में सीसीटीवी पर स्पष्ट करें स्थिति। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, धनबाद की शिक्षिका मुनमुन भट्टाचार्य समेत देश के 48 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से करेंगी सम्मानित। राज्यपाल और मुख्यमंत्री जन्माष्टमी के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में हुए शामिल, राज्यवासियों को दी शुभकामनाएं। भाजपा ने झारखंड में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया में नियमों के उल्लंघन का लगाया आरोप, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। जेएसएससी की भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितता मामले में सीआईडी की विशेष जाँच टीम ने की कार्रवाई, आयोग के सचिव के आवास और कार्यालय की तलाशी। और मोरहाबादी चैलेंजर ट्रॉफी फुटबॉल टूर्नामेंट इस वर्ष 13 से 20 सितंबर तक किया जाएगा आयोजित। रांची और आसपास के प्रमुख फुटबॉल क्लब लेंगे हिस्सा। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल, देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, आज हर घर में मोबाइल फोन, लैपटॉप, टैबलेट जैसी डिवाइसेस आम हो चली है। देश भर में इनकी संख्या बिलियंस में होगी। आज के लेटेस्ट डिवाइस भविष्य के ई वेस्ट भी होते हैं। अगर ई वेस्ट को ठीक से डिस्पोज नहीं किया गया तो यह हमारे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन अगर सावधानी पूर्वक ऐसा किया जाता है तो रिसाइकल और रीयूज की सर्कुलर इकोनॉमी की बहुत बड़ी ताकत बन सकता है। आप जानकर चौंक जाएंगे कि अलग अलग प्रोसेस के जरिए इस ई वेस्ट से करीब 17 प्रकार के प्रेशियस मेटल्स निकाले जा सकते हैं। इसमें गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और निकल शामिल है। इसलिए ई वेस्ट का सदुपयोग करना कचरे को कंचन बनाने से कम नहीं है। आज ऐसे स्टार्टअप्स की कमी नहीं जो इस दिशा में इनोवेट काम कर रहे हैं। इस सेक्टर ने हजारों लोगों को सीधे तौर पर रोजगार भी दिया है। ये सभी भारत को ग्लोबल रिसाइकलिंग हब बनाने में मदद कर रहे हैं। लेकिन ऐसे इनिशिएटिव की सफलता के लिए एक जरूरी शर्त भी है। वो ये है कि ई वेस्ट के निपटारे से सुरक्षित उपयोगी तरीकों के बारे में लोगों को जागरूक करते रहना होगा।
2: वेक्टर जनित रोग, मलेरिया, फाइलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, कालाजार और जापानीज इंसेफेलाइटिस से बचाव के लिए मच्छरों से अपना बचाव करें। अपने घर के आसपास सफाई रखें, जल जमाव न होने दें, पानी के बर्तनों को ढक कर रखें, पूरे आस्तीन के कपड़े पहने और हमेशा मच्छरदानी के अंदर सोएं।
3: बुखार होने पर ओझागुनी के पास ना जाएं, अपने गांव की सहिया को बताएं या नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में जाएं, मुफ्त जांच और उपचार कराएं।
2: वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
4: ये आकाशवाणी
5: आप सुन रहे थे आकाशवाणी रांची से प्रसारित प्रादेशिक समाचार।

हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से FM के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 8:45 हो चुके हैं। वक्त है लोकगीतों के कार्यक्रम माटी की महक का। तो लीजिए, प्रस्तुत है कार्यक्रम माटी की महक। कार्यक्रम माटी की महक सुनने वाले हमारे तमाम श्रोता दोस्तों का इस कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत है। श्रोताओं, लोकगीतों के इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं संथाली लोकगीत कलाकार सोना मुर्मू और उनके साथियों के स्वरों में।

श्रोताओं, गायक कलाकार सोना मुर्मू और साथियों के स्वरों में गाए हुए इस संथाली लोकगीत के साथ ही हमारा आज का ये लोकगीतों का कार्यक्रम माटी की महक अब यहीं समाप्त होता है। आप सुन रहे थे कार्यक्रम माटी की महक।

एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये चायबासा केंद्र है। श्रोताओं, इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 9 बज रहे हैं। वक्त है कार्यक्रम विविधा का, तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम विविधा।

कार्यक्रम सुनने वाले हमारे तमाम श्रोता दोस्तों को मेरा नमस्कार जोहार। श्रोताओं, आज एक बार फिर से हम हाजिर हैं आपके लिए इस कार्यक्रम में नई नई जानकारियां लेकर, क्योंकि आप जानते हैं कि आज कार्यक्रम विविधा में हर दिन हम आपके लिए कुछ नई जानकारियां लेकर हाजिर होते हैं। तो जानकारियों का ये दौर आज भी वैसे ही जारी रहेगा। तो श्रोताओं, जैसा कि हम सभी ये जानते हैं कि आज है 5 सितंबर। 5 सितंबर यानी कि एक तरीके से कह सकते हैं कि ये है हम सभी का पसंदीदा दिवस। और इस दिन को यानी कि 5 सितंबर को हम शिक्षक दिवस यानी कि टीचर्स डे के नाम से भी जानते हैं। तो इस मौके पर श्रोताओं, आइए याद करते हैं भारत के एक महान सपूत, अद्भुत दार्शनिक और हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। आइए इनके बारे में हम आपको संक्षिप्त रूप से बताते हैं। तो श्रोताओं, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर सन 1988 को तमिलनाडु के एक छोटे से कस्बे तिरुतनी में हुआ था। वे बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज थे। उन्होंने मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से दर्शन शास्त्र की पढ़ाई पूरी की और इसके बाद देश विदेश के कई बड़े विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के रूप में अपनी सेवाएं इन्होंने दी। इनकी विद्वता का लोहा पूरी दुनिया मानती थी। जब ये क्लास में पढ़ाया करते थे तो छात्र मंत्रमुग्ध होकर उन्हें सुनते थे। ये केवल शिक्षक ही नहीं थे बल्कि भारतीय संस्कृति और दर्शन को पूरी दुनिया तक पहुंचाने वाले एक सच्चे मार्गदर्शक थे। देश की आज़ादी के बाद ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति बने और साल 1962 में इन्होंने भारत के दूसरे राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने कार्यभार संभाला। उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी नवाजा गया। 17 अप्रैल सन 1975 को भले ही इन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया, लेकिन एक आदर्श शिक्षक और राष्ट्र निर्माता के रूप में आज भी वो हमारे दिलों में जिंदा है। तो आइए आज उनके विचारों को अपने जीवन में उतारने का दृढ़ संकल्प हम लें, क्योंकि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर् देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है और गुरु ही भगवान शंकर हैं। गुरु ही साक्षात परम ब्रह्म है और ऐसे महान गुरु को मेरा बारंबार प्रणाम है। तो श्रोताओं, इस चर्चा के बाद आइए अब हम आपको सुनवाते हैं ये गीत और करते हैं आपका मनोरंजन।

श्रोताओं, इस गीत के साथ अभी हम आपका मनोरंजन कर रहे थे और इस मनोरंजन के बाद आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। तो श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं आपके साथ आज की तिथि को लेकर, यानी कि 5 सितंबर को लेकर। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि आज 5 सितंबर को हमारा पूरा देश मना रहा है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती, और इस दिन को एक और विशेष कारण से हमारे देश में काफ़ी प्रचलित तरीके से जाना जाता है। तो आइए हम आपको बताएं कि 5 सितंबर को हमारे देश में शिक्षक दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, शिक्षक दिवस यानी कि टीचर्स डे। और इसे मनाने के पीछे भी श्रोताओं एक बेहद प्रेरणादायक कहानी है, जो कि हमें ऐसा लगता है कि आपका जानना जरूरी है और शायद आप में से कुछ लोग जानते भी होंगे। पर आइए एक बार फिर से हम आपको बता देते हैं इस कहानी को। तो श्रोताओं, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के प्रति सम्मान और उनके शिक्षकों के प्रति गहरे लगाव को दर्शाने के लिए आज के दिन को मनाया जाता है। और एक बार हुआ यूँ कि डॉक्टर राधाकृष्णन की इच्छा और सोच साल 1962 में, जब डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के राष्ट्रपति बने, तो उनके कुछ छात्र और मित्र उनके पास पहुँचे। वे उनका जन्मदिन धूमधाम से मनाना चाहते थे, क्योंकि जैसा हमने आपको बताया कि 5 सितंबर को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन हुआ करता है। तो उसे मनाने के लिए उनके कुछ छात्र और दोस्त उनके पास पहुँचे। तो इस पर डॉक्टर राधाकृष्णन ने मुस्कुराते हुए उनसे कहा कि कितना अच्छा हो कि मेरा जन्मदिन अलग से मनाने के बजाय इसे शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए, ये मेरे लिए और भी बड़े सम्मान और गौरव की बात होगी। उनके इस विचार का सम्मान करते हुए देश में पहली बार 5 सितंबर सन 1962 को शिक्षक दिवस मनाया गया, और तब से आज तक यह परंपरा लगातार चली आ रही है। शिक्षकों के प्रति उनका नज़रिया बेहद खास था। डॉक्टर राधाकृष्णन का मानना था कि एक अच्छा शिक्षक ही देश का भविष्य बदल सकता है। उनका एक प्रसिद्ध कथन है, शिक्षक वह नहीं जो छात्र के दिमाग में तथ्यों को जबरन ठूसे, बल्कि वास्तविक शिक्षक तो वो है जो उसे आने वाले कल की चुनौतियों के लिए तैयार करे। उनका मानना था कि समाज में सबसे उत्कृष्ट दिमाग वाले लोगों को ही शिक्षक बनना चाहिए। तो श्रोताओं, अभी हमने आपको बताया कि इस शिक्षक दिवस को मनाने का इतिहास क्या था, यानी कि कैसे इस दिन को मनाया जाने लगा। तो अब हम आइए आपको बताते हैं कि इस दिन को मनाने के पीछे का महत्व क्या है। तो इस दिन को मनाने का महत्व बहुत ज़्यादा है। ये दिन खास है शिक्षकों के प्रति कृतज्ञता दिखाने के लिए। यह दिन हमारे जीवन को सही दिशा देने वाले गुरु यानी कि शिक्षकों के प्रति आभार और सम्मान व्यक्त करने का एक महत्वपूर्ण अवसर है, जिस दिन हम उनका सम्मान विशेष तौर पर करके अपनी कृतज्ञता उनके जता सकते हैं। और इसके अलावा एक शिक्षक राष्ट्र निर्माण में अहम भूमिका निभाता है। शिक्षक केवल किताबी ज्ञान नहीं देते, बल्कि वे बच्चों में नैतिक मूल्य और संस्कार भरकर एक अच्छे समाज का निर्माण करते हैं। इसके अलावा शिक्षक प्रेरणा का स्रोत भी होते हैं। ये दिन शिक्षकों को अपनी जिम्मेदारी को समझने और डॉक्टर राधाकृष्णन जैसे महान पदचिन्हों पर चलने की प्रेरणा भी देते हैं। तो आज हम कृतज्ञता व्यक्त करते हैं हमारे देश के सभी शिक्षकों के प्रति कि उन्होंने अपना जीवन हमारे देश के लिए समर्पित किया, और हम सभी जो भी व्यक्ति हैं सभी को ज्ञान देकर उनके जीवन में अंधकार हटाकर ज्ञान रूपी प्रकाश फैलाया।
और तो श्रोताओं, अभी हम आपके साथ चर्चा कर रहे थे शिक्षक दिवस के ऊपर, और आइए अब हम आपको सुनवाते हैं ये जरूरी संदेश।

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर ज...

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: इन जरूरी संदेशों के बाद श्रोताओं, एक बार फिर से आपका स्वागत है कार्यक्रम विविधा में। ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के चायबासा केंद्र से। श्रोताओं, जैसे कि हम आपको बताते आ रहे हैं कि आज का दिन हमारे देश के लिए एक विशेष महत्व रखता है, क्योंकि आज है 5 सितंबर और 5 सितंबर को हमारा देश मना रहा है शिक्षक दिवस। तो आइए अब हम आपको बताते हैं कि क्यों 5 सितंबर को, यानी कि शिक्षक दिवस को, इतने विशेष तौर पर हमारे देश में मनाया जाता है। तो हम आपको बताएं श्रोताओं कि आज के दिन का शिक्षकों का योगदान को याद करने के लिए विशेष तौर पर हमारे देश में मनाया जाता है, क्योंकि शिक्षक हमें ज्ञान का प्रकाश देते हैं, शिक्षक ही हमें दुनिया को समझने का नज़रिया देते हैं, वे हमें नई चीज़ों को सीखने और सोचने के लिए प्रेरित भी करते हैं। इसके अलावा एक शिक्षक चरित्र निर्माण में भी बहुत खासा अपना स्थान रखता है। एक अच्छा शिक्षक छात्रों में अच्छे संस्कार, नैतिकता और अनुशासन उन्हें सिखाता है कि कैसे वो अच्छे संस्कार के साथ, अनुशासन के साथ और अपने जीवन में आगे बढ़ सकता है और एक अच्छे चरित्रवान मनुष्य होने का अपना कर्म निभा सकता है। और शिक्षक हमारे प्रेरणा का स्रोत भी होते हैं, क्योंकि श्रोताओं, जब हम हार मान लेते हैं तो शिक्षक ही हमें आगे बढ़ने की हिम्मत देता है। वे हमें विश्वास दिलाते हैं कि हम कुछ भी कर गुजरने के लिए काबिल हैं, हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। इसीलिए शिक्षक को भविष्य निर्माता भी कहा जाता है। शिक्षक ही वह नींव रखते हैं जिसकी नींव पर देश टिका होता है। वे आज के छात्रों को कल का जिम्मेदार नागरिक बनने में सहायता करते हैं। और इसके अलावा व्यक्तिगत विकास में भी हमारे देश में शिक्षकों की विशेष भूमिका होती है। हर छात्र की क्षमताएं और सीखने का तरीका अलग अलग होता है। शिक्षक इन भिन्नताओं को समझते हुए बच्चों के व्यक्तिगत विकास में भी मदद करते हैं। श्रोताओं, शिक्षक कहने से हमारा तात्पर्य सिर्फ ये नहीं है कि जो हमें पढ़ाते लिखाते हैं वो ही शिक्षक हैं। इसके अलावा भी जिस व्यक्ति से हम कुछ भी सीखें वो हमारा शिक्षक है। तो हमारे सबसे पहले जो शिक्षक हैं वो है हमारे माता पिता, क्योंकि उन्होंने हमें

को अच्छा बनाया, हमें एक अच्छा व्यक्ति बनाया, और ये हमारा कर्तव्य बनता है श्रोताओं कि हम अपने माता पिता की हर आशा पर खरे उतरे और उनका नाम हम ऊंचा करें। कभी भी उनका सिर हमारे कारण शर्मिंदगी से ना झुके, इस बात का भी हमें विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। तो और इसके साथ ही हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने माता पिता को ज़्यादा से ज़्यादा खुशियाँ दें, उन्हें सुखी रखें, उन्हें हमारे कारण कम से कम किसी भी प्रकार का दुख न मिले, वो गर्व से कह सके कि हम उनकी संतान हैं। तो आज शिक्षक दिवस के अवसर पर मैं देश दुनिया के हर माता पिता को अपना कोटि कोटि प्रणाम नमन देती हूँ, और हम उसके अलावा हर शिक्षक को हम कोटि कोटि नमन करते हैं। और आकाशवाणी का चायबासा परिवार भी हमारे दुनिया के हर शिक्षक को अपनी कृतज्ञता जताता है और कोटि कोटि नमन करता है। तो श्रोताओं, अब इसके साथ ही हमारे स्टूडियो की घड़ी भी अब ये इशारा कर रही है कि कार्यक्रम विविधा से विदा लेने का वक्त हो चला है। तो अब इस कार्यक्रम से मुझे यानी कि आपकी रेडियो सखी संगीता को विदा दें। नमस्कार।

ये आकाशवाणी का चायबासा केंद्र है, एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 9:30 हो चुके हैं। प्रस्तुत है हमारा आज का अगला कार्यक्रम, फिल्म संगीत का कार्यक्रम रस रंजन। कार्यक्रम रस रंजन सुनने वाले हमारे तमाम श्रोता दोस्तों का इस कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत है। श्रोताओं, आइए करते हैं फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम की शुरुआत और सुनवाते हैं आज के कार्यक्रम का ये पहला गीत। गायक कलाकार कुमार सानू और अलका याग्निक के युगल स्वरों में फिल्म दो आंखें 12 हाथ से।

फिल्म दुआ के बारहात को इस गीत को आपने सुना। गायक कलाकार कुमार सानू और अलका याग्निक के युगल स्वरों में, बोल लिखे थे सुनील ने और धुन थी बापी लहरी की। इस गीत के बाद आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला नगमा, फिल्म कभी खुशी कभी गम से।

फिल्म कभी खुशी कभी गम से ये गीत आप सुन रहे थे। आवाजी थी गायक कलाकार अलका याग्निक और उदित नारायण की। उदित नारायण के साथ इस गीत को सहयोग दिया था सुदेश भोसले, सुनिधि चौहान और अमिताभ बच्चन ने। बोल थे समीर के और धुन थी आदेश श्रीवास्तव की। इस गीत के बाद श्रोताओं आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला नगमा फिल्म दिल से। आवाजें गायक कलाकार उदित नारायण और अलका याग्निक की, बोल समीर के हैं और धुन है आनंद मिलन की।

0: फिल्म दिल का ये गीत श्रोताओं आपने सुना, गायक कलाकार उदित नारायण और अलका याग्निक के युगल स्वरों में। बोल थे समीर के और धुन थी आनंद मिलिंद की। और इस गीत के बाद आइए सुनते हैं ये जरूरी संदेश।
1: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, यात्रा के दौरान अगर टीसी टिकट मांगे तो दिखा दीजिए, लेकिन कोई भी

0: ओटीपी, पिन या पासवर्ड मांगे तो उसे तुरंत भगा दीजिए।
1: RBI कहता है ओटीपी या पिन के लिए कॉल या मैसेज आए तो थोड़ा ध्यान से।
2: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
3: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
2: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
3: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
2: डायल कीजिए 8700014242।
3: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
4: क्या आप तनाव, चिंता, उदासी, मानसिक परेशानी या आत्महत्या के विचारों से जूझ रहे हैं? याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। मानसिक स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है। मदद के लिए संपर्क करें रिनपास कांके रांची।
5: पिछले 100 वर्षों से मानसिक स्वास्थ्य चिकित्सा के क्षेत्र में एक अग्रणी संस्थान, जहां अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा मानसिक स्वास्थ्य संबंधी परामर्श और नशा मुक्ति का निःशुल्क उपचार उपलब्ध है। डायल करें 24/7 हेल्पलाइन नंबर 9471136697, टोल फ्री नंबर 1449 या 1800-345-4060 पर।
4: समय पर मदद लें, स्वस्थ मन, बेहतर जीवन पाएं। रिनपास एवं झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
6: इन जरूरी संदेशों के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कार्यक्रम रसरंजन में। ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से। आइए कार्यक्रम को बढ़ाते हुए सुनते हैं आज के कार्यक्रम का ये आखिरी गीत, फिल्म दिल तो पागल है से। आवाज़ें गायक कलाकार उदित नारायण और लता मंगेशकर की, बोल आनंद बक्सी के हैं और धुन है उत्तम सिंह की।

फिल्म दिल तो पागल है के इस गीत के साथ ही हमारा आज का ये कार्यक्रम रसरंजन अब यहीं समाप्त हुआ। आप सुन रहे थे कार्यक्रम रसरंजन।

आकाशवाणी का ये चायबासा केंद्र है FM के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी पूर्वाह्न के 10 बजा रही है और साथ ही साथ कर रही है इशारा कि वक्त है फिल्म संगीत का। तो आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

फिल्म संगीत की शुरुआत श्रोताओं हमने की है फिल्म राजा हिंदुस्तानी के इस गीत के साथ। आवाजें हैं गायक कलाकार कुमार सानू और अलका याग्निक की, बोल समीर के हैं और धुन है नदीम श्रवण की।

रब ने बना दी जोड़ी। इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। आवाजें थी गायक कलाकार सुनिधि चौहान और लफ्ज़ जुनी जागी। बोल लिखे थे जयदीप सहनी ने और धुन थी सलीम सुलेमान की। कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं फिल्म साजन चले ससुराल से। आवाज़ें हैं गायक कलाकार कुमार सानू और अलका याग्निक की। बोल लिखे हैं समीर ने, धुन है नदीम श्रवण की।

0: अजय डोंट माइंड, लेकिन इतना अच्छा मौसम है और तुम इन बीमारियों के अलावा और कुछ नहीं सोचता। गुलफाम साहब के फैन हो, कोई शायरी वायरी नहीं आती क्या?
1: बिल्कुल आती है, सुनाओ।
0: सुना।
1: अर्ज है, दवा भी काम ना आए कोई दुआ ना लगे, दवा भी काम ना आए कोई दुआ ना लगे, मेरे खुदा किसी को प्यार की हवा ना लगे। आदाब।

अर्ज है, कुछ मजनू बने, कुछ रांझा बने, कुछ रोमियो कुछ फरहाद हुए, इस रंग रूप की चाहत में जाने कितने बर्बाद हुए। वो देखो

से देखो दिल की धुनी रमाता। अरे ये मंदिर नहीं है, शिवाला नहीं है, हसीनों से कह दो कहीं और जाएं, मेरा दिल है दिल, धर्मशाला नहीं है।

0: फिल्म सरफरोश से ये गीत श्रोताओं आपने सुना। गायक कलाकार आमिर खान और अलका याग्निक के स्वरों में इस गीत को लिखा था समीर ने और धुन थी जतिन ललित की। इस गीत के बाद आइए सुनते हैं ये जरूरी संदेश।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
0: इन जरूरी संदेशों के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कार्यक्रम फिल्म संगीत में। ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के चायबासा केंद्र से। श्रोताओं, आइए कार्यक्रम के आखिर में अब हम आपको सुनवाते हैं फिल्म दीवाना से ये गीत, गायक कलाकार कुमार सानू और अलका याग्निक के युगल स्वरों में। इस गीत के बोल लिखे हैं समीर ने और धुन से सजाया है नदीम श्रवण ने।

श्रोताओं, फिल्म दीवाना के इस गीत के साथ ही हमारे स्टूडियो की घड़ी ने अभी इशारा कर दिया है कि कार्यक्रम फिल्म संगीत से विदा लेने का वक्त हो चला है। तो अब इस कार्यक्रम से हमें विदा दें। नमस्कार। आप सुन रहे थे कार्यक्रम फिल्म संगीत। ये आकाशवाणी का चायबासा केंद्र है। एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। स्टूडियो की घड़ी में पूर्वाह्न के 10:30 हो रहे हैं। हमारा आज का अगला प्रसारण आकाशवाणी रांची के कार्यक्रमों का होगा, जो कि प्रसारित किए जाएंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र से। तो आइए इन कार्यक्रमों के लिए आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी के रांची केंद्र। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: मीडियम में 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्स और FM 100.5 मेगाहर्ट्स पर आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। दिन के 10:31 हो चुके हैं और ये वक्त है आपके पसंदीदा कार्यक्रम जोहार रांची का। तो देर न करते हुए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। मैं हूँ हिमांशु और मेरे साथ हैं
1: कंचन।
0: तो हम दोनों का जोहार,
1: जोहार नमस्कार।
0: तो श्रोताओं कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप बेहतर होंगे। और बेहतर इस संदर्भ में कह रहा हूँ कि कंचन
1: हाँ।
0: अब देखो ना, मौसम भी कितना खुशगवार हो चुका
1: हाँ।
0: है, बरसात से थोड़ी राहत मिली है
1: हाँ।
0: तो क्यों ना आज के इस कार्यक्रम का आरंभ हम एक सुविचार के साथ करें।
1: बिल्कुल दोस्तों, कहते हैं ना कि मुश्किलें जीवन का हिस्सा है, लेकिन उनसे हार मान लेना हमारी पसंद है। जो इंसान परिस्थितियों से लड़ना सीख जाता है, वही अपनी किस्मत लिखना भी सीख जाता है।
0: तो हिम्मत रखिए, क्योंकि अंधेरी रात के बाद सुबह जरूर होती है।
1: होती है
0: और इसी खूबसूरत विचार के साथ आइए शुरू करते हैं कार्यक्रम की इस खूबसूरत नगमे के साथ।

0: श्रोताओं, आज एक बहुत ही खास दिवस है और उम्मीद करता हूँ आप सब इस दिवस को अवश्य जानते होंगे और मानते होंगे
1: और मना रहे होंगे
0: और इस दिवस के प्रति काफी सम्मान रखते होंगे। क्यों कंचन?
1: हाँ हाँ, आज जैसा कि हम सब जान रहे हैं कि आज राष्ट्रीय शिक्षक दिवस है और इस दिन आज बेहद ही खास है।
0: यह दिन महान शिक्षाविद, दार्शनिक और भारत के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है।
1: हाँ, और शिक्षक दिवस की शुरुआत डॉक्टर राधाकृष्णन की विद्यार्थी और प्रशंसकों ने उनका जन्मदिन मनाने की इच्छा जताई थी और इसके जवाब में उन्होंने कहा कि उनका जन्मदिन अलग से मनाने के बजाय इसे शिक्षकों को के सम्मान के दिन के रूप में मनाया जाए और तभी से 5 सितंबर को शिक्षक दिवस की मनाने की परंपरा शुरू हुई।
0: और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1962 से 1967 तक भारत के राष्ट्रपति रहे थे। डॉक्टर राधाकृष्णन का जीवन इस बात का उदाहरण है कि एक शिक्षक केवल कक्षा में पाठ नहीं पढ़ाता बल्कि वह विद्यार्थियों के व्यक्तित्व और भविष्य को आकार देता है।
1: हाँ,
0: आज का दिन हमें अपने सभी शिक्षकों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर है। क्यों कंचन?
1: हाँ हाँ,
0: शिक्षक दिवस हमारे जीवन में शिक्षकों के अमूल्य योगदान को सम्मान देने का विशेष अवसर है। भारत में हर वर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। यह दिन देश के महान शिक्षाविद, दार्शनिक और भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के उपलक्ष में मनाया जाता है।
1: हाँ, और आज के दिन शिक्षक विद्यार्थियों के व्यक्तित्व के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और एक अच्छा शिक्षक अपने विद्यार्थियों को सही और गलत के बीच अंतर को भी समझाते हैं और उनमें आत्मविश्वास जगाते हैं और जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार भी करते हैं। और इसके अलावा अगर कहा जाए तो माता पिता के बाद शिक्षक ही वह व्यक्ति होते हैं जो बच्चों के भविष्य को संवारने में महत्वपूर्ण योगदान होता है एक शिक्षक का।
0: जी हाँ, बिल्कुल सही कहा कंचन। और अब बात कर लेते हैं झारखंड ही नहीं पूरे देश के मौसम हाँ। की 5 सितंबर को झारखंड में कई स्थानों पर बारिश के साथ गरज चमक और वज्रपात की संभावना है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार राज्य में छिटपुट रूप से गरज चमक वाली गतिविधि बनी रह सकती है। कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश और कहीं कहीं तेज बौछार हो सकती है।
1: हाँ, और कई इलाकों में बिजली चमकने और गरजने की संभावना भी है। और तापमान की बात करें तो अधिकतम तापमान लगभग 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान करीब 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है आज। और इसके अलावा बिजली चमकने के दौरान खुले मैदान, पेड़ या बिजली के खंभों के नीचे खड़े होने से बचे।
0: निचले इलाकों में जल भराव की स्थिति पर भी नजर रखें। आईएमडी ने भारी बारिश की स्थिति में सुरक्षित स्थान पर रहने की सलाह दी है। खास बात यह है कि 5 सितंबर को झारखंड के लिए आईएमडी का पूर्वानुमान मुख्यतः छिटपुट बारिश और गरज चमक का है। 4 से 7 सितंबर के दौरान राज्य में ऐसी गतिविधियां जारी रहने की संभावना है। हालांकि कंचन, मौसम काफी खुशगवार हो चुका है। पिछले कई दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण पूरा देश उथल पुथल रहा है। हर जगह बाढ़ की स्थिति बनी हुई है और अभी हाल ही में हमने नेपाल की त्रासदी को झेला। तो हम अपने तमाम श्रोताओं से अनुरोध करते हैं कि इस मौसम में थोड़ी सावधानी बरतें और खासकर बच्चों और बुजुर्गों पर विशेष ध्यान रखें।
1: हाँ, और आप घूमने जाने का सोच भी रहे हैं तो पानी वाले जगहों में जाने से बचें।
0: जी हाँ, बिल्कुल। और फिलहाल आइए सुनते हैं इस खूबसूरत गीत को।
1: हाँ।

0: कंचन, मौसम की बात हो रही है तो क्यों ना हम सभी के सेहत के बारे में भी कुछ बातें कर लें।
1: हाँ
0: कहते हैं इंसान के पास दुनिया की सारी दौलत हो, लेकिन अगर सेहत नहीं है तो उस दौलत का कोई मतलब नहीं।
1: बिल्कुल। और हम अपनी जिंदगी में पैसा कमाने, घर बनाने और अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन इसी भाग दौड़ में अक्सर उस चीज को नजरअंदाज कर देते हैं जो हमारी सबसे बड़ी पूंजी होती है, हमारी सेहत।
0: अच्छी सेहत का मतलब सिर्फ बीमारी से दूर रहना नहीं है, अच्छी सेहत का मतलब है शरीर स्वस्थ हो, मन शांत हो और हम अपने रोजमर्रा के काम पूरे उत्साह के साथ कर सकें।
1: हाँ, और इसके लिए सबसे जरूरी है हमारी जीवन शैली। और सुबह की शुरुआत अगर हम थोड़ी शारीरिक गतिविधि से करें तो ये बहुत ही अच्छा होगा।
0: जी
1: और
0: हाँ बिल्कुल, रोज कुछ समय पैदल चलना, योग करना या व्यायाम करना शरीर को सक्रिय रखने में मदद करता है।
1: हाँ, और इसके साथ ही जरूरी है कि हमें संतुलित और पौष्टिक भोजन करना चाहिए, और हमारी थाली में हरी सब्जियाँ, फल, दालें, अनाज और पर्याप्त प्रोटीन जैसे पौष्टिक खाद्य पदार्थ को शामिल करना चाहिए।
0: जी हाँ बिल्कुल सही कहा कंचन तुमने, बहुत ज्यादा तला भुना, अत्यधिक मीठा और जरूरत से ज्यादा नमक वाला भोजन हमारी सेहत पर बुरा असर डाल सकता है, इसलिए स्वाद के साथ साथ पोषण का भी ध्यान रखें।
1: हाँ, और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए पर्याप्त पानी पीना भी बहुत जरूरी है। और पानी, क्योंकि हम पानी हमारे शरीर की सामान्य कामकाज के लिए बेहद महत्वपूर्ण भी है।
0: और हाँ, नींद को बिल्कुल नजरअंदाज न करें, शरीर और दिमाग को आराम देने के लिए पर्याप्त और नियमित नींद जरूरी है। आज
1: हाँ
0: मोबाइल और स्क्रीन हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं, लेकिन लगातार स्क्रीन पर समय बिताने के बजाय बीच बीच में आराम देना और सक्रिय रहना भी जरूरी है।
1: और सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य ही नहीं बल्कि मानसिक स्वास्थ्य भी उतना ही जरूरी है। तनाव हो तो किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात करें और अपने लिए थोड़ा समय जरूर निकालें, और परिवार के साथ समय बिताएं और उन गतिविधियों को अपनाएं जिनसे आपको खुशी मिलती है।
0: जी हाँ, याद रखिए, सेहत ऐसी दौलत है जिसे खरीदा नहीं जा सकता, इसे आज से ही संभालना पड़ता है। छोटे-छोटे बदलाव, संतुलित भोजन, नियमित व्यायाम, पर्याप्त नींद, तनाव पर नियंत्रण और समय-समय पर स्वास्थ्य जांच, ये आदतें हमारे जीवन को बेहतर बनाने में मदद कर सकती हैं। तो आज एक संकल्प लें, काम के साथ अपनी सेहत को भी समय देंगे।
1: हाँ, और दोस्तों कहते हैं क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है, और स्वस्थ मन से ही एक खुशहाल जिंदगी की शुरुआत भी होती है।
0: और इसी के साथ आइए इस मस्ती भरे गीत का आनंद लेते हैं।
1: हाँ,

0: श्रोताओं, आप अब सुन रहे हैं अपना मन पसंदीदा कार्यक्रम जोहार रांची हिमांशु और कंचन के साथ। हाँ। तो आगे बढ़ते हुए हम बात कर लेते हैं 5 सितंबर के इतिहास के संदर्भ में देश और दुनिया से जुड़ी खबरों के बारे में। 5 सितंबर भारत और विश्व के इतिहास में कई महत्वपूर्ण घटनाओं, व्यक्तियों और दिवसों के कारण खास तारीख है। भारत के इतिहास में 5 सितंबर का जो महत्व है उसमें सबसे पहले डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन 5 सितंबर 1888 को भारत के महान दार्शनिक, शिक्षाविद और राजनेता डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म तमिलनाडु के तिरुत्तनी में हुआ था। वे स्वतंत्र भारत के दूसरे राष्ट्रपति और देश के पहले उपराष्ट्रपति रहे। उनके जन्मदिन को भारत में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है और आज हम ये दिवस बड़े धूमधाम से मना रहे हैं।
1: और शिक्षक दिवस की शुरुआत डॉक्टर राधा कृष्णन के विद्यार्थियों ने, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि उनके विद्यार्थियों और प्रशंसकों ने उनका जन्मदिन मनाने की इच्छा जताई थी और इसकी और उस दिन से ही हम आज तक शिक्षक दिवस मनाते आ रहे हैं।
0: स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ी घटनाएं आज के संदर्भ में अगर बात करें तो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 5 सितंबर को भी देश के विभिन्न हिस्सों में राजनीतिक गतिविधियां और आंदोलन हुए। यह तारीख भारतीय शिक्षा और सामाजिक जागरण के संदर्भ में विशेष महत्व रखती है।
1: हाँ, और 1698 की बात करें तो रूस के शासक पीटर द ग्रेट के शासनकाल में दाढ़ी से संबंधित एक प्रसिद्ध कर व्यवस्था लागू की गई और इसका उद्देश्य रूसी समाज को यूरोपीय शैली में ढालना था।
0: वहीं 1839 ईस्वी की बात करें तो चीन में अफीम युद्ध की पृष्ठभूमि। 19वीं शताब्दी में चीन और ब्रिटेन के बीच अफीम व्यापार को लेकर तनाव तेजी से बढ़ रहा था। इसी दौर की घटनाओं ने आगे चलकर प्रथम अफीम युद्ध की नींव मजबूत की।
1: और 5 सितंबर 1972 को आज ही के दिन जर्मनी के म्यूनिक में आयोजित ओलंपिक खेलों के दौरान इजरायली खिलाड़ियों और अधिकारियों को निशाना बनाकर आतंकवादी हमला किया गया था और यह आधुनिक ओलंपिक इतिहास की सबसे दुखद घटनाओं में से एक माना जाता है।
0: और 5 सितंबर को जन्मे प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में बात करें तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1888 में भारतीय दार्शनिक एवं पूर्व राष्ट्रपति रहे। फ्रेडरी मर्करी 1946 में आज ही के दिन उनका जन्म हुआ था, प्रसिद्ध ब्रिटिश गायक और संगीतकार थे।
1: हाँ, और
0: लुई 8वें 1187 में फ्रांस के राजा बने।
1: हाँ, और 5 सितंबर को याद किए जाने वाले प्रमुख अगर हम दिवसों की बात करें तो भारत में शिक्षक दिवस का यह दिन देश के शिक्षकों के योगदान, ज्ञान, समाज और उनकी निर्माण में उनकी भूमिकाओं को सम्मान देने के लिए आज ये दिवस मनाया जाता है। और इसके अलावा
0: संयुक्त राष्ट्र से संबंधित बात करें तो इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी 5 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय दान दिवस भी मनाया जाता है। यह दिवस जरूरतमंदों की सहायता और मानवीय कार्यों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। 5 सितंबर केवल एक तारीख नहीं बल्कि भारत में गुरु, शिक्षा और ज्ञान के प्रति सम्मान का प्रतीक है।

0: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
1: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
2: इतिहास की खबरों के बाद क्यों न कंचन हम कहीं घूमने चलें?
3: हाँ हाँ
2: दोस्तों, कल्पना कीजिए चारों तरफ हरे भरे जंगल, पहाड़ों को छूते बादल, ठंडी हवाओं की सरसराहट और सामने आसमान में रंग बिखेरता हुआ सूरज।
3: हाँ, अगर प्रकृति की इस खूबसूरती को करीब से महसूस करना है तो आइए चलते हैं झारखंड के एक ऐसे पर्यटन स्थल की ओर जिसे प्यार से कहा जाता है छोटा नागपुर की रानी, यानी नेतरहाट।
2: जी हाँ, समुद्र तल से करीब 3,800 फीट की ऊंचाई पर बसा नेतरहाट झारखंड के लातेहार जिले में स्थित है। यहाँ की ठंडी हवा, शांत वातावरण और घने जंगल पर्यटकों को अपनी ओर खींचते हैं।
3: हाँ, और शहरों की भागदौड़ से दूर यहाँ समय जैसे थोड़ा ठहर जाता है। नेतरहाट की पहचान है इसका मनमोहक सूर्यास्त। मंगोलिया पॉइंट से जब सूरज धीरे धीरे पहाड़ियों के पीछे उतरता है तो पूरा आसमान सुनहरे और लाल रंग से भर उठता है,
2: और ऐसा लगता है कंचन मानो प्रकृति खुद कैनवास पर कोई खूबसूरत तस्वीर बना रही हो। और सिर्फ सूर्यास्त ही नहीं, नेतरहाट के आसपास के जंगल, घाटियां, झरने और पहाड़ी नजारे इसकी खूबसूरती और भी खास बना देते हैं।
3: हाँ, और यहाँ की सुबह जितनी खूबसूरत है उतनी ही यादगार शाम भी है।
2: नेतरहाट उन लोगों के लिए खास जगह है जो कुछ पल प्रकृति के साथ बिताना चाहते हैं, जहाँ मोबाइल की घंटियों से ज्यादा पक्षियों की आवाज सुनाई देती है, जहाँ ट्रैफिक के शोर की जगह हवाओं की सरसराहट होती है और जहाँ हर मोड़ पर प्रकृति एक नया दृश्य दिखाती है। तो अगली बार जब जिंदगी की भागदौड़ से थोड़ा दूर जाने का मन करे, जब मन को सुकून चाहिए, तो झारखंड के नेतरहाट को अपनी यात्रा की सूची में जरूर शामिल कीजिए।
3: क्योंकि नेतरहाट सिर्फ एक पर्यटन स्थल नहीं, यह प्रकृति की गोद में सुकून का एक खूबसूरत एहसास है।
2: तो नेतरहाट आइए, पहाड़ों को महसूस कीजिए, प्रकृति को निहारिए और अपने साथ यादों की एक खूबसूरत तस्वीर लेकर जाइए।

0: तो पर्यटन स्थल की सैर तो हमने कर ली, अब क्यों ना खेल खिलाड़ियों की बात करें।
1: हाँ
0: तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आज जो सबसे रोमांचक मुकाबला होने वाला है महिला एशिया कप क्रिकेट में। एशिया कप के सेमीफाइनल में जगह पक्की कर चुकी भारतीय टीम की नजरें अब आज चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान के खिलाफ जीत के साथ लीग चरण का शानदार अंत करने पर हैं।
1: हाँ, और दोस्तों भारत पाकिस्तान मुकाबलों को लेकर मैदान के बाहर काफी रोमांच रहता है, और लेकिन पिछले काफी समय से मैदान पर मुकाबले उतने प्रतिस्पर्धी नहीं रहे हैं।
0: दुबई अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में होने वाले मुकाबले में भारत का पलड़ा कहीं मजबूत दिख रहा है पाकिस्तान की तुलना में। भारत के लिए यह अच्छा संकेत है और औपचारिकता नहीं होगा, क्योंकि विश्व कप में पिछले कुछ मैचों पर समय से पहले बाहर होने के बाद भारतीय टीम को T20 प्रारूप में कुछ क्षेत्रों में सुधार की भी जरूरत है।
1: हाँ, और आगे हम बातें करते हैं अब चैलेंजर ट्रॉफी फुटबॉल 13 सितंबर से जो होने वाला है। दोस्तों मोराबादी क्रीड़ा केंद्र के तत्वाधान में 13 से 20 सितंबर तक मोराबादी चैलेंजर ट्रॉफी फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है, और टूर्नामेंट के सभी मैच मोराबादी फुटबॉल मैदान में खेले जाएंगे, और टूर्नामेंट में 16 टीमों का प्रवेश दिया जाएगा।
0: वहीं आपको बता दें कि उपविजेता को 51,000 रुपये ट्रॉफी व जर्सी सेट दिया जाएगा और टूर्नामेंट में 16 टीमों को प्रवेश दिया जाएगा। विजेता टीम को 71,000 रुपये ट्रॉफी व जर्सी सेट दिया जाएगा। प्रवेश की अंतिम तिथि 7 सितंबर है। और बात कर लें, जश्न मनाने के लिए भारत जापान पहली बार खेलेंगे T20 क्रिकेट मैच। राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम 22 सितंबर को जापान के खिलाफ पहला T20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला खेलेगी। भारत 19 सितंबर से 4 अक्टूबर तक जापान के आईजी नागोया में

होने वाले एशियाई खेलों में भी हिस्सा लेगा। जापान के खिलाफ सानो में होने वाला यह T20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला एशियाई खेलों से पहले भारतीय टीम को महत्वपूर्ण मैच अभ्यास देगा।

0: तो श्रोताओं, इस गीत के साथ आज का ये हमारा मनोरंजक और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम जोहार रांची यहीं संपन्न होता है। अपने दोस्त हिमांशु और
1: कंचन को दीजिए इजाजत।
0: जोहार, जोहार, नमस्कार, नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम जोहार रांची, आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। श्रोताओं, अब आपको लिए चलते हैं हमारे दिल्ली केंद्र, जहां से आप सुनेंगे राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के अवसर पर नई दिल्ली के विज्ञान भवन में भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार वितरण समारोह का जीवंत प्रसारण।

0: of the National Award to Teachers, being organized by Ministry of Education, Government of India, in the gracious presence of Honorable President of India, Srimati Draupadi Murmu, at Vigyan Bhavan, New Delhi. Our commentators are Shoaib Yar Khan in Hindi and Kaushik Roy in English.
1: ये आकाशवाणी है। अब हम आपको सुनवाते हैं नई दिल्ली के विज्ञान भवन से शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की गरिमा में उपस्थिति में आयोजित राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार समारोह का सजीव विवरण। विवरण दे रहे हैं शोएशियार खान हिंदी में और कौशिक रॉय अंग्रेजी में। आइए विज्ञान भवन चले।
2: सभी श्रोताओं को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं हूं शोएशियार खान और अंग्रेजी में आंखों देखा हाल सुनाने के लिए मेरे साथ है कौशिक राय। आकाशवाणी के इस सीधे प्रसारण में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम देश की राजधानी नई दिल्ली के विज्ञान भवन के भव्य प्लेनरी हॉल से आपके साथ सीधे जुड़े हुए हैं। अवसर है शिक्षक दिवस का और समारोह है राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 का। ये वो अवसर है जब राष्ट्र उन शिक्षकों को सम्मानित करता है जिन्होंने अपने ज्ञान, समर्पण, नवाचार और सेवा भाव से विद्यार्थियों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाया है। आज भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू देश के 48 उत्कृष्ट स्कूली शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस गरिमापूर्ण समारोह का आयोजन भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय एवं कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। इस समय विज्ञान भवन का प्लेनरी हॉल देश के अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से आए शिक्षकों की उपस्थिति से विशेष रूप से गौरवपूर्ण दिखाई दे रहा है। इन शिक्षकों के चेहरों पर उत्साह है, गर्व है, वर्षों की मेहनत के बाद मिले इस राष्ट्रीय सम्मान की खुशी है। आज यहाँ उपस्थित प्रत्येक शिक्षक अपने साथ अपने विद्यालय की एक कहानी लेकर आया है। किसी के साथ ग्रामीण भारत की कहानी है, किसी के साथ दूर दराज के क्षेत्र में शिक्षा की अलग जगाने की कहानी है, किसी ने विद्यार्थियों में वैज्ञानिक सोच विकसित की है तो किसी ने तकनीक और नवाचार के माध्यम से शिक्षा को नई दिशा दी है। आज इन सब प्रयासों को राष्ट्र की ओर से सम्मान मिलने जा रहा है। कौशिक,

0: किया है और स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार किया है। इस वर्ष 48 शिक्षकों का चयन किया गया है, इनमें 26 पुरुष और 22 महिला शिक्षक हैं। ये शिक्षक 27 राज्यों, 7 केंद्र शासित प्रदेशों और 6 केंद्रीय सरकारी संगठनों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इनका चयन राज्य, जिला, राष्ट्रीय स्तर की 3 स्तरीय प्रक्रिया के माध्यम से किया गया है। श्रोताओं, विज्ञान भवन का यह ऐतिहासिक सभागार उत्सुकता से माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की प्रतीक्षा कर रहा और अब मैं देख रहा हूँ कि शिक्षा मंत्री श्री प्रहलाद जोशी जी इस वक्त सभागार में पधार चुके हैं। उनके साथ शिक्षा राज्य मंत्री श्री जयंत चौधरी जी भी हैं। माननीय राष्ट्रपति के आगमन की सुगुगाहट यहाँ पर अब बढ़ गई है, लोगों में उत्साह बढ़ गया है, कौतूहल बढ़ गया है और इस वक्त सबकी निगाहें हैं उस द्वार की तरफ जहां से माननीय राष्ट्रपति कुछ ही क्षणों में प्रवेश करेंगी और ये 2026 के राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार प्रदान करेंगी।
1: एंड ऑन द डेस वी कैन सी दैट द मिनिस्टर फॉर एजुकेशन श्री प्रहलाद जोशी, द मिनिस्टर फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप इंडिपेंडेंट चार्ज एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर Education, Sri Jayant Chaudhary, Dr. Sukanta Majumdar, Honorable Minister of State for Education, and the Honorable President of India, Srimati Draupadi Murmu, has arrived at the plenary hall of the Vigyan Bhavan, and she has been loudly cheered by all the awardees and the delegates who are present at the plenary hall.
0: यह अत्यंत गर्मी में दृश्य है। भारत के राष्ट्रपति इस वक्त

0: राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान के साथ ही इस समारोह का विधिवत शुभारंभ हो चुका है। माननीय राष्ट्रपति अपना स्थान ग्रहण करते हुए,
1: आपकी अनुमति हो तो समारोह का शुभारंभ किया जाए।
0: और अब माननीय राष्ट्रपति से विधिवत अनुमति लेकर इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया जा रहा है।
2: गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः।
0: देश के अलग अलग हिस्सों से आए शिक्षक राष्ट्रपति के समक्ष उपस्थित हैं और पूरे सभागार में सम्मान और उत्साह का वातावरण दिखाई दे रहा है। सभागार में उपस्थित गणमान्य अतिथि और शिक्षकों राष्ट्रपति का अभिवादन कर रहे हैं। सबकी निगाहें इस वक्त मंच की तरफ है और मंच पर आसीन है माननीय राष्ट्रपति के साथ केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री प्रहलाद जोशी, शिक्षा राज्य मंत्री श्री जयंत चौधरी, शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुकंता मजूमदार, देवश्री मुखर्जी जो कि सेक्रेटरी है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप में, इसके अलावा मिस दीप्ति गौड़ मुखर्जी जो कि हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की सेक्रेटरी है, और श्री टी के अनिल कुमार सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन विद्यालय।
3: एंड नाउ शॉर्ट फिल्म ऑन द फर्स्ट लॉट ऑफ 24 नेशनल टीचर अवार्ड।
4: विज्ञान शिक्षा को नई दिशा दी, उन्होंने वर्चुअल बायोलॉजी लेबोरेटरी, एआई इनेबल्ड बायोलॉजी एजुकेशन और क्यूआर आधारित ट्री टॉक जैसे नवाचारों से उन्नत स्टेम अधिगम को सुलभ बनाया, जिसके लिए डॉक्टर दिव्येंदु सेन को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
5: सुश्री अमुथा जेनी 22 वर्षों की सेवा में फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी FLN समावेशी एवं आनंदमय शिक्षा तथा युवा नेतृत्व के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया। कम लागत वाली शिक्षण सामग्री एवं KVS फोनिक्स वर्कबुक विकसित किए। उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए सुश्री अमुथा जे को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
4: पंजाब के पटियाला स्थित राजकीय विक्टोरिया गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल में श्री दिनेश कुमार ने करीब 25 वर्षों से विज्ञान शिक्षा को समृद्ध बनाने में योगदान दिया है। उन्हें पंजाब स्टेट अवार्ड 2020 और टीचर ऑफ द ईयर ऑफ पंजाब अवार्ड 2022 से भी सम्मानित किया गया। विज्ञान शिक्षा में अपने समर्पित योगदान के लिए श्री दिनेश कुमार को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
5: सिक्किम की खूबसूरत पहाड़ियों में PM श्री गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल डिकलिंग में सुश्री सुषमा तमांग ने दूर दराज के विद्यार्थियों की प्रतिभा को पहचान कर उन्हें इंस्पायर मानक इंटरनेशनल YRE कंपटीशन और एशियाई सम्मेलनों में सफलता के लिए तैयार किया, जिसके लिए सुश्री सुषमा तमांग को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। झारखंड के बरमसिया स्थित मिडिल स्कूल बरमसिया में सुश्री मुनमुन भट्टाचार्य जी ने कोयला खनन क्षेत्र के वंचित बच्चों के लिए कम लागत वाली फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी सामग्री, आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग और व्यवसायिक कौशल के अवसरों से बच्चों की सीखने की चुनौतियों को कम किया, जिसके लिए सुश्री मुनमुन भट्टाचार्य जी को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। पश्चिम बंगाल के झाड़ग्राम जिले के नया ग्राम स्थित गवर्नमेंट मॉडल स्कूल में श्री शांतनु पात्र ने वंचित आदिवासी विद्यार्थियों के लिए समावेशी, तकनीक सक्षम एवं अनुभवात्मक शिक्षा को

0: सिखा दी। उन्होंने ARVR ब्लेंडेड लर्निंग यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग का प्रभावी उपयोग किया। उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए श्री शांतनु पात्रा को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
1: चंडीगढ़ के मनोया कॉलोनी स्थित राजकीय मॉडल हाई स्कूल में श्री रवि जायसवाल ने विज्ञान शिक्षण को नवाचार, तकनीक और अनुभवात्मक अधिगम से समृद्ध किया। उन्होंने कम लागत में सीवी रमन डोम थिएटर, मोबाइल साइंस लैब तथा पुनर्चक्रित सामग्री से साइंस एंड नॉलेज पार्क विकसित किया। उनके तकनीक सक्षम एवं नवाचारी योगदान के लिए उन्हें राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। सरकारी स्कूलों को बेहतर बनाने और बच्चों के लिए सीखने के नए अवसर तैयार करने में सुश्री लालनुन मावी ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मिजोरम के लंगलेई स्थित गवर्नमेंट इलेक्ट्रिक वेंग हाई स्कूल में उन्होंने इंटरैक्टिव ICT टूल्स और फ्री रेमिडियल कोचिंग के जरिए विद्यार्थियों की सीखने की क्षमता को मजबूत किया। सार्वजनिक शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने और विद्यार्थियों को आगे बढ़ने के अवसर देने के लिए सुश्री लालनुन मावी को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। सुश्री सुनीता यादव ने छत्तीसगढ़ के खिचड़ी स्थित शासकीय माध्यमिक विद्यालय में प्रोजेक्टर, लैपटॉप, टैबलेट और मोबाइल ICT उपकरणों से स्मार्ट क्लासरूम तैयार किया। न्यूता भोजन और घर घर पुस्तक वाचन जैसे प्रयासों से सुघर पढ़ैया प्लेटफॉर्म ग्रेड प्राप्त किया। ग्रामीण शिक्षा को नवाचार से सशक्त बनाने के लिए सुश्री सुनीता यादव को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
0: हिमाचल प्रदेश के भालेट स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाचार्य सुश्री मंजरी वी महाजन ने शिक्षण को बढ़ावा देते हुए कचरा प्रबंधन, कंपोस्टिंग, जल संरक्षण और जैव विविधता संरक्षण के क्षेत्र में प्रभावी पहल की। शिक्षा में नवाचार और नेतृत्व के उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए सुश्री मंजरी वी महाजन को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के माया बंदर स्थित PM श्री GMSSS में श्री जे प्रकाश राव ने बिल्डिंग एज लर्निंग एड अप्रोच के जरिए स्कूल को ही इंटरैक्टिव रिसोर्सेज में बदला। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग डिजिटल रिसोर्सेज 21st सेंचुरी स्किल्स को मजबूत किया, जिसके लिए श्री जे प्रकाश राव को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
1: सुश्री कुंदा जयवंत बच्छाव ने नगर निगम विद्यालय को ARVR रोबोटिक्स, असिस्टिव टेक्नोलॉजी एवं QR आधारित संसाधनों से युक्त आधुनिक शिक्षण केंद्र में परिवर्तित किया। उनके एजुकेशनल पेरेंटिंग अभियान से 150 से अधिक वंचित बालिकाओं को आर्थिक सहयोग मिला। समावेशी नवाचार, बालिका सशक्तिकरण, उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए सुश्री कुंदा जयवंत बच्छाव को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
0: बिहार के विदायदेह स्थित उर्दू प्राइमरी स्कूल में सुश्री खुशबू कुमारी ने एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, कम लागत वाली शिक्षण सामग्री और इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा को सरल, सहज और प्रभावी बनाया। सुश्री खुशबू कुमारी को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
1: मध्य प्रदेश के भोपाल स्थित PHEL के शासकीय महात्मा गांधी सांदीपनी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में डॉक्टर अर्चना शुक्ला ने 15 वर्षों में विज्ञान को प्रयोग, पर्यावरण और खोज से जोड़ा। उन्होंने 1000 से अधिक गौरैया घर, 102 प्रजातियों के पेड़ों का डिजिटल मानचित्रण और प्लांट इमोशन जैसे नवाचार किए, जिसके लिए डॉक्टर अर्चना शुक्ला को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
0: उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद स्थित राजकीय बालिका इंटर कॉलेज विजयनगर में डॉक्टर रेणु त्रिपाठी ने 60 गांव के ड्रॉप आउट और स्कूल से बाहर बच्चों को दोबारा शिक्षा से जोड़ते हुए उन्होंने स्टेम, अटल टिंकरिंग लैब और कम लागत वाली शिक्षण सामग्री के माध्यम से समस्या समाधान को बढ़ावा दिया, जिसके लिए डॉक्टर रेणु त्रिपाठी को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। सुश्री भवानी बोमपेल्ली ने नवाचारी शिक्षण के माध्यम से प्री प्राइमरी शिक्षा का विस्तार कर खेल आधारित एवं डिजिटल अधिगम वातावरण विकसित किया तथा कंक्रीट पिक्टोरियल एब्स्ट्रैक्ट पद्धति और कम लागत वाली शिक्षण सामग्री से गणित एवं भाषा सीखने को सरल बनाया। उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए सुश्री भवानी बोमपेल्ली को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
1: सुश्री सुमन गोयल ने दिल्ली के फोर्ट कला स्थित राजकीय सर्वोदय कन्या विद्यालय में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुरूप इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, डिजिटल टूल्स और स्वयं निर्मित कम लागत वाली टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स के माध्यम से सीखने को रोचक और अनुभवात्मक बनाया। बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ा, विद्यालय में स्थिरता और शैक्षणिक प्रगति बढ़ी, जिसके लिए सुश्री सुमन गोयल को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। ओडिशा के अली पिंगल स्थित राजकीय उच्च विद्यालय में श्री पदराज उमाकांत नायक के मार्गदर्शन में 50 से अधिक प्रोटोटाइप विकसित हुए, जिनमें कम लागत वाली ऑटोमेटिक प्लेट वॉशिंग मशीन भी शामिल है, जिसके लिए एक विद्यार्थी को भारत सरकार का पेटेंट मिला। वैज्ञानिक सोच, नवाचार और सामुदायिक भागीदारी से ग्रामीण शिक्षा को सशक्त बनाने के लिए श्री पदराज उमाकांत नायक को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
0: श्री एस गणेशन भौतिकी शिक्षक ने साइंस थिएटर, अनुभवात्मक स्टेम एवं एआई सक्षम शिक्षण के माध्यम से विज्ञान शिक्षा में उल्लेखनीय नवाचार किया। उनके साइंस थिएटर इंटीग्रेशन मॉडल ने नाटक, कहानी एवं प्रदर्शन के माध्यम से जटिल वैज्ञानिक अवधारणाओं को सरल और रोचक बनाया, जिसके लिए श्री एस गणेशन को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। गोवा के एक्सएम स्थित गुजराती समाज स्पेशल स्कूल में श्री महादेव हनुमंत शिंदे ने विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए समावेशी शिक्षण को नई दिशा दी। उन्होंने 14 गतिविधि आधारित स्रोत पुस्तिकाएं तथा टैबलेट आधारित डिजिटल संसाधन विकसित किए। उनके प्रशिक्षित खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अम्भारत का गौरव बढ़ाया है। श्री महादेव हनुमंत शिंदे को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
1: मणिपुर के कोंगबा माखा स्थित लाइको अपर प्राइमरी स्कूल में श्री वांगलिम्बम गोविंद सिंह ने एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, कहानी और फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी के माध्यम से बच्चों की सीखने की क्षमता और भागीदारी को मजबूत किया, जिसके लिए श्री वांगलिम्बम गोविंद सिंह को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
0: महाराष्ट्र के सतारा स्थित सैनिक स्कूल में श्री शिव प्रकाश अरविंद पिंगारे ने हैंड्स ऑन साइंस एजुकेशन, लो कॉस्ट लर्निंग टूल और इंटरैक्टिव डिजिटल लर्निंग को बढ़ावा दिया है। उनके विद्यार्थियों ने CSIR इनोवेशन अवार्ड और DSC साकुरा साइंस जैसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अवसर हासिल किए। श्री शिव प्रसाद अरविंद पिंगारे को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। मध्य प्रदेश के ईदगाह स्थित सेंट जोसेफ कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में सुश्री संगीता यादव ने गणितोत्सव, क्वेस्ट फॉर मैथमेटिक्स, मैथ ई माइंड एंड मैथमेटिक्स जैसी पहलों के जरिए गणित को बनाया रचनात्मक और विद्यार्थियों में समस्या समाधान की क्षमता विकसित की, जिसके लिए सुश्री संगीता यादव को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। ओडिशा के मयूरभंज जिले के करंजिया स्थित EMRS में मोहम्मद जफर आलम ने आदिवासी बच्चों की शिक्षा में आधुनिक तकनीक, खेल और अनुभवात्मक शिक्षण के साथ आदिवासी संस्कृति और विरासत को भी शिक्षा का हिस्सा बनाए रखा, जिसके लिए मोहम्मद जफर आलम को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
2: और अब हमारी विनती है माननीय राष्ट्रपति महोदय आपसे कि
3: प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू विल कन्फर द नेशनल टीचर्स अवार्ड्स 2026 ऑन 24 ऑफ द टीचर्स ऑन होम टेलीफिल्म वॉज प्लेड एट विज्ञान भवन एंड वी कैन सी दैट द ऑनरेबल राष्ट्रपति जी द the Union Minister for Education, Sri Pralhad Joshi, and the Union Minister of State for Education, Sri Jayan Chaudhary, and Dr. Sukanto Majumdar, and other dignitaries are on the dais. And now the first teacher to receive the award is Sri Divyendra Sen from Rajasthan's Mahatma Gandhi Government School, Pachpahar.
4: And now the first teacher to receive the award is Sri Divyendra Sen from Rajasthan's Mahatma Gandhi Government School, Pachpahar. And now the first teacher to receive the award is Sri Divyendra Sen from Rajasthan's
3: Dinesh Kumar from Punjab will receive the National Teachers Award 2026 from the Honorable President of India.
2: Sushma Tamang, Sikkim.
4: Manch par Rashtrapati Shrimati Draupadi Murmu dwara shikshakon ko sammanit kiya ja raha hai. Ek ek karke sab shikshak ka naam pukara ja raha hai.
3: Sushma Tamang of Sikkim receives the citation from Honorable Rashtrapati. Munmun Bhattacharya, a teacher from Jharkhand, a really proud moment for these nation builders of India to receive the National Teachers Award.
2: Shantanu Patra, West Bengal.
4: Aur ab Pashchim Bengal ke Shantanu ji ko ye shikshak puraskar diya ja raha hai. 48 shikshakon ko aaj sammanit kiya ja raha hai.
2: Ravi Jaiswal, Chandigarh.
4: Aur ab Chandigarh ke Ravi Jaiswal maananiya rashtrapati se samman grahan karte hue.
2: Lalmun Moy, Mizoram.
3: From Mizoram is Lanun Mawi. And what a proud moment it is indeed for these teachers to receive the National Teachers Award.
2: Sunita Yadav, Chhattisgarh.
3: Rashtrapati ji. And Sunita Yadav ji from Chhattisgarh will be receiving the National Teachers Award 2026 from the Honorable Rashtrapati ji.
2: Manjuri Mahajan, Himachal Pradesh.
4: Aur ab Himachal Pradesh ki Manjuri Mahajan. माननीय राष्ट्रपति के समक्ष अपना पुरस्कार लेने के लिए बड़े उत्साह और गर्व के साथ आगे बढ़ती हुई माननीय राष्ट्रपति
2: जय प्रकाश राव अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स
4: और अब अंडमान निकोबार आइलैंड से आए शिक्षक जो कि दिव्यांग है वो माननीय राष्ट्रपति की हल्के हल्के की छड़ी के सहारे पढ़ते हुए माननीय राष्ट्रपति उन्हें
3: And he is receiving the award. What a proud moment it is indeed for J. Prakash Rao, the teacher from Andaman and Nicobar Islands. And this is indeed a very proud moment for all the teachers who are here at the
2: Kunda Jaivan Bachao, Maharashtra.
3: And Ms. Kunda Jaivan Bachao of Maharashtra is now receiving the National Teachers Award 2026 from the Honorable President of India.
2: Khushbu Kumari, Bihar.
4: Aur ab Bihar ki Khushbu Kumari maananiya Rashtrapati se apna ye samman grahan karte hue.
2: Archana Shukla, Madhya Pradesh.
3: And from Madhya Pradesh, Ms. Archana Shukla, and she received this award from the Honorable Rashtrapati ji for her work especially on innovation.
2: Renu Tripathi, Uttar Pradesh.
3: Ms. Renu Tripathi from Uttar Pradesh is Ghaziabad and she is working for especially school dropouts, STEM and automation among
2: her students. Bhavani Bompelli, Telangana.
3: From Telangana, Ms. Bhavani Bompelli and she focuses on innovation for pre-primary students. What a proud moment it is indeed.
2: Suman Goel, Delhi.
3: To receive the award from the Honorable Rashtrapati ji and now Ms. Suman Goel from Delhi. And she specializes on ICT and digital tools in education.
2: Umakant Nayak, Orissa.
4: Rashtrapati ke haathon samman prapt karte hue shikshakon ke chehre pe ek prasannta spasht dikhai de rahi hai. Ki keval ek padak ya pramaan nahi, ye unke pure jeevan ki mehnat rashtriya star par pehchan.
3: From Puducherry, Mr. Ganeshan S. is receiving the National Teachers Award 2026 from the Honorable President of India.
2: Mahadev Hanuman Shinde, Goa.
4: Goa se Mahadev Hanuman Shinde, maananiya Rashtrapati ji, apna samman grahan karte hue.
2: Wanglambam Govind Singh, Manipur.
3: And from the land of jewels, Manipur is Wanglambam Govind Singh.
2: Shri Prasad Arvind Tingare, Sainik School.
3: From Sainik School, Shri Prasad Arvind Tingare receives the National Teachers Award from the Honorable
2: Sangeeta Yadav, Central Board of Secondary Education.
4: CBSE ki Sangeeta Yadav, Maananiya Rashtrapati ke aage उपस्थित होकर अपना सम्मान ग्रहण कर रही हैं।
2: मोहम्मद जफर आलम, एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल।
4: और अब श्री जफर आलम अपना पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं, ये राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार। माननीय
2: कोटि कोटि धन्यवाद माननीय राष्ट्रपति महोदया।
3: एंड नाउ द ऑनर

0: President of India, Srimati Draupadi Murmu, is being escorted to the dais along with the Minister for Education, Shri Prahlad Joshi, and the Ministers of State for Education, Shri Jayant Chaudhary and Dr. Shukanta Majumdar, and the Secretary, Department of School Education and Literacy, the Secretary, Department of Higher Education, and the Secretary, Department of Skill Development and Entrepreneurship.
1: 24 शिक्षकों को माननीय राष्ट्रपति के हाथों सम्मानित किया गया और अब माननीय राष्ट्रपति गणमान्य व्यक्तियों के साथ अपना स्थान ग्रहण करते हुए महाराष्ट्र के कैच धारो रोड स्थित निवासी माध्यमिक विद्यालय नरसिंह राव गित्ते को 29 वर्षों से गन्ना श्रमिकों के बच्चों को शिक्षा से जोड़ने का काम किया है. बाल रक्षक और शिक्षण अपल्यादारी जैसे अभियानों से उन्होंने बच्चों तक शिक्षा पहुंचाई. उन्होंने बच्चों को उच्च शिक्षा और बेहतर भविष्य की ओर बढ़ाया, जिसके लिए डॉक्टर कविता नरसिंह राव गित्ते को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है. गुजरात के रंगपुर स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय में श्री नितिन कुमार महेंद्र कुमार पाठक ने सीमित संसाधनों वाले आदिवासी विद्यालय को डिजिटल एवं अनुभवात्मक शिक्षा के केंद्र में बदल दिया. उन्होंने 7D VR AR लैब और आर न्यूज जैसी सुविधाएं विकसित की. उनके मार्गदर्शन में विद्यार्थियों ने नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस एवं इसरो प्रशिक्षण में सफलता प्राप्त की. उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है.
2: लद्दाख के कारगिल स्थित शासकीय मॉडल मिडिल स्कूल में मोहम्मद मुस्तफा कमाल ने सीमित संसाधनों के बीच बच्चों के लिए सामाजिक विज्ञान को अनुभव और स्थानीय जीवन से जोड़कर रोचक बनाया. 1000 से अधिक शिक्षकों को प्रशिक्षित कर संदर्भ आधारित शिक्षा को सशक्त बनाने के लिए मोहम्मद मुस्तफा कमाल को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है. केरलम के श्री सुनील कुमार केपी ने नवाचारी एवं ICT सक्षम भाषा शिक्षण के माध्यम से मलयालम भाषा में पठन, संचार एवं रचनात्मक अभिव्यक्ति को बढ़ावा दिया. विद्यार्थी मार्गदर्शन एवं समग्र विकास में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए श्री सुनील कुमार केपी को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है.
1: सुश्री याकू तामे ने अरुणाचल प्रदेश के नाहरलागुन स्थित गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल जी सेक्टर में विशेषकर बालिकाओं को विद्यालय से जोड़ा और एक जर्जर विद्यालय को बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, साइंस और मैथमेटिक्स लेबोरेटरीज से सुसज्जित संस्थान में बदला. उनके मार्गदर्शन में विद्यार्थियों ने स्टेट बोर्ड में शीर्ष स्थान हासिल किए, जिसके लिए सुश्री याकू तामे को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है.
2: आंध्र प्रदेश के श्री राजेश कोलुरी ने AI सक्षम SLN डिजिटल शिक्षा एवं ग्रामीण विद्यार्थियों के मार्गदर्शन में उल्लेखनीय योगदान दिया. राज क्लासरूम के माध्यम से डिजिटल शिक्षण को व्यापक बनाया तथा शिक्षकों की डिजिटल क्षमता वृद्धि में योगदान दिया. श्री राजेश कोलुरी को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है.
1: श्री गबर सिंह बिष्ट ने उत्तराखंड के मेहरा स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय मुस्या खांड में 35 वर्षों तक ग्रामीण एवं पर्वतीय क्षेत्रों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने में महत्वपूर्ण योगदान दिया तथा दूरदर्शन उत्तराखंड के शैक्षिक मॉड्यूल से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दूर दराज के विद्यार्थियों तक पहुँचाई. उनके नवाचार, ICT आधारित शिक्षण एवं समर्पित योगदान के लिए उन्हें राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है.
2: असम के रंगिया स्थित PM श्री केंद्रीय विद्यालय NFR में डॉक्टर मनीषा खेत्रपाल ने समावेशी शिक्षा, बुनियादी साक्षरता और विद्यार्थियों के बेहतर भविष्य के लिए निरंतर काम किया है. मास्टर ट्रेनर के रूप में उन्होंने असम के हजारों शिक्षकों को भी प्रशिक्षित किया, जिसके लिए डॉक्टर मनीषा खेत्रपाल को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है.
1: पश्चिम बंगाल के बर्दवान जिले के वार्ड नंबर 30 स्थित श्री रामकृष्ण शारदा विद्यापीठ प्राइमरी स्कूल में श्री पलाश चौधरी ने सुबह की भूख के कारण बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो, इसके लिए सोकालोर पुष्टि पहल शुरू की, जिससे बच्चों की उपस्थिति
3: और विद्यालय में नामांकन 3 गुना हुआ। उन्होंने शिक्षा को सामाजिक सशक्तिकरण से जोड़ा, जिसके लिए श्री पलाश चौधरी को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। बिहार के कुचाईकोटे स्थित मिडिल स्कूल कुचाईकोटे कन्या में सुश्री पुष्पा प्रसाद ने कम लागत वाली सामग्री, डिजिटल टूल्स और ग्रुप वर्क के जरिए विद्यार्थियों को सीखने के नए अवसर। उन्होंने ड्रॉप आउट बच्चों को दोबारा शिक्षा से जोड़ा और चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स की भागीदारी बढ़ाई। उन्होंने प्लांटेशन, वाटर सेग्रीगेशन और प्लास्टिक फ्री स्कूल जैसे प्रयासों को भी बढ़ावा दिया। सुश्री पुष्पा प्रसाद को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। 18 वर्षों से शिक्षा के प्रति समर्पित सुश्री पूर्णिमा मोहनलाल पटेल ने दादरा एवं नगर हवेली के दलवाड़ा स्थित डेवलपमेंट हाई स्कूल में विज्ञान परियोजनाओं तथा शिक्षक प्रशिक्षण में योगदान देकर उन्होंने समावेशी शिक्षा, सामुदायिक सहभागिता और विद्यार्थियों के समग्र विकास को सशक्त किया। उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए सुश्री पूर्णिमा मोहनलाल पटेल को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के जगदीशपुर स्थित गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में श्री इफ्तिखार खान ने निःशुल्क रविवार कला कक्षाओं के माध्यम से रचनात्मक एवं अनुभवात्मक अधिगम को बढ़ावा दिया। उन्होंने कला के माध्यम से सड़क सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण एवं सामाजिक जागरूकता को भी बढ़ावा दिया। कला शिक्षा, प्रतिभा संवर्धन एवं सामाजिक जागरूकता में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए श्री इफ्तिखार खान को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। कर्नाटक के होनेबिल स्थित गवर्नमेंट हायर प्राइमरी स्कूल समतगरु में सुश्री रत्ना कुमारी एस ने टॉय बेस्ड पेडागॉजी, अबाकस मैथमेटिक्स और एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट के जरिए सीखने को आनंददायक और समावेशी बनाया। उनके मार्गदर्शन में ग्रामीण विद्यार्थियों ने प्रतिभा करंजी जैसे स्टेट कल्चरल प्लेटफॉर्म्स और इंस्पायर जैसे नेशनल साइंस प्लेटफॉर्म्स पर सफलता हासिल की, जिसके लिए सुश्री रत्ना कुमारी एस को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
2: जम्मू कश्मीर में डलहौरी के HSS डलहौरी में मोहम्मद अयाज रैना ने कंप्यूटर लैब से लेकर स्मार्ट बोर्ड और इंटरैक्टिव ई कॉन्फ्रेंस को शिक्षण का हिस्सा बनाया। शिक्षक विहीन विद्यालयों के विद्यार्थियों को ऑनलाइन बॉटनी शिक्षा की पहुंच सुनिश्चित की। विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के लिए मोहम्मद अयाज रैना को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
3: रोहतक हरियाणा के राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सांखी में श्री अनिल कौशिक ने गणित को रोचक और सभी के लिए सुलभ बनाने के लिए 40 से अधिक शिक्षण मॉडलों से सुसज्जित मैथ्स लैब, इंटरैक्टिव हरबंस पजल और वर्चुअल मैथ्स लैब विकसित की, जिसके लिए श्री अनिल कौशिक को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। त्रिपुरा के साबरूम स्थित पीएम श्री साबरूम गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में श्री रंजन देवनाथ ने स्मार्ट क्लासरूम्स, एक्सपीरियंशियल प्रोजेक्ट्स और इको क्लब एक्टिविटीज के जरिए लर्निंग बाय डूइंग को बढ़ावा दिया। उनके मार्गदर्शन में ग्रामीण आदिवासी छात्राओं ने स्टेट बोर्ड में शीर्ष स्थान और चीफ मिनिस्टर्स एक्सलेंस अवार्ड हासिल किए, जिसके लिए श्री रंजन देवनाथ को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
2: उत्तर प्रदेश के कोयलहा स्थित कंपोजिट स्कूल रसूलाबाद में सुश्री शालिनी कुशवाहा ने कला आधारित गतिविधियों, डिजिटल संसाधनों और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित टूल्स के जरिए पढ़ाई को सहज और आनंदमय बनाया, जिससे विद्यालय को निपुण विद्यालय की पहचान मिली, जिसके लिए सुश्री शालिनी कुशवाहा को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। तमिलनाडु के पुलियमपट्टी स्थित पंचायत यूनियन प्राइमरी स्कूल में श्री थंगाराज एम ने बच्चों के लिए शिक्षा को समावेशी, आनंददायक और उनके जीवन से जुड़ा बनाया है। उन्होंने ग्रामीण स्कूलों में टॉयलेट, स्मार्ट क्लासरूम, इंटरैक्टिव बोर्ड, टॉय लाइब्रेरीज और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने में योगदान दिया, जिसके लिए श्री थंगाराज एम को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। राजस्थान के जयपुर चाकसो स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक बालिका विद्यालय तुमली का बास में डॉक्टर वर्तिका गुलाटी ने मूंगफली से बीज गणित और पतंगों से ज्यामिति समझाने के साथ प्रश्नों से विज्ञान पहल के जरिए रटने की जगह विद्यार्थियों में जिज्ञासा और खोज की भावना विकसित की। डॉक्टर वर्तिका गुलाटी को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
3: आर रोनाल्ड नेहरो ने नागालैंड के सिक्चू स्थित जीएचएसएस सिक्चू सुक्सा में समुदाय संपर्क व्यक्तिगत मार्गदर्शन के जरिए बच्चों को विद्यालय से जोड़े रखा और ड्रॉप आउट कम। आईसीटी आधारित शिक्षण के साथ शैक्षिक भ्रमण वाद विवाद और सांस्कृतिक गतिविधियों से उन्होंने सीखने को जीवन से जोड़ा। शिक्षा के प्रति उनके समर्पण के लिए श्री आर रोनाल्ड नेहरो को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। मध्य प्रदेश के सीधी जिले के कंजवार स्थित शासकीय माध्यमिक विद्यालय में श्री शैलेंद्र प्रताप सिंह ने जन भागीदारी एवं समावेशी शिक्षा के माध्यम से विद्यालय को सामुदायिक विकास का केंद्र बनाया। उनके प्रयासों से नामांकन 69 से बढ़कर 202, उपस्थिति 44% से बढ़कर 96% हुई और ड्रॉपआउट समाप्त हुए। उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
2: श्री वैभव वसंतराव कुलकर्णी ने महाराष्ट्र के लातूर स्थित पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय में खिलौनों, कला और वास्तविक जीवन की समस्याओं के माध्यम से जटिल गणितीय अवधारणाओं को सरल और रोचक बनाया। उन्होंने गुणवत्तापूर्ण गणितीय सामग्री देश भर के विद्यार्थियों तक पहुंचाई, जिसके लिए श्री वैभव वसंतराव कुलकर्णी को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
3: असम के जनजातीय क्षेत्र में श्री राजेश बर्दोलोई ने प्रथम पीढ़ी के मिशिंग जनजातीय विद्यार्थियों के लिए गतिविधि आधारित आईसीटी सक्षम एवं बहुभाषी शिक्षण को प्रभावी बनाया। उन्होंने सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों एवं दीक्षा ई कंटेंट के विकास में योगदान दिया। जनजातीय शिक्षा, बहुभाषी शिक्षण, डिजिटल सशक्तिकरण एवं सामाजिक नेतृत्व में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। सुश्री राधा राजेश ने माध्यमिक विज्ञान शिक्षा में नवाचारों एवं एआई सक्षम शिक्षण को प्रभावी बनाया। उन्होंने फील्ड आधारित अधिगम, प्रयोगात्मक गतिविधियों और जैव नैतिक चर्चाओं के माध्यम से जीव विज्ञान को अनुभवात्मक एवं जीवन केंद्रित बनाया। उनके मार्गदर्शन में विद्यार्थियों ने राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया तथा इसरो यूआरएससी नेशनल साइंस डे में 4 बार विजेता रहे। उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
2: और अब हम माननीय राष्ट्रपति महोदया आपसे विनम्र विनती करते हैं कि
4: प्लेनरी हॉल में पुरस्कार प्राप्त करने वाले शिक्षकों के उत्कृष्ट कार्यों पर आधारित लघु वृत्त चित्र दिखाया गया। इन फिल्मों के माध्यम से हम जान पाए कि देश के विभिन्न हिस्सों में शिक्षक किस प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में नए प्रयोग कर रहे हैं, कहीं तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं, कहीं स्थानीय संसाधनों के माध्यम से इस प्रक्रिया को विकसित कर रहे हैं सीखने की, कई खेल
0: गतिविधियों राष्ट्रपति नेशनल टीचर्स अवार्ड टू The first awardee in this session is Kavita Narasingh Rao Gitte from Maharashtra. And what a proud moment it is indeed for this
2: Nitin Kumar Mahendra Kumar Pathak, Gujarat.
0: Nitin Kumar Mahendra Kumar Pathak, and he is known for his innovations, 7DVR Labs, ICT and Children's Science Congress, and
2: Mohammed
0: also his
2: Mustafa
0: students
2: Kamal
0: participated Gujarat in ISRO competition.
4: Dusre charan mein ab Mananiya Rashtrapati baki 24 शिक्षकों को पुरस्कार प्रदान कर रही हैं।
0: मोहम्मद मुस्तफा कमाल ऑफ लद्दाख इज अ सोशल साइंस टीचर एंड ही हैज ट्रेन्ड 1000 टीचर्स। ही इज आल्सो अ मास्टर ट्रेनर। एंड नाउ फ्रॉम केरलम सुनील कुमार केपी हु हैज यूज्ड मलयालम आईसीटी एंड डिजिटल टूल्स। एंड द नेक्स्ट विनर इज फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश याकुन तामे who
2: Rajesh
0: has worked for bettering the infrastructure of the school. From Andhra Pradesh, Rajesh Koluri, who has used Raj classrooms and digital ICT tools
2: Gabar
0: for education.
2: Bish, Uttarakhand.
0: From Uttarakhand, Gabar Singh Bisht, who uses education and also is known for his Doordarshan education
2: Manisha
0: module.
2: Manisha Khetrapal, Kendriya Vidyalaya Sangathan.
0: from Kendriya Vidyalaya Sangathan, Manisha Khetrapal, who is also a master trainer of teachers.
5: Palash Chaudhary, West Bengal.
0: From West Bengal, Palash Chaudhary. And he has worked on education and strengthening society, especially for his

0: प्रसाद बिहार
1: और अब बिहार से पुष्पा प्रसाद अपना पुरस्कार प्राप्त कर ले माननीय राष्ट्रपति के समक्ष पूरे उत्साह और
0: पटेल पूर्णिमा मोहन लाल दमन एंड दीव दादर एंड नगर हवेली
2: दमन दीव दादरा एंड नगर हवेली पूर्णिमा पटेल रिसीव द अवार्ड फ्रॉम द ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया
0: खान उत्तर प्रदेश
1: से डॉक्टर इफ्तिखार खान अपना पुरस्कार प्राप्त कर रहे हैं माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी
0: जता कुमारी एस कर्नाटका
2: फ्रॉम कर्नाटका रत्न कुमारी एस एंड शी हैज यूज्ड टॉय बेस्ड पेडागोजी फॉर एजुकेशन
0: मोहम्मद अयाज रैना जम्मू एंड कश्मीर
1: और अब जम्मू और कश्मीर से मोहम्मद अयाज रैना अपना पुरस्कार प्राप्त करने माननीय राष्ट्रपति के समक्ष
0: अनिल कौशिक हरियाणा
2: अनिल कौशिक ऑफ हरियाणा ही हैज 40 मॉडल्स इन हिज मैथमेटिक्स लैब एंड इज नाउ रिसीविंग द अवार्ड फ्रॉम द ऑनरेबल
0: रंजन देवनाथ त्रिपुरा
1: और अब त्रिपुरा से श्री रंजन देवनाथ अपना पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं तालियों के बीच सभी उनका स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं
0: शालिनी कुशवाहा उत्तर प्रदेश
1: से शालिनी कुशवाहा को ये पुरस्कार दिया गया है उनके शिक्षा के क्षेत्र में अदम्य और अद्भुत कार्य के लिए माननीय
0: थंगराज एम तमिलनाडु
2: फ्रॉम तमिलनाडु थंगराज एम इज रिसीविंग द अवार्ड फ्रॉम द ऑनरेबल राष्ट्रपति जी एंड ही हैज वर्क्ड एक्सटेंसिवली ऑन एंजॉयबल एंड रिलेटेबल एजुकेशन
0: वर्तिका गुलाटी राजस्थान
1: राजस्थान से वर्तिका गुलाटी माननीय राष्ट्रपति से नमस्कार किया चुकर माननीय राष्ट्रपति ने अभिवादन स्वीकार किया और अब माननीय राष्ट्रपति से वो पुरस्कार ग्रहण कर रही है शिक्षा के क्षेत्र में
0: आर रोनाल्ड मेरू नागालैंड
2: फ्रॉम नागालैंड आर रोनाल्ड मेरू विल बी रिसीविंग द अवार्ड फ्रॉम द ऑनरेबल राष्ट्रपति जी एंड ही हैज वर्क्ड एक्सटेंसिवली ऑन इंटरएक्टिव एजुकेशन हियर इज रिसीविंग
0: शैलेंद्र प्रताप सिंह मध्य प्रदेश
2: प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम मध्य प्रदेश शैलेंद्र प्रताप सिंह will receive the award and he has worked to say that there is no dropout from his school
0: Devo and Basant Rao Kulkarni, Navodaya Vidyalaya Samiti.
2: Larger enrollment has been there in his school. From Maharashtra, Vaibhav Basant Rao Kulkarni, who has worked extensively on lively education, receives his award from the Honorable Rashtrapati.
0: Rajesh Badaloi, Assam.
1: Assam se Rajesh Badaloi apna puraskar grahan kar rahe hain. In sabhi shikshakon ne apne apne kshetra mein
0: राधा इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन
1: कर्नाटका से इस वक्त पुरस्कार प्राप्त कर रहे हैं राधा राकेश
0: कोटि कोटि धन्यवाद
2: एंड द ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन श्री प्रहलाद जोशी द मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एजुकेशन श्री जयंत चौधरी एंड द मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एजुकेशन डॉक्टर सुकांत मजुमदार एंड द मिनिस्टर Secretary, Department of School Education and Literacy, Shri T.K. Anil Kumar, the Secretary, Department of Higher Education, Shrimati Deepthi Gaur Mukherjee, and the Secretary, Ministry of Skill Development and Entrepreneurship, Dr. Devashri Mukherjee, have now taken their seats on the dais, and the Honorable President will also confer awards to teachers and to the institutes who have worked in higher education. And now, tell us.
3: आर्किटेक्चर शिक्षा को सस्टेनेबल डिजाइन और रियल वर्ल्ड लर्निंग से जोड़ा है ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़कर वे विद्यार्थियों को आवास स्कूल अवसंरचना की वास्तविक चुनौतियों को समझने के लिए प्रेरित करती हैं। वास्तुकला शिक्षण के लिए प्रोफेसर अवलोकिता अग्रवाल को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है तेलंगाना के हैदराबाद स्थित IIT हैदराबाद में प्रोफेसर कीर्ति चंद्र साहू ने शोध शिक्षण और अकादमिक नेतृत्व के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है विज्ञान और शोध को भविष्य की मौसम संबंधी चुनौतियों से जोड़ने और विद्यार्थियों को शोध के लिए प्रेरित करने के लिए प्रोफेसर कीर्ति चंद्र साहू को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है
4: राजस्थान के पिलानी स्थित बिट्स पिलानी के डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में डॉक्टर विनय चमोला ने इंटरनेट ऑफ थिंग्स और ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में नए पाठ्यक्रम और हैंड्स ऑन IoT टिंकरिंग लैब्स के जरिए मेट सुपरविजन और AIoT ब्लॉक्स जैसे वेंचर्स के जरिए विद्यार्थियों को अपने विचारों को समाधान में बदलने के लिए प्रेरित किया। तकनीकी उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए डॉक्टर विनय चमोला को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। ओडिशा के भुवनेश्वर स्थित IIT भुवनेश्वर में डॉक्टर श्रीकांत गुल्लापुड़ी मेटलर्जी और मटेरियल साइंसेस की शिक्षा को आगे बढ़ा रहे हैं। कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, रियल लाइफ एप्लीकेशंस और एक्सपीरियंशियल लर्निंग के जरिए वे विद्यार्थियों की तकनीकी समझ को मजबूत करते हैं। शिक्षा कौशल और सामाजिक जरूरतों से जुड़ी रिसर्च को आगे बढ़ाने के लिए डॉक्टर श्रीकांत गुल्लापुड़ी को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। गुजरात के गांधीनगर स्थित IIT गांधीनगर में विद्यार्थियों में स्वतंत्र सोच और नए समाधानों की क्षमता विकसित करने वाले शिक्षक हैं डॉक्टर मिथुन राधाकृष्ण। वे इंजीनियरिंग, साइंसेस और फाइनेंस जैसे अलग अलग क्षेत्रों की अवधारणाओं को जोड़कर विद्यार्थियों को नए और अनजाने सवालों पर सोचने के लिए प्रेरित करते हैं। मौलिक सोच और समस्या समाधान का आत्मविश्वास विकसित करने के लिए डॉक्टर मिथुन राधाकृष्ण को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। मध्य प्रदेश के भोपाल स्थित IISER भोपाल में प्रोफेसर सौरभ दत्ता ने प्लांट बायोलॉजी के शिक्षण, शोध और आउटरीच के जरिए विद्यार्थियों को नई सोच और शोध की दिशा दी है। वो एम्पैथेटिक मेंटोरशिप और इंक्लूसिव लर्निंग इकोसिस्टम के जरिए विद्यार्थियों को सशक्त करते हैं। शिक्षण, शोध और समाज के प्रति अपने योगदान के लिए प्रोफेसर सौरभ दत्ता को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। मुंबई के IIT बॉम्बे के डिपार्टमेंट ऑफ अर्थ साइंसेज में प्रोफेसर विक्रम विशाल ने भू विज्ञान और जलवायु से जुड़े जटिल विषयों को शोध, प्रयोग और वास्तविक दुनिया की चुनौतियों के जरिए समझने का नया तरीका विकसित किया। भारत की पहली कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज फील्ड लेबोरेटरी स्थापित की। भू विज्ञान और जलवायु समाधान में शिक्षा, शोध और नवाचार को आगे बढ़ाने के लिए प्रोफेसर विक्रम विशाल को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। गुजरात के गांधीनगर स्थित नेशनल फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर जयराज सिंह सरवैया ने शिक्षा, शोध और उद्योग के बीच एक मजबूत सेतु तैयार किया है। उन्होंने फॉरेंसिक फार्मेसी, फूड फॉरेंसिक्स और मेडिकल डिवाइसेस जैसे तीन विशिष्ट क्षेत्रों में पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स को विकसित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। शिक्षा, शोध और इनोवेशन को रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट से जोड़ने के लिए प्रोफेसर जयराज सिंह सरवैया को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। उत्तर प्रदेश के IIT कानपुर के डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री में प्रोफेसर शंकर प्रसाद रथ ने रसायन विज्ञान में शोध, शिक्षण और विद्यार्थियों के मार्गदर्शन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उनके स्वयं NPTEL पाठ्यक्रम ने उच्च शिक्षा में उनकी विशेषज्ञता को व्यापक बनाया। विद्यार्थियों की प्रतिभा और करियर को संवारने के लिए प्रोफेसर शंकर प्रसाद रथ को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
3: उत्तराखंड के श्रीनगर गढ़वाल स्थित हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय में डॉक्टर मनीषा निगम ने बायोकेमिस्ट्री की पढ़ाई को प्रयोग, समस्या समाधान और वास्तविक जीवन के उदाहरणों से अधिक प्रभावी बनाया। शिक्षा, शोध और सामाजिक सरोकारों को साथ लेकर चलने के लिए डॉक्टर मनीषा निगम को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। महाराष्ट्र के वर्धा स्थित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज DMIHER में डॉक्टर अमर मोहन राव तकसांडे ने बाल चिकित्सा शिक्षा, शोध और मरीजों की देखभाल में उत्कृष्ट योगदान दिया है। उन्होंने कॉम्पिटेंसी बेस्ड मेडिकल एजुकेशन और पीडियाट्रिक एकोकार्डियोग्राफी के माध्यम से चिकित्सा प्रशिक्षण को मजबूत किया। डॉक्टर अमर तकसांडे को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। आंध्र प्रदेश के मंगलगिरी स्थित एम्स मंगलगिरी में डॉक्टर अरुण बाबू ने पीडियाट्रिक्स के शिक्षण, शोध और चिकित्सा शिक्षा में नवाचार को आगे बढ़ाया है। 400 से अधिक साइंटिफिक पब्लिकेशंस और अनेक रिसर्च प्रोजेक्ट्स के साथ चिकित्सा शिक्षा और नवाचार को सशक्त बनाने के लिए डॉक्टर अरुण बाबू को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। मणिपुर के इम्फाल स्थित मणिपुर यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ डांस एंड म्यूजिक में डॉक्टर पुखराम बम लीलावती देवी ने 15 वर्षों से अधिक समय में नृत्य संगीत और शोध के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मणिपुर स्टेट कला अकादमी के यंग टैलेंट अवार्ड और प्रसार भारती के मणिपुरी डांस में टॉप ग्रेड से सम्मानित डॉक्टर पुखराम बम लीलावती देवी को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
4: वाराणसी की बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज में प्रोफेसर आशुतोष मोहन ने 25 वर्षों से अधिक समय में मैनेजमेंट शिक्षा शोध और अकादमिक नेतृत्व में उल्लेखनीय योगदान दिया है। मार्केटिंग और सप्लाई चेन मैनेजमेंट में विशेषज्ञता के साथ उन्होंने 50 से अधिक शोध पत्र प्रकाशित किए। प्रोफेसर आशुतोष मोहन को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। असम के गुवाहाटी स्थित गुवाहाटी यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में प्रोफेसर अंकुरन दत्ता ने 2 दशकों से अधिक समय में शिक्षा मीडिया और सामुदायिक संवाद से इसी सोच के साथ आगे बढ़ाया। नॉर्थ ईस्ट भारत के पहले कम्युनिटी और वेब रेडियो स्टेशन की स्थापना कर सामुदायिक संचार स्थानीय ज्ञान और सांस्कृतिक जुड़ाव को सशक्त बनाने के लिए प्रोफेसर अंकुरन दत्ता को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 सम्मानित किया जाता है।
3: कर्नाटक के बेंगलुरु स्थित कर्नाटका संस्कृत यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर शिवानी वी ने संस्कृत के पारंपरिक अध्ययन को आधुनिक तकनीक और शोध से जोड़ने का महत्वपूर्ण कार्य किया। संस्कृत को आधुनिक सुलभ और नई पीढ़ी के लिए प्रासंगिक बनाने के लिए प्रोफेसर शिवानी वी को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
4: छत्तीसगढ़ के रायपुर स्थित पंडित रविशंकर शुक्ला यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर राजीव चौधरी ने फिजिकल एजुकेशन के क्षेत्र में शिक्षण शोध और विद्यार्थी कल्याण को नई दिशा दी है। डिजिटल पेडागोजी और अवेयर इंक्लूजन अफेक्शन AIA मॉडल के जरिए उन्होंने विद्यार्थियों में केवल याद करने की बजाय क्रिटिकल थिंकिंग और रिसर्च स्किल्स को विकसित किया। शिक्षा शोध और विद्यार्थी कल्याण को सशक्त बनाने के लिए प्रोफेसर राजीव चौधरी को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। कर्नाटक के बेंगलुरु स्थित MEI पॉलिटेक्निक में डॉक्टर विश्वनाथ एजेस पिछले 32 वर्षों से सिविल इंजीनियरिंग शिक्षा में इनोवेशन टेक्नोलॉजी और प्रैक्टिकल लर्निंग को बढ़ावा दे रहे हैं। उन्होंने मल्टीडिसिप्लिनरी नॉलेज डिजिटल लर्निंग और स्टूडेंट सेंट्रिक टीचिंग को बढ़ावा दिया। तकनीक आधारित और रोजगार से जुड़ी शिक्षा को मजबूत करने के लिए डॉक्टर विश्वनाथ एजेस को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। तमिलनाडु के कोयंबटूर स्थित PSG पॉलिटेक्निक कॉलेज में डॉक्टर शशि कलायस डिप्लोमा इंजीनियरिंग एजुकेशन को बेहतर बनाने के लिए इंडस्ट्री कोलैबोरेशन और आउटकम बेस्ड लर्निंग को आगे बढ़ा रही है। 110 से अधिक इंडस्ट्री अलाइंड एक्सपेरिमेंट्स और 11 इंडस्ट्री MOUs के जरिए उन्होंने विद्यार्थियों को प्रैक्टिकल लर्निंग के अवसर दिए। विद्यार्थियों के कौशल और अवसरों को बढ़ाने के लिए डॉक्टर शशि कलायस को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। तमिलनाडु के इरोड स्थित शक्ति पॉलिटेक्निक कॉलेज में डॉक्टर कन्नन रथिनम ने पॉलिटेक्निक शिक्षा में सीखने का एक व्यावहारिक मॉडल विकसित किया। उन्होंने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुरूप सैद्धांतिक अवधारणाओं को पीयर लर्निंग के माध्यम से समझने योग्य बनाया। पॉलिटेक्निक शिक्षा में नवाचार शोध और अनुभवात्मक शिक्षण को बढ़ावा देने के लिए डॉक्टर कन्नन रत्नम को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। महाराष्ट्र के सोलापुर स्थित गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में डॉक्टर संदीपन प्रल्हाद नारोटे ने इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और टेलीकम्युनिकेशंस की शिक्षा को टेक्नोलॉजी इनेबल्ड और एक्सपीरियंशियल लर्निंग से मजबूत किया है। उनकी टीचिंग लर्निंग अप्रोच से 5000 से अधिक विद्यार्थियों को लाभ मिला है। शिक्षण शोध और संस्थागत विकास में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए डॉक्टर संदीपन प्रल्हाद नारोटे को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। केरल के ITI अरीकोड में श्री हरीश ए ने इलेक्ट्रिकल स्किल्स ट्रेनिंग को नवाचार और सामाजिक जिम्मेदारी से जोड़ा है। उनकी सबसे खास पहल खेंडेला LED बल्ब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, जिसे उन्होंने ITI विद्यार्थियों के साथ स्थापित कर स्किल लर्निंग को वास्तविक उत्पादन और एंटरप्रेन्योरशिप से जोड़ा और उद्यमिता के माध्यम से युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए श्री हरीश ए को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। हिमाचल प्रदेश के मंडी से गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में फिटर ट्रेड के इंस्ट्रक्टर श्री जगमोहन ने कौशल प्रशिक्षण को गुणवत्ता

0: एफटीआई टॉलीगंज में वेल्डर ट्रेड के इंस्ट्रक्टर श्री संदीप बनर्जी ने कौशल प्रशिक्षण को आधुनिक तकनीक और व्यावहारिक सीखने से जोड़ा है। 300 से अधिक ट्रेनीज को कॉम्पिटेंसी बेस्ड और हैंड्स ऑन ट्रेनिंग देने के साथ उन्होंने नए वेल्डर इंस्ट्रक्टर्स के लिए मास्टर ट्रेनर के रूप में भी योगदान दिया है। युवाओं को सशक्त बनाने के लिए श्री संदीप बनर्जी को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। गुजरात के बिली मोरा स्थित इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में ऑटोमोबाइल ग्रुप के सुपरवाइजर इंस्ट्रक्टर श्री राजेश कुमार एम पटेल ने वाहन तकनीक के प्रशिक्षण को नवाचार और रोजगार से जोड़ा है। ट्राइसिकल ईवी विद स्टीयरिंग जनरेशन ने क्षेत्रीय स्किल कॉम्पिटिशन में तीसरा स्थान हासिल किया। ऑटोमोबाइल स्किल्स और रोजगार उन्मुख प्रशिक्षण के माध्यम से युवाओं को सशक्त बनाने के लिए श्री राजेश कुमार एम पटेल को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। राजस्थान के चौमू में स्थित गवर्नमेंट आईटीआई में रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग के सीनियर इंस्ट्रक्टर श्री हीरालाल शर्मा ने उनके विकसित किए गए स्प्लिट एसी और डीप फ्रीजर फॉल्ट सिमुलेटर्स के जरिए विद्यार्थी तकनीकी खराबियों की पहचान और ट्रबल शूटिंग का व्यवहारिक अभ्यास करते हैं, जिसके लिए श्री हीरालाल शर्मा को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
1: महाराष्ट्र के नासिक स्थित गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट त्रिंबकेश्वर आदिवासी में फैशन डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी की क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर श्रीमती अर्चना राकेश जाधव ने आदिवासी और ग्रामीण युवाओं को फैशन और अपैरल स्किल्स के माध्यम से रोजगार और उद्यमिता से जोड़ा है। युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए श्रीमती अर्चना राकेश जाधव को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। मध्य प्रदेश के उज्जैन स्थित गवर्नमेंट डिविजनल आईटीआई में COPA HIVI की ट्रेनिंग ऑफिसर श्रीमती रीना गुप्ता ने प्रैक्टिकल लर्निंग के माध्यम से वे विद्यार्थियों को कंप्यूटर ऑपरेशन और बेसिक प्रोग्रामिंग जैसे कौशलों में प्रशिक्षित करती हैं। दिव्यांग युवाओं को डिजिटल कौशल और आत्मनिर्भरता से सशक्त बनाने के लिए श्रीमती रीना गुप्ता को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। पश्चिम बंगाल के कोलकाता स्थित गवर्नमेंट आईटीआई टॉलीगंज में श्री सौमीन पंडित ने नई तकनीकों के कौशल प्रशिक्षण को प्रैक्टिकल और इंडस्ट्री ओरिएंटेड लर्निंग से जोड़ा है। उन्होंने 160 से अधिक लर्नर्स को ड्रोन टेक्नोलॉजी में प्रशिक्षित किया। नई तकनीकों और भविष्य के रोजगार के अवसरों से युवाओं को जोड़ने के लिए श्री सौमीन पंडित को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। असम के नॉर्थ ईस्ट स्किल सेंटर असम स्किल डेवलपमेंट मिशन में श्रीमती तुलिका कलिता ने अपने 20 वर्षों के अनुभव से युवाओं को वैश्विक हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के लिए तैयार किया है। उन्होंने 1400 से अधिक लर्नर्स को वर्क प्लेस रेडिनेस कम्युनिकेशन एटिकेट और प्रोफेशनल सर्विस स्किल्स से प्रशिक्षित किया, जिसके लिए श्रीमती तुलिका कलिता को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। पंजाब के लुधियाना स्थित नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में मशीनिस्ट ट्रेड के ट्रेनिंग ऑफिसर श्री संजय कुमार ने प्रिसिशन मशीनिंग और एडवांस्ड टेक्निकल स्किल्स के माध्यम से युवाओं को उच्च स्तरीय करियर के लिए तैयार किया है। उनके विद्यार्थी DRDO, इसरो, बार और इंडियन रेलवे जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों तक पहुँचे हैं। श्री संजय कुमार को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। मध्य प्रदेश के इंदौर स्थित नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट वुमेन में ट्रेनिंग ऑफिसर श्रीमती ज्योति बाला राठौर ने उनके मार्गदर्शन में विद्यार्थियों ने राष्ट्रीय परीक्षाओं और स्किल कॉम्पिटिशन्स में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की। कौशल और रोजगार के अवसरों के माध्यम से युवाओं को सशक्त बनाने के लिए श्रीमती ज्योति बाला राठौर को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
0: उड़ीसा के भुवनेश्वर स्थित सेंट्रल टूल रूम एंड ट्रेनिंग सेंटर में इंजीनियर ट्रेनिंग श्री प्रणव कुमार चौधरी ने कौशल विकास को बड़े स्तर पर प्रशिक्षण, गुणवत्ता और इंडस्ट्री रेडी लर्निंग से जोड़ा है। उन्होंने स्किल डेवलपमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप व्यापक स्तर तक पहुंचाया। कौशल, गुणवत्ता और रोजगारोन्मुख प्रशिक्षण को व्यापक स्तर पर सशक्त बनाने के लिए श्री प्रणव कुमार चौधरी को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
2: और

0: माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू शिक्षक दिवस 2026 के अवसर पर उच्च शिक्षा संस्थानों और पॉलिटेक्निक के शिक्षकों या संकाय सदस्यों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगी। माननीय राष्ट्रपति अब अपने स्थान से खड़े होकर पुरस्कार देने के लिए आगे आते हुए आपको बता दें, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 के लिए नामांकन राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आमंत्रित किए गए थे, जिनमें जन भागीदारी के तहत इसमें
1: प्रोफेसर अवलोकिता अग्रवाल आईआईटी रुड़की की
0: प्रोफेसर अग्रवाल अपना पुरस्कार ग्रहण करने माननीय राष्ट्रपति के सामने आ रही हैं। इन्होंने वस्तुकला और पर्यावरण के क्षेत्र में
2: फ्रॉम आईआईटी हैदराबाद प्रोफेसर कीर्ति चंद्र साहू and he works on chemical engineering and has trained many students.
1: Dr. Vinay Chamola.
0: And Professor Vinay Chamola, jinhone electrical aur electronics engineering ke kshetra mein kaam kiya hai, BSc Pranay se.
1: Dr. Srikant Golapudi, IIT Bhubaneswar.
2: From IIT Bhubaneswar, Dr. Srikant Golapudi, who works in metallurgical engineering,
1: Dr.
0: Mithun Radhakrishnan, जो कि केमिकल इंजीनियर है, इस क्षेत्र में इनको पुरस्कार दिया जा रहा है आईआईटी
1: प्रोफेसर सौरभ दत्ता आईआईएसईआर भोपाल
2: फ्रॉम आईआईएसईआर भोपाल प्रोफेसर सौरभ दत्ता रिसीव द अवार्ड फ्रॉम ऑनरेबल
1: प्रोफेसर विक्रम विशाल आईआईटी बॉम्बे
0: पृथ्वी विज्ञान के क्षेत्र में कार्य के लिए प्रोफेसर विक्रम विशाल को पुरस्कार दिया जा रहा है बॉम्बे महाराष्ट्र से
1: डॉक्टर जयराज सिंह सरवैया एनएफएसयू गांधीनगर
2: For his work in forensic sciences, Dr. Jairaj Sarvaiya of the National Forensic Science Laboratory,
1: Professor
0: University of Gujarat. Professor Shankar Prasad Rath, IIT Kanpur. Professor Shankar Prasad Rath ko puraskar diya ja raha hai, jo IIT Kanpur, Uttar Pradesh se hai.
1: Dr. Manisha Nigam, Hemvati Nandan Bahuguna Garhwal University, Uttarakhand.
2: Hemvati Nandan Bahuguna University, Uttarakhand receives her award in the field of biochemistry from the
1: Dr. Amar Mohan Rao
0: अगला पुरस्कार डॉक्टर अमर मोहन राव को दिया जा रहा है मेडिसिन के क्षेत्र में बाल रोग के लिए उन्होंने कार्य किया है वर्धा महाराष्ट्र से
1: डॉक्टर अरुण बाबू एम्स मंगलागिरी आंध्र प्रदेश
2: From Andhra Pradesh is Mangalagiri Ames, Dr. Arun Babu. He has worked especially
1: Dr.
2: on patriotic
1: Bhram
2: treatment
1: Bhram
2: and innovation
1: Devi,
2: and has
1: Manipur University
2: published 400
1: Imhal.
2: Scientific publications. Dr. P. Lilavati Devi receives her award from the Honorable President for her work on
1: Professor
2: Manipur Jan.
1: Professor Ashutosh Mohan, BSU Varanasi.
0: Professor Ashutosh Mohan, who is a Prabandh Adhyayan Sansthan, Banaras, se hai, unko puraskar diya ja raha hai.
1: Professor Ankuran Datta. Guwahati University, Guwahati.
2: Dr. Anukaran Datta of the Guwahati's Public Relations
1: Professor
2: and Communication
1: Shivani B. Karnataka Sanskrit University, Bangalore.
0: Sushri Shivani B. Karnataka University, Bangalore se hain. Inko Sanskrit Vishwavidyalaya se.
1: Professor Rajiv Chaudhary, Pandit Ravi Shankar Shukla University, Raipur.
2: Professor Rajiv Chaudhary receives the award for his work on physical education and is from the Pandit Ravi Shankar Shukla University,
1: Raipur.
0: Civil engineering ke kshetra mein Dr. Vishwanath HS ko puraskrit kiya ja raha hai Bangalore, Karnataka se.
1: Dr. Sasikala S, PST Polytechnic College, Coimbatore.
2: From Tamil Nadu's Coimbatore, Dr. Sasikala S receives the award for a work in electronics and electrical engineering.
0: बहुत ही विख्यात के क्षेत्र में डॉक्टर करण शक्ति रतनम को पुरस्कृत किया जा रहा है इरोड तमिलनाडु
1: डॉक्टर सांदीपन प्रहलाद नरोटे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक सोलापुर
2: फ्रॉम महाराष्ट्र सोलापुर डिस्ट्रिक्ट द गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक डॉक्टर संदीप नरोटे ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट रिसीव्ड द अवार्ड फ्रॉम द
1: ऑनरेबल
2: प्रेसिडेंट ऑफ
1: इंडिया हरीश ए गवर्नमेंट
2: आईटीआई
1: कोझिकोड केरलम
2: Harish A. of ITI Kerala receives the award from the Honorable President of India.
1: Jack Mohan, Government Industrial Training Institute, Mandi, Himachal Pradesh.
2: He specializes in fitter trade and also is a master trainer, Sri Jack Mohan from IIT, Himachal Pradesh.
1: By Uddhav Rao Patil, Government Industrial Training Institute, Dharashiv, Maharashtra. Sandeep Banerjee, Government ITI, Taliganj.
2: Receives the award from the Honorable
1: Rajesh
2: Bhai,
1: Magan Bhai, Government ITI, Billimora.
0: उद्यमशीलता के क्षेत्र में ये पुरस्कार प्रदान किए जा रहे हैं माननीय राष्ट्रपति
1: हीरालाल शर्मा गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चोमू
2: एंड ही हैज वर्क्ड इन द फील्ड ऑफ रेफ्रिजरेशन एंड हिज स्पेशल
1: अर्चना राकेश यादव गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आदिवासी त्र्यंबकेश्वर नासिक
2: एंड शी वर्क्स ऑन फैशन डिजाइन
1: गुप्ता Government Industrial Training Institute, Ujjain.
2: Dr. Gupta's work is on Divyang's digital skilling.
1: Somin Pandit, Taliganj Government ITI.
2: Somin Pandit specializes in industry-oriented learning and drone technology.
3: Tulika Kalita, Northeast Skill Center, Guwahati, Assam.
2: She has trained 1,400 workplace readiness workers.
1: Sanjay Kumar,
0: कौशल विकास और उद्यमशीलता क्षेत्र में ये पुरस्कार प्रदान किए जा रहे हैं माननीय राष्ट्रपति
1: ज्योति बाला राठौर NSTIW इंदौर
2: She works on skilling and empowerment of her students from
1: Pranab Kumar Chaudhary Central Tool Room and Training Center Bhubaneswar
2: Pranab Kumar Chaudhary also specializes on skilling and entrepreneurship. And what a proud moment it is indeed to receive the award from the Honorable President of India. And the Honorable President of India has been escorted to Turkey and she is accompanied by the Minister for Education, Sri Prahlad Joshi and the Ministers of State for Education, Sri Jayan Chaudhary and Sri Sukanta Majumdar and the Secretaries in the Department of Education, Literacy, School Education and Literacy and Skill Development and Entrepreneurship and the Secretary Department of Higher Education.
0: और अब समय आ गया है जब माननीय राष्ट्रपति ये पुरस्कार प्राप्त करने वाले सभी शिक्षकों को संबोधित करेंगे राष्ट्रपति का संबोधन शिक्षा के क्षेत्र में काम करते वाले लाखों शिक्षकों के लिए प्रेरणादायी संदेश होगा श्रोताओं सभी शिक्षकों ने तालियों के साथ माननीय राष्ट्रपति
2: एंड स्टैंडिंग ओवेशन फॉर द ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू नाउ द ऑनरेबल प्रेसिडेंट विल एड्रेस द गैदरिंग
4: इस समारोह में उपस्थित केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री प्रहलाद जोशी जी राज्य मंत्री श्री जयंत चौधरी जी एवं डॉक्टर सुकांत मजूमदार जी मंचासीन सभी सचिवगण सभी शिक्षकगण देवियों और स्वजन सभी को नमस्कार राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित आज के सभी पुरस्कार विजेताओं को मैं हार्दिक बधाई देती हूँ देश के द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती को शिक्षक दिवस के रूप में मनाकर हमारे देशवासी उनके प्रति एवं समस्त शिक्षक समुदाय के प्रति सम्मान व्यक्त करते हैं जो समाज शिक्षकों का सम्मान करता है वो समाज सही अर्थ में प्रगतिशील होता है शिक्षक के बीच आकर मेरे अंदर विद्यमान विद्यार्थी और शिक्षक दोनों ही जीवंत हो जाता है मुझे अपने शिक्षकों का सादर स्मरण होता है उनके स्नेह और मार्गदर्शन के बल पर ही मैं अपने जीवन यात्रा में आगे आकर आपके सामने खड़ी हूँ साथ ही मुझे अपने विद्यार्थी भी याद आते हैं जिन्हें मैंने ओडिशा के रायरंगपुर में स्थित श्री अरबिंदो इंटीग्रल एजुकेशन सेंटर में पढ़ाया था मैंने अपने विद्यार्थियों से भी बहुत कुछ सीखा है उन विद्यार्थियों के प्यार को मैं अपने जीवन के बहुत बड़ी उपलब्धियां मानती हूँ। मैं भी कभी शिक्षक समुदाय की सदस्य रही हूँ, इससे मुझे विशेष सार्थकता का अनुभव होता है। देवियों और स्वजन, सावित्रीबाई फुले आधुनिक युग में विद्यालय में पढ़ाने वाले भारत की पहली शिक्षिका के रूप में जाने जाती है। बालिकाओं की शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने क्रांतिकारी पहल की थी और 19वीं सदी में बालिका विद्यार्थियों की स्थापना की थी, विद्यालय की स्थापना की थी। आज के दिन क्रांति ज्योति स्वरूपा महान शिक्षिका सावित्री बाई फुले की स्मृति को मैं सादर नमन करती हूँ। 20वीं सदी के आरंभ में पश्चिम बंगाल के बोलपुर जिले में गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की तथा ओडिशा के पुरी जिले में प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी उत्कलमणि पंडित गोपबंधु दास ने वन विद्यालय यानी ओपन एयर स्कूल की स्थापना की थी। उन विद्यालयों की स्थापना के पीछे ये उदात्त विचार था कि प्रकृति की गोद में विद्यार्थियों का सहज विकास होता है। देश को बहुआयामी योगदान देने वाले यथा सर्वजनात्मक शिक्षा के प्रति विशेष रूप से समर्पित उन विभूतियों को मैं सादर नमन करती हूँ। इस सभागार में लद्दाख से लेकर अंडमान निकोबार आइलैंड तक तथा अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात तक पूरे देश में शिक्षकों के श्रेष्ठ प्रतिमान स्थापित करने वाले शिक्षक उपस्थित है। ये प्रसन्नता की बात है कि पुरस्कार विजेता में गांव के स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षकों की संख्या अधिक है। मुझे आशा है कि इस वर्ष के पुरस्कार विजेताओं की अध्यापन एवं प्रशिक्षण पद्धतियां और उपलब्धियां उन शिक्षकों को भी शिक्षण में उत्कृष्टता के लिए प्रेरित करेगी। पुरस्कार विजेताओं के योगदान और उपलब्धियां पर केंद्रित फिल्मों को देखकर मेरा ये विश्वास और भी दृढ़ हुआ है कि निष्ठावान शिक्षक अग्रिम पंक्ति के राष्ट्र निर्माता होते हैं। आज पुरस्कृत सभी शिक्षकों के समान रूप से प्रभावशाली और अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किए, लेकिन समय के सीमा के कारण मैं केवल एक उदाहरण का उल्लेख करना चाहूंगी। हम सब ने देखा कि राजस्थान के झालावाड़ जिले के एक गांव के स्कूलों में अपने शिक्षक के मार्गदर्शन में बच्चे अत्यंत आधुनिक माध्यमों के सहायता से जीव विज्ञान का अध्ययन करते हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि सोच के बल पर छोटे से छोटे स्थान पर प्रबुद्ध शिक्षक और जिज्ञासु विद्यार्थी उच्च स्तरीय पाठन पठन का आधुनिक उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं। मुझे ये जानकर प्रसन्नता होती है कि ये सभागार में उपस्थित शिक्षकों ने ऐसे प्रेरक प्रयासों से शिक्षण कार्यों को नए आयाम दिए हैं। शिक्षा मंत्रालय द्वारा स्कूलों, उच्च शिक्षण संस्थानों एवं पॉलिटेक्निक्स में अध्यापन करने वाले श्रेष्ठ शिक्षकों तथा कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय द्वारा चुने गए सुयोग्य प्रशिक्षकों के योगदान को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दी गई है। देश के विकास में एकेडमिक एक्सेलेंस, स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप का बहुत अधिक महत्व है। भारत को नॉलेज सुपर पावर बनाने के साथ साथ स्किल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड के रूप में स्थापित करना हमारी राष्ट्रीय प्राथमिकता में से शामिल है। यहाँ उच्च शिक्षा के क्षेत्र में पुरस्कृत आचार्यगण उपस्थित है। उनके लिए तथा पूरे देश के आचार्यों के लिए उच्च शिक्षा में भारत का गौरवशाली इतिहास लक्ष्य भी प्रस्तुत करना है और कसौटी भी। हुएंगसान ने लिखा है कि नालंदा विक्रमशिला में पढ़ाने वाले आचार्यों का यश दूर दूर के देशों तक फैल चुका था। उनका चरित्र पूर्णतः निर्मल और अनिंदनीय था। आचार्यगण जानते थे कि
5: कि समुद्रों और पर्वतों के

0: पार करके अनेक कष्ट सहन करके विदेशों के छात्र अनेक उनके पास आते थे और ज्ञान पिपासा लेकर वो अपने आप को संतुष्ट लाभ करते थे। भारत के विश्व विख्यात आचार्यों की परंपरा को नोबेल पुरस्कार विजेता आचार्य सी वी रमन जैसे शिक्षकों ने आधुनिक युग में आगे बढ़ाया है। वे अपने विद्यार्थियों के साथ खूब घुल मिलकर मॉडर्न फिजिक्स के विभिन्न विषयों पर चर्चा करते थे। जो विद्यार्थी उनसे कोई अच्छा प्रश्न करते थे तो वे पुस्तकों से हटकर अपने विलक्षण अध्यापन से ऐसे जिज्ञासा जागृत करते थे कि उनके विद्यार्थी उन प्रश्नों के माध्यम से विश्व के महान वैज्ञानिकों के मूल ग्रंथों में अवगहन करने जानते थे। देवी और स्वजन, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था कि बच्चों की देखभाल करना पौधों को जोर से सींचने जैसे बराबर है। स्कूल एजुकेशन शिक्षा व्यवस्था का आधार है। ज्ञान और कौशल तो कभी भी प्राप्त किया जा सकता है, परंतु बचपन में ही सदाचार की शिक्षा देना अधिक प्रभावी सिद्ध होता है। आरंभिक कक्षा में बच्चों के बौद्धिक, शारीरिक और नैतिक विकास पर निष्ठापूर्वक ध्यान देकर हमारे शिक्षक अच्छे विद्यार्थियों और कर्तव्यनिष्ठा नागरिकों की भावी पीढ़ियां तैयार करते हैं। विद्यार्थियों ही शिक्षकों की पहचान होते हैं। विद्यार्थी अपने शिक्षकों द्वारा पढ़ाया गया पाठ्यक्रम भले ही भूल जाए, लेकिन उनके व्यवहार को ये सदैव याद रखते हैं। अनेक विद्यार्थी आर्थिक दृष्टि से कमजोर परिसरों से आते हैं। कुछ अनेक परिवार में पहली पीढ़ी के विद्यार्थी होते हैं। कुछ विद्यार्थी गांव के किसी सामान्य स्कूल से शहर के बड़े स्कूल में आते हैं और थोड़ा असहज हो जाते हैं। कुछ विद्यार्थी स्वभाव से ही संकुची होते हैं। कुछ विद्यार्थी में बहुत प्रतिभा होती है, लेकिन उनमें आत्मविश्वास की कमी होती है तथा कुछ विद्यार्थियों को चिल्ड्रेन विद स्पेशल नीड्स की श्रेणी में रखा जाता है। ऐसे सभी विद्यार्थी जो किसी कारण से कोई भी कमी महसूस करते हैं, उनमें आत्मविश्वास जगाना और उन्हें आगे बढ़ाना शिक्षकों का विशेष दायित्व होना चाहिए। संस्कृत भाषा के शब्द उद्धार का अर्थ होता है खींचकर बाहर निकालना या नीचे से ऊपर ले जाना। विद्यार्थियों का उद्धार करने का पुनीत अवसर केवल शिक्षकों को ही उपलब्ध होता है। हमारे संविधान में निहित अवसर की समानता के आदर्श को कार्य रूप देने का सबसे प्रभावी माध्यम शिक्षा है। हमारे देश में प्राइमरी स्कूल ड्रॉप आउट रेट 12 वर्ष पहले लगभग 4.5% था। अब ये ड्रॉप आउट रेट नहीं के बराबर है। ये उपलब्धि शिक्षकों के प्रयासों से संभव हो सकी है। इस राष्ट्रीय सफलता के लिए मैं सभी शिक्षकों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। हम सब देशवासी विकसित भारत के निर्माण के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं। विश्व स्तरीय शिक्षा व्यवस्था के बल पर ही विकसित भारत का निर्माण संभव है। हमारे शिक्षक शिक्षा व्यवस्था में प्राणवायु का संचार करते हैं। हमारा ये प्रयास होना चाहिए कि हमारे देश में एक भी विद्यार्थी अच्छी शिक्षा के अवसर से वंचित ना हो। मैं चाहूंगी कि हमारे शिक्षक अपने स्नेह और समर्पण से सभी विद्यार्थियों में ज्ञान, प्रेरणा, नैतिकता और संवेदनशीलता का संचार करें। इन्हीं कामनाओं के साथ मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। जय हिंद, जय भारत।
1: अपने संबोधन में शिक्षा और शिक्षक की भूमिका के महत्व को रेखांकित किया माननीय राष्ट्रपति श्री।
2: राष्ट्रपति महोदय, आपकी अनुमति हो तो कार्यक्रम का समापन किया जाए।
1: और अब राष्ट्रगान
3: से निवेदन है, राष्ट्रगीत तथा राष्ट्रगान को सम्मान देने के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएं।

0: Now escorting the Honorable Rashtrapati ji towards from the plenary hall of the Vigyan Bhavan, and as the Honorable Rashtrapati ji in her address said, that the society which respects teachers is indeed a progressive one, and she congratulated all the winners of the awards. She said that teachers from Ladakh to the Andaman and Nicobar Islands and from Arunachal Pradesh to Gujarat are all playing a pivotal role in furthering education and nurturing our students. She hailed the efforts of the Department of School Education, Higher Education and Skills and Entrepreneurship. She expressed the confidence that India will emerge as a knowledge economy and also the skill capital of the world. She mentioned about the reputation of the teachers of India's ancient Nalanda University, which spread far and wide and attracted students from all over the world. And she said that in the last 12 years, the primary school dropout rate has come down to almost nil.
1: आज के इस समारोह में हमें एक महत्वपूर्ण संदेश मिलता है, राष्ट्र निर्माण केवल बड़ी परियोजनाओं से नहीं होता, राष्ट्र निर्माण कक्षा में होता है। श्रोताओं, अब समारोह अपने समापन की ओर बढ़ रहा है। आज का ये आयोजन हमें एक बार फिर याद दिलाता है कि शिक्षक केवल भविष्य देश के नागरिक नहीं बनाते, वे भविष्य भारत का निर्माण भी करते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा सम्मानित किए गए सभी शिक्षक हमारे लिए प्रेरणा है, उनके विद्यालयों को बधाई, उनके विद्यार्थियों को बधाई, उनके परिवारों को बधाई और भारत के प्रत्येक शिक्षक को हमारा सादर नमन। इसी भावना के साथ विज्ञान भवन नई दिल्ली से राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 का ये विशेष प्रसारण संपन्न होता है। इस प्रसारण को आप तक पहुंचाने में तकनीकी सहयोग दिया अशोक कुमार मिश्रा और बाबूलाल मीणा ने, हमारे ओबी इंचार्ज थे वीके तोमर और प्रस्तुतकर्ता प्रमोद कुमार। मैं शहसियार खान अपने साथी कमेंटेटर कौशिक राय के साथ आपको आकाशवाणी के स्टूडियो वापस लिए चलता हूं। नमस्कार।
2: अभी आप नई दिल्ली के विज्ञान भवन से भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की गरिमामय उपस्थिति में शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित किए राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार समारोह का सजीव विवरण सुन रहे थे। विवरण दे रहे थे शोएसियार खान हिंदी में और कौशिक रॉय अंग्रेजी में।
3: You were listening to a live broadcast of the presentation ceremony of the National Award to Teachers organized by the Ministry of Education, Government of India, in the gracious presence of Honorable President of India, Srimati Draupadi Murmu, at Vigyan Bhavan, New Delhi. Our commentators were Shoaisyar Khan in Hindi and Kaushik Roy in English.
4: विदेश मंत्री डॉक्टर एस

0: संघर्षों और बढ़ते आर्थिक दबावों का सामना कर रही है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य में व्यवधान के कारण खाद्य और ईंधन की बढ़ती कीमतें भी चिंता का विषय बनी हुई हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि नेपाल के बाढ़ प्रभावित त्रिशूली बाजार क्षेत्र से 5 वर्षीय बच्चे सहित 3 और भारतीय नागरिकों को बचाया गया है। इससे शरणार्थियों की कुल संख्या 169 हो गई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कल नई दिल्ली में संवाददाताओं को भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 275 भारतीय नागरिक अभी भी लापता हैं। श्री जायसवाल ने कहा कि 1907 भारतीय चीन से सुरक्षित नेपाल पहुंच चुके हैं। उन्होंने कहा कि काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास भारतीय शरणार्थियों को हवाई मार्ग से वापस लाने में मदद कर रहा है। इस बीच नेपाल में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1344 हो गई है। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पूर्वोत्तर राज्यों बिहार, मध्य प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तराखंड, सिक्किम, बंगाल और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी अगले 2 दिन तक तेज बारिश की आशंका है। एशिया कप महिला T20 क्रिकेट के ग्रुप ए के अंतिम मुकाबले में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। ये मैच दुबई में रात 8 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। President Draupadi Murmu today said that a Viksit Bharat will only be possible with quality education. Addressing the National Teachers Award 2026 in New Delhi, the President said that a society that respects their teachers is a progressive society in right terms.
2: द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती को शिक्षक दिवस के रूप में मनाकर हमारे देशवासी उनके प्रति एवं समस्त शिक्षक समुदाय के प्रति सम्मान व्यक्त करते हैं। जो समाज शिक्षकों का सम्मान करता है वो समाज सही अर्थ में प्रगतिशील होता है। शिक्षक के बीच आकर मेरे अंदर विद्यमान विद्यार्थी और शिक्षक दोनों ही जीवंत हो जाता है।
1: President Draupadi Murmu today presented the National Teachers Awards in New Delhi. 48 selected school teachers from 27 states, 7 union territories and 6 organizations of the central government received the awards. The President also presented national awards to teachers for 21 teachers and faculties of higher education institutions and polytechnics. Prime Minister Narendra Modi has called upon teachers to go beyond textbooks and play a greater role in preserving childhood while shaping the lives of students. He made these remarks while interacting with National Teachers Day Award winners in New Delhi yesterday. While sharing the glimpses of the interaction with teachers in a social media post, the Prime Minister stressed that bringing about real change in children requires teachers to become a part of their lives rather than limiting themselves to the syllabus.
3: मैं पूरे शिक्षा जगत से ये कहना चाहता हूँ कि हमें पहले से ज्यादा किताबों से बाहर निकल करके, सिलेबस से बाहर निकल करके बच्चों की जिंदगी में घुसना पड़ेगा। बचपन मरने नहीं देना चाहिए और बचपन बनाए रखने का सबसे बड़ा काम टीचर कर सकते। टीचर का काम है कि उसके भीतर का बचपन बना रहे।
1: Highlighting key health and social issues, Mr. Modi expressed concern over excessive screen time among children and suggested encouraging sports, outdoor activities and creative pursuits as effective ways to reduce screen addiction.
3: एक विषय है स्क्रीन टाइम। अब ये एक प्रकार का एडिक्शन है। मेरे मन में एक विचार आता है, या तो वो बच्चा खेल कूद के अंदर बहुत रुचि लेने लग जाएगा। खेल कूद मतलब वो वीडियो गेम नहीं, अरे एक्चुअली मैदान में वो खेलना, तो धीरे धीरे वो उसमें से बाहर आ सकता। और ऐसे में क्रिएटिविटी की तरफ हम बच्चों को जितना ज्यादा जोड़ेंगे, और हमने ऐसे कुछ न कुछ कार्यक्रमों को आदत बनानी चाहिए।
1: Prime Minister Narendra Modi will participate in the centenary celebrations of Sri Ram College of Commerce in New Delhi today. Mr. Modi will also address the gathering on the occasion. Sri Ram College of Commerce, part of the University of Delhi, is one of India's premier institutions of higher education. It is a distinguished center of learning in commerce, economics and management. The External Affairs Ministry has said 3 more Indian nationals, including a 5-year-old child, have been rescued from the flood-hit Trishuli Bazar area of Nepal, bringing the total count of Indian evacuees to 169. Sharing broader updates on the safety of Indian nationals while briefing media in New Delhi yesterday, MEA spokesperson Rundeep Jaiswal said 275 Indian nationals remain missing. He noted that 1,907 Indians have safely crossed over to Nepal from China. Mr. Jaiswal said that the Indian Embassy in Kathmandu is facilitating the return of Indian evacuees on flights back home. Meanwhile, the death toll from the floods in the Himalayan nation rose to 1,344 after rescue workers recovered more bodies from affected areas. The rising water levels of major rivers in Bihar, including Ganga, Gandak and Kosi, continue unabated. Flooding has affected 16 districts, while the situation remains serious in 14 districts, including Patna. According to the Water Resources Department, the Ganga River in Patna is flowing nearly 2 meters above the danger mark. In women's cricket, India will take on arch-rivals Pakistan in the final Group A clash of T20 Asia Cup at Dubai International Stadium at 8 p.m. Indian Standard Time tonight. In badminton, Indian men's doubles pair Satvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty will take on Malaysian duo of Noor Mohammad Azreen Ayub and Tan Wee Kyong in the semi-final of the China Masters in Shenzhen today. And that is the end of this news bulletin.
4: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षक दिवस के अवसर पर देशभर के शिक्षकों का किया नमन। नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान समारोह में धनबाद के शिक्षिका मुनमुन भट्टाचार्य को मिला सम्मान। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने लोकभवन में डॉ सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती पर दी श्रद्धांजलि। राज्य के सभी शिक्षकों को शिक्षक दिवस की दी बधाई। SIR प्रक्रिया के तहत मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने की अंतिम तिथि 15 सितंबर, अंतिम मतदाता सूची इस वर्ष 19 अक्टूबर को की जाएगी प्रकाशित। रांची रेल मंडल अंतर्गत कित्तासिल्ली रेलखंड पर विकास कार्य को लेकर लिया गया ब्लॉक, कई ट्रेनें प्रभावित। और भारत की जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने AHF जूनियर एशिया कप 2026 में की शानदार शुरुआत। इस जीत के साथ भारत 3 अंकों के साथ पुल ए में पहुंचा शीर्ष पर। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज शिक्षक दिवस के अवसर पर नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान समारोह में देश भर के शिक्षकों को सम्मानित किया। इस मौके पर राष्ट्रपति ने कहा कि शिक्षकों के मार्गदर्शन में बच्चे अत्यंत आधुनिक माध्यमों से पठन पाठन की उच्च स्तरीय शिखर तक पहुँच गए हैं।
5: अपने शिक्षक के मार्गदर्शन में बच्चे अत्यंत आधुनिक माध्यमों की सहायता से जीव विज्ञान का अध्ययन करते हैं। इससे ये स्पष्ट होता है कि सोच के बल पर छोटे से छोटे स्थान पर प्रबुद्ध शिक्षक और जिज्ञासु विद्यार्थी उच्च स्तरीय पाठन पठन का आधुनिक उदाहरण प्रस्तुत कर सकते।
4: सम्मान समारोह में धनबाद की MS बरमसिया मध्य विद्यालय की शिक्षिका मुनमुन भट्टाचार्य को भी राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। शिक्षिका मुनमुन भट्टाचार्य ने इस उपलब्धि पर प्रसन्नता जाहिर की।
6: ये खुशी ये मैं शब्दों में इसे बयान नहीं कर पा रही हूँ और ये उन सभी गुणीजनों और गुरुजनों को समर्पित है जो निष्ठापूर्वक बिना किसी मोह माया के, बिना किसी चाहत के वो लोग दिन रात बच्चों के भविष्य को संवारने में वो अपना योगदान दे रहे हैं। और बहुत से ऐसे शिक्षकों को मैं जानती हूँ जिनके बताए हुए कदमों पे मैं चल रही हूँ और मुझे आज ये गौरव का पल मुझे मिला, तो मैं उन सभी गुणीजनों को ये समर्पित करती हूँ।
4: राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने लोकभवन में पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न डॉ सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती पर उनके चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि शिक्षा और दर्शन के क्षेत्र में श्री राधाकृष्णन का योगदान सदैव स्मरणीय होगा। साथ ही इस अवसर पर उन्होंने राष्ट्र निर्माण में योगदान देने वाले राज्य के सभी शिक्षकों को शिक्षक दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। रांची के सीएम स्कूल ऑफ एक्सलेंस गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल में आज शिक्षक दिवस के अवसर पर शिक्षकों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। स्कूल के सभागार में आयोजित कार्यक्रम में रांची जिला के 100 से अधिक शिक्षकों को सम्मानित किया गया। इस मौके पर रांची के जिला शिक्षा पदाधिकारी और डीएसई ने शिक्षकों को सम्मानित किया। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के अनुसार एसआईआर प्रक्रिया के तहत अब तक कुल 3,19,457 फॉर्म 6,66 फॉर्म 6,2214 फॉर्म 7 और 2,06,499 फॉर्म 8 प्राप्त हुए हैं। दावा एवं आपत्ति जमा करने की अंतिम तिथि 15 सितंबर है और अंतिम मतदाता सूची 19 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी निफ्ट नई दिल्ली के छात्र सरायकेला के छऊ नृत्य के मुखौटे को बाजार उपलब्ध कराने को लेकर छात्रों का एक समूह इन दिनों सरायकेला के दौरे पर है। दौरे पर आए छात्र कार्तिक ने कहा कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री के सामने इनके प्रमोशन और व्यावसायिक उपयोग की संभावनाओं को रखा जाएगा।
7: मैं दिल्ली से ही आया हूँ सरायकेला छऊ का मास्क सीखने। पिछले साल भी हम आए थे यहाँ 10 दिन के लिए, तो अब हमने रिसर्च करा था पूरा मास्क का, हमने डॉक्यूमेंट्री बनाया था सरायकेला छऊ का। अब हम वापस आए हैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए, सरायकेला मास्क को एक ग्राउंड मिले, कमर्शलाइजेशन हो मास्क का और लोग प्रोडक्ट खरीदे। श्री सुशांता महापात्रा उनके बेटे वो हमें सिखा रहे हैं।
4: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने यूजीसी नेट जून 2026 के अंग्रेजी, कॉमर्स और समाजशास्त्र के दोबारा होने वाले पेपर के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। परीक्षार्थी अपने प्रवेश पत्र यूजीसी नेट की वेबसाइट पर लॉगिन कर डाउनलोड कर सकते हैं। अंग्रेजी की परीक्षा 9 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगी। कॉमर्स की परीक्षा उसी दिन दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक होगी। समाजशास्त्र की परीक्षा 10 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगी। इन तीनों विषयों की परीक्षा पेपर में कुछ गलतियों की शिकायतों के बाद दोबारा आयोजित की जा रही है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। रांची रेल मंडल अंतर्गत कित्तासिल्ली रेलखंड पर विकास कार्य को लेकर ब्लॉक लिया जाएगा। इस कारण कई ट्रेनें प्रभावित रहेंगी। बर्धमान हटिया बर्धमान मेमू एक्सप्रेस 5 सितंबर को गोमो स्टेशन तक ही आएगी और वहीं से रवाना होगी। वहीं खड़गपुर हटिया खड़गपुर एक्सप्रेस 5 सितंबर को आद्रा स्टेशन तक ही आएगी। आसनसोल रांची आसनसोल मेमू पैसेंजर 5 सितंबर को मूरी स्टेशन तक ही आएगी और वहीं से रवाना होगी। वहीं हटिया सांकी हटिया पैसेंजर 5 सितंबर को रद्द रहेगी। रांची विश्वविद्यालय में 9 सितंबर को आयोजित होने वाले 39वें दीक्षांत समारोह की तैयारियां तेज हो गई हैं। आज विद्यार्थियों को गेट पास और ड्रेस मिलना शुरू हो जाएगा। इसके मद्देनजर पीजी भौतिकी विभाग और केंद्रीय पुस्तकालय में 10 काउंटर बनाए गए हैं। सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक गेट पास दिया जाएगा। राजधानी रांची के सर्राफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,44,400 रुपये प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,45,000 रुपये प्रति किलो है। गढ़वा में डेंगू के कुछ नए मामले सामने आने के बाद वहां सतर्कता बढ़ा दी गई है। जिले के सिविल सर्जन ने कहा है कि डेंगू से बचाव के लिए सतर्कता जरूरी है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे अपने घरों के आसपास जल जमाव न होने दें और पर्याप्त सावधानी बरतें।
8: जहाँ पानी जमेगा वहाँ पर मच्छर होगा। ड्राई डे मनाए अपने घर में सप्ताह में एक बार, हर सप्ताह उस पानी को फेंक दें, चाहे टायर में हो, गमला में हो, जिधर भी हो, कि वहाँ पर मच्छर नहीं पड़े। इसके अलावा अगर वैसा कुछ होता है तो हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं कि आपके इस बीमारी को हम लोग कंट्रोल में कर सकते हैं, लेकिन समय रहते इलाज कराने की आवश्यकता है।
4: और अब मौसम का हाल। मौसम विभाग के अनुसार झारखंड में फिलहाल तेज बारिश की संभावना नहीं है। अगले 3 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। हालांकि 8 सितंबर को बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का क्षेत्र बनने के कारण 9 और 10 सितंबर को रांची समेत राज्य के कई जिलों में मौसम का मिजाज बदल सकता है। इस दौरान वज्रपात और तेज हवा के साथ बारिश होने की संभावना है। साहिबगंज में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से दियारा समेत निचले इलाकों में जलजमाव की स्थिति से जनजीवन प्रभावित हुआ है। इन इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए जिला प्रशासन ने एडवाइजरी जारी की है। अंचल पदाधिकारी बासुकीनाथ टूडू ने बताया कि जिला प्रशासन की ओर से लोगों के लिए राहत की व्यवस्था की गई है।
9: राहत सामग्री में चूड़ा था, गुड़ था और बिस्कुट था, पानी था, हम लोगों ने सब वितरण किया और वहाँ के लोगों को बताया कि क्योंकि जलस्तर बढ़ रहा है, आप लोग सुरक्षित स्थान पर आ जाएं। प्रशासन की ओर से तो बड़ा बड़ा नाव का व्यवस्था किया गया और जिनका मवेशी उन लोगों को भी कहा कि इनके पास कितना बड़ा जानवर छोटा जानवर है उसका चारा को हम लोगों ने व्यवस्था किया है।
4: भारत की जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने AHF जूनियर एशिया कप 2026 में शानदार शुरुआत करते हुए इंडोनेशिया को 14-0 से करारी शिकस्त दी। भारत की ओर से प्रभदीप सिंह ने 5, कप्तान अनमोल एक्का ने 4 और अजीत यादव ने 3 गोल किए, जबकि हरपाल और आशु मौर्य ने 1-1 गोल दागा। इस जीत के साथ भारत 3 अंकों के साथ पुल ए में गोल अंतर के आधार पर शीर्ष पर पहुंच गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षक दिवस के अवसर पर देशभर के शिक्षकों को किया नमन। नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान समारोह में धनबाद की शिक्षिका मुनमुन भट्टाचार्य को मिला सम्मान। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने लोकभवन में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती पर दी श्रद्धांजलि। राज्य के सभी शिक्षकों को शिक्षक दिवस की दी बधाई। SIR प्रक्रिया के तहत मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने की अंतिम तिथि 15 सितंबर, अंतिम मतदाता सूची इस वर्ष 19 अक्टूबर को की जाएगी प्रकाशित। रांची रेल मंडल अंतर्गत कित्तासिल्ली रेलखंड पर विकास कार्य को लेकर लिया गया ब्लॉक, कई ट्रेनें प्रभावित।

0: भारत की जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने AHF जूनियर एशिया कप 2026 में की शानदार शुरुआत। इस जीत के साथ भारत 3 अंकों के साथ पूल ए में पहुंचा शीर्ष पर। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। आइए अब सुनते हैं उप शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अनुरंजनी। कलाकार हैं अनिता सेन।

रंजनी कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे कलाकार अनिता सेन को। अब ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है।

मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज और FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम सुगम संगीत। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आपको सुनवा रहे हैं चंद गजलें। कलाकार हैं हरिहरन।

सुगम संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे चंद गजलें। फनकार थे हरिहरन, शायर थे अख्तर वजदी, फरहाद शहजाद, मुमताज रशीद और जानिसार अख्तर। और आज का ये सुगम संगीत कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है।

हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 2 बजने को हैं। हमारा अगला प्रसारण हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा, जहां आप पहले सुनेंगे मिड डे न्यूज, उसके बाद दोपहर समाचार। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: Mumbai and some neighboring areas, Dahi Handi is a traditional celebration associated with the birth of Lord Krishna. The festival witnesses Govindas forming multi-tiered human pyramids to break earthen pots. In view of possible injuries, the BMC has directed its hospitals to remain fully prepared and provide free treatment to injured Govindas. Meanwhile, the Maharashtra government has announced insurance cover for 1,60,000 Govindas. Benefits ranging from 1 lakh to 10 lakh will be provided in case of hospitalization, permanent total or partial disability. Prarthana, Akashvani News, Mumbai.
1: External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar is set to address the annual high-level session of the United Nations General Assembly on 26th of this month. He will deliver India's national statement during the afternoon session of the general debate, which will be held from 22nd to 28th of this month. The Ministry of Coal has dismissed the reports claiming that the 37,500 crore rupees scheme for promotion of surface coal and lignite gasification projects has received no applications, calling such reports premature and factually incorrect. On to sports. In women's cricket, India will take on arch rivals Pakistan in the final Group A clash of T20 Asia Cup at Dubai International Stadium tonight. The match will begin at 8 p.m. Indian Standard Time. India have already secured a place in the semi-finals after recording convincing victories over Thailand and Hong Kong in their previous two matches. The Indian team will now look to maintain its winning run and finish the group stage with a perfect record. Pakistan, meanwhile, have played just one match. They began their campaign with a win over Thailand. The team currently has 2 points in Group A and needs just one more point from its remaining two matches to qualify for the semi-finals. In badminton, Indian men's doubles pair Satvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty will take on the Malaysian duo of Noor Mohammad Azreen Ayub and Tanvi Kyong in the semi-final of the China Masters in Shenzhen today. The Indian pair defeated Denmark's Kemar Stroop and Anas Karup Rasmussen 21-13, 16-21, 21-18 in the quarter-final yesterday. Housing and Urban Affairs Minister Manohar Lal today held an inter-ministerial virtual meeting with Jal Shakti Minister C.R. Patil and other senior officials to review preparations for Swachhata Hi Seva 2026. In a social media post, Mr. Lal said that as the campaign enters its 9th edition, the nation is renewing its commitment to a cleaner and healthier India. He urged citizens to come forward, participate wholeheartedly in the campaign and make Swachhata Hi Seva a true Jan Andolan. The Swachhata Hi Seva 2026 campaign will be observed from 17th of this month to the 2nd of October. The India Meteorological Department has issued orange colour warning for heavy to very heavy rainfall in East Rajasthan and West Madhya Pradesh for today. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. President Draupadi Murmu says Viksit Bharat will only be possible with quality education, confers national awards on 48 school teachers. Prime Minister Narendra Modi urges teachers to go beyond textbooks while shaping lives of students, also calls for less screen time, more sports activities for children. Prime Minister to address centenary celebrations of Sri Ram College of Commerce in New Delhi this evening. Bihar flood situation remains critical in 14 districts, relief and rescue operations underway. India delivers 95 tons of relief material to flood-hit Nepal to send more supplies and Bailey bridges. In badminton, Indian men's doubles pair of Satvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty to face Malaysian duo in Chinese Masters semi-final in Shenzhen this evening. And in women's cricket, India to take on arch-rivals Pakistan in final Group A clash of T20 Asia Cup in Dubai tonight. And with that, we end the midday news.
2: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा विकसित भारत का सपना शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार से ही साकार होगा। उन्होंने 48 स्कूली शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षकों से पाठ्य पुस्तकों से आगे बढ़कर विद्यार्थियों के जीवन को बेहतर बनाने की अपील की। उन्होंने बच्चों का स्क्रीन समय कम करने, खेलकूद और बाहरी गतिविधियों को बढ़ावा देने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री आज शाम नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह को संबोधित करेंगे। बिहार के 14 जिलों में बाढ़ की स्थिति गंभीर, राहत और बचाव अभियान जारी। भारत ने बाढ़ प्रभावित नेपाल को 95 टन राहत सामग्री भेजी और अधिक राहत सामग्री के साथ बेली ब्रिज भेजे जाएंगे। चाइना मास्टर्स बैडमिंटन के सेमीफाइनल में आज शाम सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय जोड़ी का मुकाबला मलेशियाई जोड़ी से होगा और T20 महिला क्रिकेट एशिया कप के ग्रुप ए के अंतिम मुकाबले में आज रात भारत और पाकिस्तान होंगे आमने सामने। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के जरिए ही विकसित भारत का लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। शिक्षक दिवस के अवसर पर आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 समारोह में राष्ट्रपति ने कहा कि जो समाज अपने शिक्षकों का सम्मान करता है वो सही मायनों में प्रगतिशील समाज होता है।
3: हम सब देशवासी विकसित भारत के निर्माण के लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ रहे हैं। विश्व स्तरीय शिक्षा व्यवस्था के बल पर ही विकसित भारत का निर्माण संभव है। हमारे शिक्षक शिक्षा व्यवस्था में प्राणवायु का संचार करते हैं। हमारा ये प्रयास होना चाहिए कि हमारे देश में एक भी विद्यार्थी अच्छी शिक्षा के अवसर से वंचित ना हो।
2: राष्ट्रपति ने कहा कि शिक्षक अग्रिम पंक्ति के राष्ट्र निर्माता हैं।
3: द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती को शिक्षक दिवस के रूप में मनाकर हमारे देशवासी उनके प्रति एवं समस्त शिक्षक समुदाय के प्रति सम्मान व्यक्त करते हैं। जो समाज शिक्षकों का सम्मान करता है वो समाज सही अर्थ में प्रगतिशील होता है। शिक्षक के बीच आकर मेरे अंदर विद्यमान विद्यार्थी और शिक्षक दोनों ही जीवंत हो जाता है।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान किए 27 राज्यों, 7 केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र सरकार के 6 संगठनों से चुने गए 48 स्कूल शिक्षकों को ये पुरस्कार दिए गए। उन्होंने उच्च शिक्षण संस्थानों और पॉलिटेक्निक के 21 शिक्षकों और संकाय सदस्यों को भी राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान किए। इनमें केंद्रीय उच्च शिक्षण संस्थानों के 12, राज्य विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के 5 तथा पॉलिटेक्निक के 4 शिक्षक और संकाय सदस्य शामिल हैं। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में देशभर के शिक्षकों को उनकी निस्वार्थ सेवा और भारत के भविष्य को आकार देने में उनके योगदान के लिए नमन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षकों से पाठ्य पुस्तकों से आगे बढ़कर विद्यार्थियों के जीवन को बेहतर बनाने और उनके बचपन को सुरक्षित रखने में बड़ी भूमिका निभाने का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित शिक्षकों के साथ बातचीत की। सोशल मीडिया पोस्ट में मुलाकात की झलकियां साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि शिक्षकों को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि हर विद्यार्थी के भीतर का बचपन जीवंत रहे। इसके लिए शिक्षकों को अपने भीतर के बच्चे को भी जीवित रखना होगा। श्री मोदी ने बच्चों में अत्यधिक स्क्रीन समय की आदत पर चिंता जताई।
4: एक विषय है स्क्रीन टाइम, अब ये एक प्रकार का एडिक्शन है। मेरे मन में एक विचार आता है, या तो वो बच्चा खेल कूद के अंदर बहुत रुचि लेने लग जाएगा। खेल कूद मतलब वो वीडियो गेम नहीं, मैंने एक्चुअली मैदान में वो खेलना, तो धीरे धीरे वो उसमें से बाहर आ सकता। और ऐसे में क्रिएटिविटी की तरफ हम बच्चों को जितना ज्यादा जोड़ेंगे, और हमने ऐसे कुछ न कुछ कार्यक्रमों को आदत बनानी चाहिए।
2: प्रधानमंत्री ने नशीली दवाओं के बढ़ते खतरे पर भी चिंता व्यक्त की।
4: ड्रग्स का मामला बड़े शहरों में या यूनिवर्सिटी में रहा सा नहीं, पता ही नहीं किसी को क्या है, कोई आकर के दे देता है। क्या उस संबंध में लगातार आज के जो आप टीचर्स हैं, क्या अवेयरनेस उसके कारण क्या भय है? प्रकार से मैं पूरे शिक्षा जगत से ये कहना चाहता हूँ कि हमें बहुत पहले से ज्यादा किताबों से बाहर निकल करके बच्चों की जिंदगी में घुसना पड़ेगा। बचपन मरने नहीं देना चाहिए, और बचपन बनाए रखने का सबसे बड़ा काम टीचर कर सकते।
2: प्रधानमंत्री ने स्तन कैंसर के प्रति जागरूकता का भी उल्लेख किया।
4: मैं काशी का सांसद हूँ, तो मैंने वहाँ एक अभियान लिया ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस का, और मुझे खुशी है कि इन दिनों महिलाएं सामने से आकर के अपने विषय में चेकअप करा, पहले ऐसी स्थिति नहीं थी। दूसरा एक अच्छा अनुभव आया, अभी तो एक दिन में मैक्सिमम लोगों का चेकिंग करने का ग्रीनिज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड उन्होंने रजिस्टर किया।
2: प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उल्लेख करते हुए बच्चों को कक्षा से बाहर ले जाने और उन्हें वास्तविक जीवन के कौशल तथा विभिन्न कार्यों से जोड़ने के महत्व पर जोर दिया। गृह मंत्री अमित शाह, शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शिक्षक दिवस के अवसर पर देशवासियों और शिक्षकों को शुभकामनाएं दी हैं। गृह मंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि शिक्षक पीढ़ियों से विद्यार्थियों को ज्ञान की राह दिखा रहे हैं और देश की निरंतर प्रगति में योगदान दे रहे हैं। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट पर एक वीडियो संदेश में कहा कि शिक्षक ज्ञान, कौशल और आत्मविश्वास के साथ छात्रों के भविष्य को सशक्त बनाते हैं।
5: इन शिक्षकों ने अपने अपने क्षेत्र में अलग अलग तरीकों से महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। किसी ने शिक्षण में नया प्रयोग किया है, किसी ने तकनीक का प्रभावी उपयोग किया है, किसी ने वंचित और कठिन परिस्थितियों में रह रहे बच्चों के लिए काम किया, तो किसी ने विज्ञान, खेल, कला और कौशल के माध्यम से विद्यार्थियों की प्रतिभा को आगे बढ़ाने का काम किया है।
2: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
6: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए, एक्स पर @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो करें और पीबी शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
2: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। इस अवसर पर वे समारोह को संबोधित भी करेंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय का श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स देश के प्रमुख उच्च शिक्षण संस्थानों में से एक है। यहाँ वाणिज्य, अर्थशास्त्र और प्रबंधन की पढ़ाई होती है। कॉलेज की स्थापना 1926 में उद्योगपति और समाजसेवी सर श्रीराम ने की थी। नई दिल्ली के भारत मंडपम में 11 से 13 सितंबर तक ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इस कड़ी में ब्रिक्स देशों के मुख्य न्यायाधीशों का 3 दिन का मंच कल शुरू हो गया। शिखर सम्मेलन के लिए व्यापक स्तर पर तैयारियां और सुरक्षा प्रबंध किए जा रहे हैं। आज मोटर कारकेट का पूर्वाभ्यास किया जा रहा है। दिल्ली यातायात पुलिस के अनुसार पूर्वाभ्यास शाम 4 बजे तक चलेगा। इस दौरान भारत मंडपम और आसपास के क्षेत्रों में 35 से अधिक मार्गों पर यातायात नियंत्रित रहेगा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर इस महीने की 26 तारीख को संयुक्त राष्ट्र महासभा के वार्षिक उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित करेंगे। 22 से 28 सितंबर तक चलने वाले इस सत्र में वे भारत का पक्ष रखेंगे। ये उच्च स्तरीय सत्र ऐसे समय हो रहा है जब दुनिया कई भू राजनीतिक संघर्षों और बढ़ते आर्थिक दबावों का सामना कर रही है। हॉर्मुस जलडमरू मध्य में व्यवधान के कारण खाद्य और ईंधन की बढ़ती कीमतें भी चिंता का विषय बनी हुई हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि नेपाल के बाढ़ प्रभावित त्रिशूली बाजार क्षेत्र से 5 वर्षीय बच्चे सहित 3 और भारतीय नागरिकों को बचा लिया गया है। इससे शरणार्थियों की कुल संख्या 169 हो गई है। एक रिपोर्ट।
7: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कल नई दिल्ली में संवाददाताओं को भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 275 भारतीय नागरिक अभी भी लापता हैं, वहीं 1907 भारतीय चीन से सुरक्षित नेपाल पहुंच चुके हैं। काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास इन शरणार्थियों को हवाई मार्ग से वापस लाने में सहायता कर रहा है। श्री जायसवाल ने कहा कि तिब्बती स्वायत्त क्षेत्र में कोई भी भारतीय यात्री फंसा हुआ नहीं है। प्रवक्ता ने बताया कि 26 अगस्त को विनाशकारी बाढ़ के बाद से भारत ने नेपाल को लगभग 95 टन राहत सामग्री भेजी है। उन्होंने कहा कि भारत नेपाल सरकार की आवश्यकताओं के अनुसार सहायता जारी रखेगा। आने वाले दिनों में भारत नेपाल सरकार के अनुरोध पर अधिक फोरेंसिक किट, बेली ब्रिज और अतिरिक्त सामग्री भेजने की योजना बना रहा है। बेली ब्रिज पूर्व निर्मित और मॉड्यूलर स्टील पुल होता है, जिसे कम समय में और बिना भारी मशीनों के आसानी से जोड़ा या स्थापित किया जा सकता है। इस बीच नेपाल में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1344 हो गई है। खोज और बचाव अभियान जारी है। लगभग 5000 लोग अभी भी लापता हैं। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
2: भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने तेलंगाना में एक महिला मंत्री को हटाए जाने को अन्यायपूर्ण बताया है। नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन में डॉक्टर त्रिवेदी ने इस मुद्दे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की चुप्पी पर सवाल उठाया। झारखंड में प्रश्न पत्र लीक का उल्लेख करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि ये सिर्फ प्रश्न पत्र लीक नहीं बल्कि प्रश्न पत्रों की लूट थी।
8: जो कुछ झारखंड में तथ्य प्रकाश में आया है उसने यह साफ किया है कि यह पेपर लीक नहीं बल्कि पेपर लूट है, और इस लूट की छूट कौन दे रहा है ये कम से कम राहुल गांधी जी को बताना चाहिए। परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि जितने भी राजनीतिक दल दिल्ली में परीक्षा के विषय को लेकर दहाड़ और चिंघाड़ रहे थे, झारखंड के मुद्दे के ऊपर तीन बंदर हो गए।
9: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने यूजीसी नेट जून 2026 के अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र विषय की पुनर्परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। अंग्रेजी की परीक्षा 9 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगी। वाणिज्य की परीक्षा उसी दिन दोपहर 3 से शाम 6 बजे तक होगी। समाजशास्त्र विषय की परीक्षा 10 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगी। इन तीनों विषयों की परीक्षा पेपर में कुछ गलतियों की शिकायतों के बाद दोबारा आयोजित की जा रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। बिहार में बाढ़ की स्थिति में कोई सुधार नहीं है। लगातार नदियों के उफान पर रहने से नए क्षेत्रों में बाढ़ का पानी प्रवेश करने लगा है। एक रिपोर्ट।
10: बिहार में गंगा, गंडक, कोसी समेत प्रमुख नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है। नदियों में उफान से 16 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। पटना समेत 14 जिलों में हालात गंभीर बने हुए हैं। जल संसाधन विभाग के अनुसार पटना में गंगा नदी खतरे के निशान से लगभग 2 मीटर ऊपर बह रही है। विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि इसके गांधी घाट गेज स्थल पर नया उच्च जलस्तर सृजित होने की आशंका है। इसके चलते नदी के प्रवाह क्षेत्र विशेषकर दियारा क्षेत्रों में दबाव बढ़ सकता है। विभाग ने संबंधित जिलों को आपदा के मद्देनजर सभी जरूरी एहतियाती कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
9: इस बीच मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आज राष्ट्रीय राजधानी के अलग अलग हिस्सों में हल्की से तेज बारिश हुई। और अब बात खेलों की। चाइना मास्टर्स बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय जोड़ी आज शेंजन में मेंस डबल्स सेमीफाइनल में मलेशियाई जोड़ी नूर मोहम्मद अजरीन अयूब और टेन वी कियोंग से खेलेगी। भारतीय जोड़ी ने कल क्वार्टर फाइनल में डेनमार्क के किम एस्ट्रुप और एंडर्स स्कारूप रास्मुसेन को हराया था। एशिया कप महिला टी20 क्रिकेट के ग्रुप ए के अंतिम मुकाबले में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। मैच दुबई में रात 8 बजे से खेला जाएगा। महाराष्ट्र में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी से जुड़ा दही हांडी उत्सव आज धूमधाम से मनाया जा रहा है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
0: मुंबई और आसपास के जिलों में भगवान श्री कृष्ण के जन्म से जुड़ा पारंपरिक उत्सव दही हांडी हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस आयोजन में युवा प्रतिभागी मानव पिरामिड बनाकर ऊंचाई पर लटके दही, दूध या मक्खन से भरी मटकी फोड़ते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने 1,60,000 गोविंदाओं के बीमा कवरेज की व्यवस्था भी की है। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
9: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, विकसित भारत का सपना शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार से ही साकार होगा। उन्होंने 48 स्कूली शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षकों से पाठ्य पुस्तकों से आगे बढ़कर विद्यार्थियों के जीवन को बेहतर बनाने की अपील की। प्रधानमंत्री आज शाम नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह को संबोधित करेंगे। बिहार के 14 जिलों में बाढ़ की स्थिति गंभीर, राहत और बचाव अभियान जारी। भारत ने बाढ़ प्रभावित नेपाल को 95 टन राहत सामग्री भेजी और अधिक राहत सामग्री के साथ बिली ब्रिज भेजे जाएंगे। चाइना मास्टर्स बैडमिंटन के सेमीफाइनल में आज शाम सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय जोड़ी का मुकाबला मलेशियाई जोड़ी से होगा। और टी20 महिला क्रिकेट एशिया कप के ग्रुप ए के अंतिम मुकाबले में आज रात भारत और पाकिस्तान होंगे आमने सामने। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
11: मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज और FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। आइए अब सुनते हैं फौजी भाइयों के लिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम जय भारती। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं कर्मा फिल्म के इस गीत के साथ। आवाजें हैं मोहम्मद अजीज, कविता कृष्णमूर्ति और साथियों की। शब्द रचना है आनंद बख्शी की, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: स्वयं ही घट पड़े भारतीय सेना।
1: कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए आपको सुनवाते हैं फिल्म अकेले हम अकेले तुम का ये युगल गीत कुमार सानू और अलका याग्निक के आवाज में। शब्द रचना है मजरूह सुल्तानपुरी की, संगीत है अनु मल्लिक का।

और कार्यक्रम के आखिर में आपको सुनवा रहे हैं फिल्म दिल जले का ये गीत, कुमार सानू और आदित्य नारायण की आवाज में। शब्द हैं जावेद अख्तर के, संगीत अनु मल्लिक का।

0: इस गीत के साथ ही आज का फिल्म संगीत का कार्यक्रम जय भारती यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। आइए अब सुनते हैं प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 प्रदान किए। समारोह में देश के 48 स्कूली शिक्षकों और 21 उच्च शिक्षण संस्थानों के शिक्षकों को सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति ने शिक्षा को विकसित भारत का मूल आधार बताते हुए कहा कि समर्पित शिक्षक ही सच्चे राष्ट्र निर्माता हैं।
2: द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती को शिक्षक दिवस के रूप में मनाकर हमारे देशवासी उनके प्रति एवं समस्त शिक्षक समुदाय के प्रति सम्मान व्यक्त करते हैं। जो समाज शिक्षकों का सम्मान करता है वो समाज सही अर्थ में प्रगतिशील होता है। शिक्षक के बीच आकर मेरे अंदर विद्यमान विद्यार्थी और शिक्षक दोनों ही जीवंत हो जाता है।
1: नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार समारोह में धनबाद की शिक्षिका मुनमुन भट्टाचार्य को सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों यह पुरस्कार पाने वाली वह झारखंड की एकमात्र शिक्षिका हैं। मुनमुन भट्टाचार्य ने इस उपलब्धि पर हर्ष जताते हुए इसे शिक्षा के प्रति अपना समर्पण बताया। शिक्षक दिवस पर आज राजधानी रांची सहित पूरे झारखंड में राज्य स्तरीय समारोह आयोजित कर शिक्षकों को सम्मानित किया जा रहा है। इस मौके पर कोडरमा के सुदूरवर्ती सपहा विद्यालय के शिक्षक ब्रह्मदेव शर्मा की कर्तव्य निष्ठा की राज्य भर में सराहना हो रही है, जो पिछले 19 वर्षों से रोजाना उफंती नदी पार कर बच्चों का भविष्य संवार रहे हैं।
3: जहाँ पे हमारा विद्यालय है वो काफी सुदूरवर्ती क्षेत्र और बीच जंगलों में बसा हुआ है, और जब हम विद्यालय जाते हैं तो सर लगभग 1 किलोमीटर सर लंबी नदी है, और उसी नदी को पास करते हुए बरसात सर हम लोग जाते हैं। और जिला प्रशासन से हमारा यही निवेदन रहेगा कि सर पुल पुलिया का सर आप निर्माण करवा दीजिए, चूंकि ये सिर्फ हमारा ही समस्या नहीं है, हमारे ऐसे गाँव के सभी लोग हजारों लोगों का समस्या है।
1: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शिक्षक दिवस पर राज्यवासियों को बधाई देते हुए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को नमन किया। उन्होंने कहा कि झारखंड की शिक्षा व्यवस्था को आधुनिक बनाने के लिए एआई और नई तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। सरकार का लक्ष्य आधुनिक तकनीक के साथ बच्चों को अपनी संस्कृति से जोड़ना है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राज्य में भर्ती परीक्षाओं में कथित धांधली और छात्रों पर दर्ज एफआईआर के विरोध में भाजपा ने मोर्चा खोल दिया है। केंद्रीय राज्य मंत्री संजय सेठ ने राज्य सरकार पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाते हुए सीबीआई जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि युवाओं के भविष्य के साथ हो रहे खिलवाड़ पर सीआईडी जांच पर भरोसा नहीं है।
4: सीबीआई इंक्वायरी क्यों बच रहे हो? क्यों? इसलिए कि मुख्यमंत्री जी आपके गिर्द के सरकार के जितने साथी हैं वो बड़ी मछलियां फंसी हुई हैं, वो सारे नेट में हैं, जिन्होंने झारखंड के लाखों बच्चों का भविष्य का सौदा पैसा खाया, माफ करने लायक नहीं। इसलिए सीबीआई जांच ही न्याय दे पाएगी और बच्चों पे मुकदमा वापस करना ही होगा।
1: मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार मतदाता सूची पुनरीक्षण की जांच के लिए संथाल परगना के 4 दिवसीय दौरे पर हैं। पहले दिन पाकुड़ के आहुत गांव में जांच के दौरान फर्जी दस्तावेजों से वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के प्रयास का खुलासा हुआ। सीईओ के निर्देश पर 4 अपात्रों और 1 सीएससी संचालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। हजारीबाग के मेरू कैंप में सीमा सुरक्षा बल का भव्य दीक्षांत परेड आयोजित किया गया। देश के विभिन्न राज्यों से आए 140 नव आरक्षों ने 44 सप्ताह का कड़ा बुनियादी प्रशिक्षण पूरा कर देश सेवा की शपथ ली। महानिरीक्षक धीरेन्द्र संभाजी कूटे ने जवानों को बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।
5: तथा उसे एक अनुशासित तथा कर्तव्य निष्ठ सैनिक बनाता है। इस 44 सप्ताह के कठिन बुनियादी प्रशिक्षण के दौरान आपने विभिन्न विषयों पर प्रशिक्षण प्राप्त किया है। अब आपकी तैयारी देश के विभिन्न सीमावर्ती क्षेत्रों के साथ ही
1: कोडरमा में बेहतर पुलिसिंग और अपराध नियंत्रण के लिए आज जिला पुलिस को 14 नए आधुनिक वाहन सौंपे गए। डीसी उत्कर्ष गुप्ता और एसपी कुमार शिवाशीष ने संयुक्त रूप से इन्हें हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। और इसके साथ ही अब तक के प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
0: आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। अगला कार्यक्रम थोड़ी देर में

हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। आइए अब सुनते हैं फिल्म संगीत कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति फिल्म नसीब। आवाजें हैं लता मंगेशकर और साथियों की, शब्द रचना आनंद बख्शी की, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

और अब कार्यक्रम के आखिर में आपको सुनवाते हैं फिल्म परिचय का ये गीत किशोर कुमार की आवाज में। गुलजार के शब्दों को संगीतबद्ध किया है आर डी बर्मन ने।

इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का हमारा कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है, आइए आपको लिए चलते हैं दिल्ली, जहां से आप हमारा अगला प्रसारण सुनेंगे।

0: सभी श्रोताओं को नमस्कार। पूर्वोत्तर डायरी के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं कमल कुमार प्रजापति। पूर्वोत्तर
1: डायरी, हम आपको लिए चलते हैं त्रिपुरा। त्रिपुरा में हमने बीते दिनों आपको बहुत सी ऐसी कहानियां सुनवाई जिसमें स्वयं सहायता समूह और महिलाएं उद्यमिता के नए अध्याय लिख रही हैं। और ऐसा ही एक कार्यक्रम, ऐसी ही एक कार्यशाला अभी हाल ही में त्रिपुरा में आयोजित हुई है, जो स्वयं सहायता समूह को प्रोत्साहन देने और किस तरह से महिलाएं उद्यमिता से क्षेत्र में आजीविका के अवसरों को पैदा कर सकती हैं, इस सिलसिले में ये कार्यशाला बड़ी महत्वपूर्ण थी। तो आइए हमारे संवाददाता सुमन भट्टाचार्य जी की ये खास रिपोर्ट सुनते हैं, जिसमें उन्होंने त्रिपुरा में लगातार महिलाओं के सशक्तिकरण और स्वयं सहायता समूहों से महिलाओं के आर्थिक उत्थान पर ये रिपोर्ट भेजी है।

0: अवसर पैदा कर सकता है। एक अवसर आय का साधन बन सकता है और अपनी आय एक महिला को आत्मनिर्भर बनने का आत्मविश्वास देती है। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं अपने हुनर, रचनात्मकता और मिलजुल कर किए गए प्रयासों से बेहतर आजीविका और अपने परिवार के लिए बेहतर भविष्य बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। ग्रामीण महिलाओं के इन प्रयासों को मजबूत करने और उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से गोमती जिले के माताबाड़ी ब्लॉक में विभिन्न पंचायतों के स्वयं सहायता समूहों के लिए एक विशेष कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्यशाला में अलग अलग स्वयं सहायता समूहों की महिलाएं एक मंच पर एकत्र हुई। उन्होंने अपने समूह द्वारा बनाए गए विभिन्न उत्पादों को प्रदर्शित किया और समूह की ओर से किए जा रहे अलग अलग कार्यों के बारे में जानकारी दी। उत्पाद बनाने से लेकर उनकी बिक्री और बाजार तक पहुंच बनाने के बारे में भी महिलाओं को जानकारी दी गई। कार्यशाला ने प्रतिभागियों को एक दूसरे से सीखने, अपने अनुभव साझा करने और अपनी आय बढ़ाने के नए अवसर तलाशने का मौका दिया। TRML के जिला समन्वयक ने कहा कि इसका उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं के कौशल को बढ़ाना, उनकी आजीविका को बेहतर बनाना और उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है।
1: PRI बॉडी के साथ हमारा CLF के अंडर जो पंचायत है, उन पंचायत में क्या क्या अभी तक काम हुआ है वो सब डिटेल LRP दीदी के द्वारा, मतलब लोकल रिसोर्स पर्सन दीदी लोगों के द्वारा सभी के सामने उपस्थापन किया है। तो इस वर्कशॉप में ब्लॉक का BDO, पंचायत समिति का चेयरपर्सन, सभी पंचायतों का प्रधान, अंगनवाड़ी वर्कर, आशा वर्कर सभी मौजूद था। तो हमारा ये प्रोग्राम काफी सफल रहा है।
0: कार्यशाला में शामिल कई महिलाओं के लिए स्वयं सहायता समूह नए हुनर सीखने और आय के अवसर पैदा करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बन चुके हैं। कार्यशाला में महिलाओं को अपने उत्पाद प्रदर्शित करने और उन पर लोगों की राय जानने का अवसर मिला। इससे उन्हें ये समझने में भी मदद मिली कि अपने उत्पादों की गुणवत्ता और उन्हें प्रस्तुत करने के तरीके को किस तरह बेहतर बनाया जा सकता है। इस कार्यक्रम में अलग अलग स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को एक दूसरे से बातचीत करने, नए विचार साझा करने और अपने अनुभवों से सीखने का अवसर भी दिया।
2: हमारा मेन काम यही है, गांव का हर महिला आत्मनिर्भर हो, हर एक महिला का पास अपना खुद का बिजनेस हो, ताकि गांव में कोई गरीब ना रहे। कुछ दिन पहले हमारे CLF में PRI बॉडी का साथ एक वर्कशॉप किया है। इसमें LRP मतलब लोकल रिसोर्स पर्सन द्वारा हर पंचायत का अंडर क्या क्या विकास हुआ था वो सबके सामने पेश किया गया।
0: ग्रामीण महिलाओं के लिए आर्थिक आत्मनिर्भरता की शुरुआत अक्सर एक छोटे से अवसर से होती है। एक हुनर, एक उत्पाद, एक स्वयं सहायता समूह और आगे बढ़ने का आत्मविश्वास, ऐसी कार्यशालाएं महिलाओं को एक साथ लाकर और उनके हुनर को प्रशिक्षण, सरकारी सहायता और बाजार से जोड़कर नए अवसर पैदा करने में मदद कर सकती है। कार्यशाला में ये संदेश भी सामने आया कि सही सहयोग और बाजार उपलब्ध होने पर ग्रामीण महिलाओं द्वारा बनाए गए उत्पाद उनकी स्थायी आजीविका का साधन बन सकते हैं। कार्यशाला में महिलाओं का उत्साह और उनकी सक्रिय भागीदारी आगे बढ़ने के उनके संकल्प को दर्शाती है। इन महिलाओं के लिए कार्यशाला में प्रदर्शित हर उत्पाद सिर्फ बिक्री की एक वस्तु नहीं है, ये उनके हुनर, मेहनत, आत्मविश्वास और आत्मनिर्भर बनने की उनकी कोशिश का प्रतीक है। माताबाड़ी में आयोजित ये कार्यशाला ग्रामीण महिलाओं को अधिक मजबूत और आत्मविश्वासी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। कौशल को बढ़ावा देकर महिलाओं को अपना काम शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करके और उन्हें नए अवसरों से जोड़कर ऐसी पहले छोटे स्तर पर किए जा रहे प्रयासों को स्थायी आजीविका में बदलने में मदद कर सकती है। क्योंकि जब ग्रामीण महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होती हैं, तो इसका लाभ केवल उन्हें ही नहीं मिलता, इससे परिवार मजबूत होते हैं और पूरे समुदाय का विकास होता है। सशक्त महिलाएं, मजबूत परिवार और आत्मनिर्भर समुदाय। पूर्वोत्तर डायरी के लिए सुमन भट्टाचार्य जी, आकाशवाणी अगरतला, श्याम सुंदर दत्ता के साथ गोमती जिले से वैष्णवी।

0: अब कैलाश मानसरोवर यात्रा पर एक खास रिपोर्ट सुनते हैं। कैलाश मानसरोवर यात्रा दुनिया की सबसे पवित्र यात्राओं में से एक है। पवित्र यात्रा होने के साथ साथ ये एक चुनौतीपूर्ण यात्रा भी होती है, क्योंकि पर्वतों की दुर्गम चोटियों से यात्रा होकर गुजरती है और तिब्बत में मानसरोवर झील तक ये यात्रा होती है। और इस यात्रा का महत्व इसलिए है कि भगवान शिव का जो मानसरोवर और कैलाश पर्वत स्थान माना जाता है हिंदू धर्म में, वो बहुत पवित्र स्थान है और इसी के दर्शन के लिए यात्री इस यात्रा को करते हैं। और साथ ही अन्य धर्मों जैसे बौद्ध और जैन धर्मों में भी इस यात्रा की पवित्रता की मान्यता है और इस यात्रा में यात्री अपनी शारीरिक और मानसिक शक्ति के साथ इस यात्रा को पूरा करते हैं। तो आइए हम एक विस्तृत रिपोर्ट इस संबंध में आपको सुनवाते हैं।
1: सिक्किम पर्यटन विकास निगम ने रविवार को गान्तोक में कैलाश मानसरोवर यात्रा 2026 के नथुला मार्ग से सफल समापन के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किया। इस दौरान यात्रा को सफल बनाने में योगदान देने वाले अधिकारियों, सपोर्ट स्टाफ और अन्य संबंधित लोगों के प्रयासों की सराहना की गई। मीडिया से बातचीत में एसटीडीसी के चेयरमैन लुकेंद्र रसाईली ने सभी श्रद्धालुओं को सफलतापूर्वक यात्रा पूरी करने पर बधाई दी और यात्रा को सुचारू बनाने में जुटी पूरी टीम की सराहना की। रसाईली ने कहा कि श्रद्धालुओं से मिले फीडबैक और सुझावों पर गंभीरता से विचार किया जाएगा और भविष्य में यात्रा को और बेहतर बनाने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे।
2: एज ए चेयरमैन बहुत खुश हैं क्योंकि इतना सक्सेसफुल हुआ, फीडबैक बहुत अच्छा मिला है, क्योंकि जितना भी यात्री हमने सब 10 बैच को ही हमने फेलोशिप करने के लिए इधर आए थे। सिर्फ फेलोशिप नहीं था लेकिन उनको फीडबैक भी चाहिए था कि सो दैट वी कैन इम्प्रूव नेक्स्ट ईयर के लिए, और बहुत अच्छा हुआ है। और दूसरा बात क्या है कि कैलाश मानसरोवर यात्रा एक इतना इम्पोर्टेंट यात्रा है क्योंकि जितना भी इंडिया में पॉपुलेशन है 140 बिलियन में देर आर हिंदूज और द बुद्धिस्ट और दे आर द सिक्स, दे ऑल वांट टू गो टू कैलाश टू वर्शिप शिव जी। तो इसका इम्पैक्ट टूरिज्म में क्या होता है कि सिक्किम का टूरिज्म में इसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट होगा, पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा, क्योंकि जितना भी यात्री आ रहा है इधर से जा रहा है नथुला से, उन लोग को बहुत मीडिया में पब्लिसिटी भी हुआ है और भव्य रूप में हम लोग इनॉग्रेशन किया और आज भी बहुत अच्छी तरह से हम लोग को कल्बिनेट हो गया है। और उसके बाद क्या होता है कि हमारा प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब जो हिसाब से सिक्किम को इतना बहुत सपोर्ट कर रहा है, बहुत पब्लिसिटी कर रहा है कि सिक्किम विजिट के लिए ऑर्गेनिक स्टेट है, पीपल ऑफ सिक्किम अच्छा है।
1: उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में नथुला के रास्ते कैलाश मानसरोवर यात्रा को और बेहतर बनाने के लिए व्यवस्थाओं और सुविधाओं को लगातार मजबूत किया जाएगा। एसटीडीसी के प्रिंसिपल चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर गिरमी यूशल ने बताया कि इस वर्ष कुल 10 बैच में 464 श्रद्धालुओं ने यात्रा में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि यात्रा 12 जून से शुरू हुई थी और पूरे आयोजन की जिम्मेदारी सौंपे जाने पर आभार व्यक्त किया।
3: कैलाश मानसरोवर यात्रा 2026 10th बैच द लास्ट बैच हैज अराइविंग यट टुडे फ्रॉम चाइना बाय नथुला एंड दिस यात्रा स्टार्टेड फ्रॉम 15th June 2026 एंड कंक्लूडेड टुडे एंड इन द कोर्स ऑफ द यात्रा 10 बैचेस वर सेंट एंड आउट ऑफ दैट टोटल ऑफ 464 Yatris participated and SCDC provided all the hospitality and other services and we are happy to say that the Yatras have gone off comfortably and without any mishap.
1: Girmi Yushal ne yatra ko safal banane mein SCDC ki team aur support staff ke prayason ko bhi rekhankit kiya. Wahin लाइजन अधिकारी निदेश कुमार ने कैलाश मानसरोवर यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुविधा और बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित करने में सहयोग के लिए एसटीडीसी टीम और सिक्किम सरकार का आभार जताया। यात्रा की सफलता ने श्रद्धालुओं के साथ साथ इसे सुचारू रूप से संपन्न कराने में जुटे अधिकारियों और सहयोगी टीम के समन्वित प्रयासों को भी रेखांकित किया। आकाशवाणी समाचार गान्तोक से मैनक चटर्जी के साथ मैं दिलराम दुलाल।
0: श्रोताओं, सिक्किम की लेपचा संगीत संस्कृति सिक्किम की एक बहुत बड़ी विरासत है और यहाँ की परंपरा को प्रदर्शित करती है। तो सिक्किम की लेपचा संगीत संस्कृति का प्रदर्शन अभी हाल ही में एक विशेष राज्य स्तरीय समारोह में देखने को मिला और इस समारोह की ये खास बात रही कि यहाँ पर तुंगुक नाम का एक जो महत्वपूर्ण वाद्य है, इसके वादकों ने एक रिकॉर्ड कायम किया। 32 वादकों ने एक साथ तुंगुक वाद्य बजाकर इस रिकॉर्ड को कायम किया और एक अलग ही माहौल का प्रदर्शन देखने को मिला। ये वाद्य जीआई टैग प्राप्त वाद्य है और लेपचा संगीत एक मधुर संगीत है। आइए हमारे संवाददाता के इस विशेष रिपोर्ट में इस राज्य स्तरीय समारोह के बारे में जानते हैं और साथ ही लेपचा संगीत की धुन भी आपको इस रिपोर्ट में सुनने को मिलेगी। तो आइए ये खास रिपोर्ट सुनते हैं।
4: सिक्किम की समृद्ध लेपचा संगीत परंपरा को तेंदोंग लोरू फात 2026 के राज्य स्तरीय समारोह में बड़ी पहचान मिली। पारंपरिक तुंग बुक वाग बजाने वाले सबसे बड़े समूह ने नया रिकॉर्ड कायम किया।
5: दिस इज एन अटेम्प्ट बाय सिक्किम टू सेट इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड विद लार्जेस्ट गैदरिंग ऑफ लेपचा म्यूजिशियंस प्लेइंग ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट तुंग बुक।
4: 7 अगस्त को गैंगटॉक के रिज पार्क स्थित योंगथोंग ओपन मार्केट में 32 कलाकारों ने एक साथ तुंग बुक बजाया। जीआई टैग प्राप्त यह पारंपरिक वाघ लेपचा समुदाय की सांस्कृतिक पहचान का अहम हिस्सा है।
5: ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट्स काउंट विद मी, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, and go!
4: लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की ओर से सबसे बड़े तुंग बुक वादकों के समूह का प्रमाण पत्र मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग को मनन केंद्र में आयोजित समारोह के दौरान सौंपा गया। यह पहल योंगथोंग सीजन 3 के तहत आयोजित की गई थी। इसका उद्देश्य लगभग भुलाए जा चुके तुंगबुक वादन को फिर से जीवंत करना और युवा पीढ़ी को लेपचा लोक संगीत सीखने के लिए प्रेरित करना है। समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने कहा कि तेंदोंग लोरू फात लेपचा समुदाय के मयेल लियांग यानी सिक्किम प्रकृति और अपनी सांस्कृतिक विरासत से गहरे जुड़ाव को दर्शाता है। उन्होंने विकास के साथ साथ भाषा, पारंपरिक ज्ञान, संगीत और सांस्कृतिक पहचान को संरक्षित रखने पर जोर दिया। कार्यक्रम में बोंग थिंग की पारंपरिक रस्मों, सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और लेपचा विरासत के संरक्षण में योगदान देने वालों को सम्मानित करने का कार्यक्रम भी हुआ। यह आयोजन आने वाली पीढ़ियों तक सिक्किम की स्वदेशी परंपराओं को पहुंचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। मोहिनक चटर्जी की रिपोर्ट के साथ पूर्वोत्तर डायरी के लिए मैं श्रेया पाठक।
0: श्रोताओं, ये कार्यक्रम आपको निश्चित तौर पर पसंद आया होगा। आप अपनी प्रतिक्रिया हम तक पहुंचा सकते हैं। आप हमसे जुड़ने के लिए हमें ईमेल भेज सकते हैं, हमें व्हाट्सएप के माध्यम से अपना संदेश भेज सकते हैं और इस कार्यक्रम में सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। आलेख व संकलन कमल कुमार प्रजापति, प्रस्तुति सहायक दानिश जैदी।

रांची केंद्र है, मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्स और FM 100.5 मेगा हर्ट्स पर। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम रांची मेलोडीज। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं फिल्म लालच के इस युगल गीत के साथ। आवाजें हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की, बोल लिखे हैं अनजान ने और धुन बनाई है बप्पी लहरी ने।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: स्वयं ही घट पड़े भारतीय सेना।
1: कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए आपको सुनवाते हैं फिल्म गैम्बलर का ये युगल गीत कुमार सानू और साधना सरगम की आवाज में। शब्द हैं नवाब आरजू के और संगीत है अनु मल्लिक का।

ये फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के रांची केंद्र से रांची मेलोडीज कार्यक्रम के अंतर्गत। आगे बढ़ते हुए आपको सुनाते हैं फिल्म सत्यमेव जयते 2 का ये गीत। आवाजें हैं रोचक कोहली, जुबिन नौटियाल और नीति मोहन की। मनोज मुंतशिर के बोल हैं और संगीत है रोचक कोहली का।

अब कार्यक्रम के आखिर में आपको सुनवाते हैं फिल्म बाजीगर का ये युगल गीत कुमार सानू और सोनाली वाजपेयी की आवाज में। रानी मल्लिक के शब्दों को धुन में पिरोया है अनु मल्लिक ने।

आइए श्रोताओं, कार्यक्रम संबंधी कुछ जानकारियां आपसे शेयर करते चलें। अब से थोड़ी देर बाद 4 बजे आप सुनेंगे प्रादेशिक मुख्य समाचार। 4:02 पर आप सुनेंगे शैक्षिक प्रसारण के तहत, विषय होगा शिक्षक होना आसान, आदर्श शिक्षक होना कठिन। वार्ताकार होंगी स्वाति वर्मा, प्रस्तुति सहयोग अवधेश कुमार की और प्रस्तुति होगी गौरव कुमार पांडे की। 4:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम विवरण, 4:35 से फिल्म संगीत का कार्यक्रम सांझ सरगम।

शाम 5 बजे प्रादेशिक मुख्य समाचार 5:02 से हम ले आएंगे युवा श्रोताओं का दैनिक कार्यक्रम युववाणी। इसके अंतर्गत आप सुनेंगे शिक्षक दिवस पर चर्चा, किताबों से आगे मिलने वाले जीवन की सीख, साथ ही कुछ फिल्म संगीत भी इस कार्यक्रम के तहत आप सुन पाएंगे। प्रस्तुति होगी गौरव कुमार पांडे की। 5:30 पर होगा औद्योगिक प्रसारण कार्यक्रम श्रमिक लोक। इसके अंतर्गत चर्चा होगी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जयंती के संदर्भ में, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस के बारे में भी आपको जानकारी मिलेगी। कार्यस्थल पर सुरक्षा मानकों का ध्यान रखें श्रमिक, इस संदर्भ में भी महत्वपूर्ण जानकारी आप ले पाएंगे। प्रस्तुति होगी प्रभु शरण की। शाम 6 बजे आप सुनेंगे प्रादेशिक मुख्य समाचार।

0: आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। आइए अब सुनते हैं प्रादेशिक मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। रांची के अपर न्यायायुक्त की अदालत ने जेपीएससी परीक्षाओं में अनियमितता के मामले में जेल में बंद आयोग के पूर्व अध्यक्ष एल ख्यांगते की जमानत याचिका खारिज कर दी है। सीआईडी ने जमानत का कड़ा विरोध करते हुए आरोप लगाया कि परीक्षा कराने वाली एजेंसी चयन में उनकी भूमिका थी और उन्होंने करीब 2 करोड़ रुपए का कमीशन लिया था। नई दिल्ली में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने धनबाद की शिक्षिका मुनमुन भट्टाचार्य को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया। बरमसिया मध्य विद्यालय की प्रभारी प्रिंसिपल को ये पुरस्कार सरकारी स्कूल में शिक्षा के स्तर को सुधारने और बच्चों में अंग्रेजी का डर दूर करने के अभिनव प्रयासों के लिए दिया गया है। गिरिडीह में शिक्षक दिवस पर विभिन्न विद्यालयों में सम्मान समारोह आयोजित किए गए। बगोदर प्रखंड के अटका स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय जीरवाटांड में आयोजित कार्यक्रम में विधायक नागेंद्र महतो ने शिरकत की। उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन को नमन करते हुए शिक्षकों को सम्मानित किया और राष्ट्र निर्माण में उनकी भूमिका को सराहा। रांची के ऐतिहासिक अल्बर्ट एक्का चौक पर आज भव्य नमो दही हांडी प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार शाम 5 बजे बतौर मुख्य अतिथि इस समारोह का उद्घाटन करेंगे। प्रतियोगिता में राज्यभर से आए पुरुष गोविंदा और महिला गोपिकाएं हिस्सा लेंगी। लोहरदगा के कुड़ू प्रखंड में पूर्व मंत्री सह स्थानीय विधायक डॉ. रामेश्वर उराव ने आज जन सुनवाई कर ग्रामीणों की समस्याओं का ऑन द स्पॉट समाधान किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन और निर्वाचन आयोग द्वारा चलाए जा रहे विशेष गहन मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य की भी समीक्षा की। और राज्य में आगामी 8 सितंबर से भारी बारिश का नया दौर शुरू होने की संभावना है। रांची मौसम केंद्र के अनुसार 10 सितंबर तक बारिश होगी। और इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
0: आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। अगला कार्यक्रम बस कुछ ही पलों में। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। शैक्षिक प्रसारण कार्यक्रम के अंतर्गत सुनते हैं वार्ता। विषय है शिक्षक होना आसान, आदर्श शिक्षक होना कठिन। वार्ताकार हैं स्वाति वर्मा, प्रस्तुति सहयोग अवधेश कुमार, प्रस्तुति गौरव कुमार पांडे की।
2: आप सभी से एक ऐसे विषय पर बात करना चाहती हूँ जो केवल शिक्षा से ही नहीं बल्कि हमारे पूरे समाज और आने वाली पीढ़ी के भविष्य से जुड़ा हुआ है। विषय है शिक्षक बनना आसान है पर आदर्श शिक्षक बनना कठिन है। मैं अपनी विषय की शुरुआत कबीर दास जी के एक प्रसिद्ध दोहे से करना चाहूंगी। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। इस दोहे का यह अर्थ है कि यदि ईश्वर और गुरु दोनों एक साथ खड़े हों तो हमें पहले गुरु के चरण छूने चाहिए, क्योंकि गुरु ने ही ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग दिखाया है। आधुनिक युग में कोई भी व्यक्ति कुछ डिग्रियां हासिल करके, बीएड या एमएड की परीक्षा पास करके किसी स्कूल या कॉलेज में नौकरी पा सकते हैं। इस तरह वह तकनीकी रूप से शिक्षक तो बन जाते हैं और उन्हें हर महीने वेतन भी मिलते हैं। वह समय पर कक्षा में जाते हैं और ब्लैकबोर्ड पर लिखकर चले आते हैं। यह प्रक्रिया बहुत आसान है, लेकिन सवाल यह है कि क्या हर शिक्षक बच्चों के दिलों में उतर पाते हैं? क्या हर शिक्षक विद्यार्थी के चरित्र निर्माण और उसके जीवन की दिशा बदल पाने में समर्थ हो पाते हैं? नहीं। यहीं से शुरुआत होती है उस कठिन मार्ग की जिसे हम आदर्श शिक्षक का मार्ग कहते हैं। हमें सबसे पहले दोनों शब्दों शिक्षक और आदर्श शिक्षक के गहरे अंतर को समझना होगा। एक साधारण शिक्षक सिर्फ पाठ्यक्रम पूरा करते हैं, जबकि एक आदर्श शिक्षक छात्र का जीवन निर्माण करते हैं। एक साधारण शिक्षक परीक्षा में आने वाले संभावित प्रश्नों के उत्तरों को रटवाते हैं और परीक्षा में अच्छे अंक लाने का दबाव बनाते हैं। दूसरी तरफ आदर्श शिक्षक छात्र की जिज्ञासा को जगाते हैं, वह सोचना सिखाते हैं, न कि केवल रटना और याद रखना। एक प्रसिद्ध दार्शनिक विलियम आर्थर वार्ड ने कहा था, एक सामान्य शिक्षक केवल बताते हैं, एक अच्छे शिक्षक समझाते हैं, एक श्रेष्ठ शिक्षक करके दिखाते हैं, लेकिन एक महान और आदर्श शिक्षक प्रेरित करते हैं। शिक्षक बनना इसलिए आसान है क्योंकि यह एक पेशा है, लेकिन आदर्श शिक्षक बनना एक साधना है, एक तपस्या है। साधारण शिक्षक केवल तब तक शिक्षक हैं जब तक वह विद्यालय की चार दीवारी के भीतर हैं। आदर्श शिक्षक वह है जिसकी सिखाई बातें छात्र स्कूल या कॉलेज छोड़ने के दशकों बाद भी जीवन के हर मोड़ पर याद रखता है। मैं यह बताना चाहूंगी कि आदर्श शिक्षक बनना कोई नौकरी या पेशा नहीं है, यह एक तपस्या है, यह एक संकल्प है जो 24 घंटे जीना पड़ता है। एक साधारण शिक्षक सिर्फ दिमाग में जानकारियां भरते हैं, लेकिन एक आदर्श शिक्षक मनुष्य के दिल और आत्मा को छूते हैं। यह कठिन क्यों है, आइए इसके कुछ मुख्य कारणों को समझते हैं। पहला कारण है कथनी और करनी में समानता। एक आदर्श शिक्षक जो बोलते हैं उसे अपने जीवन में पहले उतारना पड़ता है। यदि कोई शिक्षक छात्रों से कहे कि झूठ मत बोलो या समय के पाबंद बनो, लेकिन वह खुद देरी से आए या झूठ बोले, तो बच्चे कभी उनका सम्मान नहीं करेंगे। बच्चे शिक्षक के लेक्चर से कम उनके व्यवहार से ज्यादा सीखते हैं। अपनी मर्यादा और आचरण को हमेशा शुद्ध रखना बहुत कठिन काम है। दूसरी कठिनाई तब आती है जब बात होती है धैर्य की। हम सभी जानते हैं कि कक्षा में हर तरह के बच्चे होते हैं, कुछ बहुत तेज, कुछ साधारण, कुछ कमजोर, कोई शांत होता है तो कोई बेहद शरारती। एक साधारण शिक्षक कमजोर या शरारती बच्चे पर गुस्सा कर सकते हैं या उसे छोड़ सकते हैं, लेकिन एक आदर्श शिक्षक को समुद्र जैसा धैर्य रखना पड़ता है। उसे हर बच्चे के मानसिक स्तर पर जाकर उसकी समस्याओं को समझकर उसे आगे बढ़ाना होता है। तीसरी कठिनाई तब आती है आदर्श शिक्षक बनने के मार्ग में जब शिक्षक यह सोचते हैं कि वह सब कुछ जानते हैं, खुद को विद्वान समझने लगते हैं। आदर्श शिक्षक बनने के लिए निरंतर विद्यार्थी बने रहना चाहिए और हमेशा सोचना चाहिए कि मैं शिक्षक हूँ, इसलिए मुझे जीवन भर सीखते रहना है। उन्हें समाज और तकनीक के बदलते परिवेश के साथ स्वयं को निरंतर विकसित करना चाहिए ताकि वह समय की आवश्यकताओं के अनुरूप विद्यार्थियों का मार्गदर्शन कर सकें। अब मैं शिक्षक बनने के मार्ग में आने वाली चुनौतियों के बारे में कुछ बताना चाहूंगी। आज शिक्षा एक व्यापार बनती जा रही है। ऐसे माहौल में अपने मूल्यों को बचाए रखना और हर छात्र को बिना किसी भेदभाव के समान स्नेह देना एक कठिन परीक्षा है। दूसरी तरफ आज बच्चों के पास गूगल और इंटरनेट है। वे किसी भी सवाल का जवाब एक सेकंड में ढूंढ लेते हैं। ऐसे में शिक्षक केवल सूचना देने वाले यंत्र नहीं रह सकते, उन्हें बच्चों का मार्गदर्शक और परामर्शदाता बनना पड़ता है। फिर बात आती है नैतिक मूल्यों के पतन के बारे में, जो आधुनिक समाज में तेजी से फैल रही है। आज समाज में जिस तरह से तनाव और जल्दीबाजी बढ़ रही है, बच्चों में भी उसका असर बढ़ रहा है, बच्चों में भी उसका असर दिखाई देता है। ऐसे में उन्हें संभालना, उनमें संस्कारों के बीज बोना बहुत कठिन कार्य है। मेरे विचार से आदर्श शिक्षक इन चुनौतियों का सामना कर सकते हैं, अगर वे अपने आप में आध्यात्मिक चेतना जगाएं। यहाँ आध्यात्मिकता का अर्थ केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है। आध्यात्मिकता का अर्थ है अपने भीतर झांकना, आत्मचिंतन करना, अपने कर्तव्य को समझना, दूसरों के प्रति करुणा रखना और अपने अहंकार पर नियंत्रण रखना। एक आध्यात्मिक शिक्षक जानते हैं कि उनका कार्य केवल बच्चों को परीक्षा के लिए तैयार करना नहीं है, बल्कि उन्हें अच्छे जीवन के लिए तैयार करना भी है। वह विद्यार्थियों में केवल प्रतिस्पर्धा की भावना नहीं, बल्कि सहयोग, करुणा, सहिष्णुता और मानवता के भाव विकसित करते हैं। मैं यह कहना चाहूंगी कि समाज को ऐसे शिक्षक चाहिए जो सिर्फ पाठ्यक्रम न पूरा करे, बल्कि विद्यार्थियों के व्यक्तित्व का निर्माण करे और जो बच्चों में सपने जगाए और असफल विद्यार्थी को भी यह विश्वास दिलाए कि तुम्हारे भीतर भी क्षमता है। अब मैं एक और मुख्य बात बताना चाहूंगी कि राष्ट्र निर्माण में भी शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका है। शिक्षक को केवल ज्ञान देने वाला व्यक्ति समझना उसके महत्व को सीमित कर देना है। वास्तव में शिक्षक राष्ट्र के भविष्य का निर्माता होते हैं, क्योंकि आज की कक्षा में बैठे विद्यार्थी ही कल देश के नागरिक, वैज्ञानिक, चिकित्सक, प्रशासक, उद्यमी, सैनिक और जनप्रतिनिधि बनेंगे। राष्ट्र का निर्माण केवल ऊंची इमारतों, बड़ी सड़कों और आधुनिक तकनीक से नहीं होता। राष्ट्र का वास्तविक निर्माण उसके नागरिकों के चरित्र, संस्कार, विचार और कर्म से होते हैं, और इन नागरिकों के व्यक्तित्व निर्माण में आदर्श शिक्षक की मुख्य भूमिका होती है। एक आदर्श शिक्षक विद्यार्थियों को केवल परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए तैयार नहीं करते, बल्कि उन्हें जिम्मेदार और संवेदनशील नागरिक बनने की शिक्षा देते हैं। वह विद्यार्थियों में देश के प्रति प्रेम, संविधान के प्रति सम्मान, कर्तव्य बोध, अनुशासन, ईमानदारी, सहिष्णुता जैसे मूल्यों का विकास करते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि एक आदर्श शिक्षक की जिम्मेदारी केवल अपनी कक्षा और विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम पूरा करने तक ही सीमित नहीं है। इनकी जिम्मेदारी परिवार से लेकर समाज और राष्ट्र निर्माण तक फैली होती है। अतः मैं अपनी बात कुछ पंक्तियों के साथ समाप्त करना चाहूंगी। दीपक स्वयं जलता है तभी दूसरों को प्रकाश देता है। शिक्षक भी स्वयं सीखते हैं तभी विद्यार्थियों को ज्ञान का प्रकाश दे पाते हैं। धन्यवाद।
3: अभी आप सुन रहे थे शैक्षिक प्रसारण। विषय था शिक्षक होना आसान, आदर्श शिक्षक होना कठिन। वार्ताकार थी स्वाति वर्मा। प्रस्तुति सहयोग अधीश कुमार की, प्रस्तुति गौरव कुमार पांडेय की। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है।

मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्ज और FM 100.5 मेगा हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। कुछ ही पलों में अगला प्रसारण।

स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम साथ सरगम में। सभी सुनने वाले श्रोताओं को श्वेता का नमस्कार। आज शिक्षक दिवस है, आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः।

श्रोताओं, गुरु वो दीपक है जो खुद जलकर दूसरों का भविष्य रोशन करता है। जिस गुरु ने हमें बेहतर इंसान बनाना सिखाया, उन्हें दिल से नमन।

श्रोता बच्चों, ये आपके लिए है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जो रुकते नहीं, मुश्किलें चाहे लाख हो जो झुकते नहीं। आज मेहनत कर ले तू खामोशी से, कल तेरी कामयाबी की आवाज़ दूर तक जाएगी। बिल्कुल बच्चों, आप मेहनत कीजिए और आपकी मेहनत ज़रूर रंग लाएगी और आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। और ये सुनते हैं ये गीत।

ध्यान दें। आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान, पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 10 सितंबर 2026।

0: किस बात की, आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
1: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
2: आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम साज सरगम में। आइए सुनते हैं फिल्म फना से ये गीत, जिसे गाया है महालक्ष्मी अय्यर ने। शब्द रचना है प्रसून जोशी की, संगीत है जतिन ललित का।

अब हम आपको सुनवाएंगे फिल्म शोर से ये गीत, मुकेश व लता मंगेशकर की स्वर में, शब्द रचना है संतोष आनंद की, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

कार्यक्रम की अगली पेशकश है फिल्म सावरिया से। शान की आवाज में बोल है समीर अंजान के, धुन बनाई है मोंटी शर्मा ने।

कार्यक्रम की आखिरी पेशकश है फिल्म सौतन से। आवाज है किशोर कुमार की, गीत को लिखा है सावन कुमार ने, सुरों से पिरोया है उषा खन्ना ने।

0: इस गीत के साथ ही संपन्न होता है कार्यक्रम साज सरगम। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। आइए सुनते हैं अब तक के मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। केंद्रीय राज्य मंत्री संजय सेठ ने झारखंड में प्रदर्शनकारी छात्रों पर दर्ज एफआईआर को लेकर राज्य सरकार और विपक्षी गठबंधन पर तीखा हमला बोला है। रक्षा राज्य मंत्री ने सरकार पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि परीक्षा धांधली की सीबीआई जांच होनी चाहिए, क्योंकि यहां युवाओं का भविष्य दांव पर लगा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव मिथिलेश ठाकुर ने दावा किया है कि राज्य सरकार की नीतियों से छात्र पूरी तरह संतुष्ट हैं। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि छात्रों के विरोध के पीछे भाजपा का राजनीतिक एजेंडा है। बोकारो के बिरसा आश्रम में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सेवा संकल्प अभियान को लेकर भाजपा की जिला स्तरीय कार्यशाला आयोजित की गई। मुख्य अतिथि प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू और सांसद ढुलू महतो ने कार्यकर्ताओं से पीएम मोदी के सेवा तथा राष्ट्र निर्माण के संदेश को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का आह्वान किया। सरायकेला में पंजाब नेशनल बैंक ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान द्वारा 13 दिवसीय कृषि उद्यमी प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। भारत सरकार के सहयोग से आयोजित इस कार्यक्रम का उद्घाटन पीएनबी अधिकारी सरीन केशकोट और रथु माडी ने किया। इसका उद्देश्य युवाओं को आधुनिक कृषि और स्वरोजगार के लिए आत्मनिर्भर बनाना है। बोकारो के शिबू सोरेन स्मृति भवन में आज झारखंड आंदोलनकारियों के लिए भव्य सम्मान समारोह आयोजित किया गया। उपायुक्त अजय नाथ झा और एसपी नाथू सिंह मीणा ने आंदोलनकारियों को मेमेंटो और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। और जामताड़ा पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर मेहजाम थाना क्षेत्र के चरका पहाड़ी से साइबर अपराध में लिप्त दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साइबर डीएसपी अमित कुमार ने बताया कि गिरफ्तार अपराधियों के पास से 3 मोबाइल फोन और 3 फर्जी सिम कार्ड बरामद किए गए हैं। और इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है, एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 5:02 हो रहे हैं। संध्याकालीन सभा में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं, आइए आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रम विवरण के बारे में जानते हैं।

अब से कुछ देर बाद यानी कि 5:05 पर सुनिएगा कार्यक्रम गुलदस्ता। आज के इस गुलदस्ता कार्यक्रम में आप सुनते हैं भूले बिसरे गीत। 5:30 पर होगा फिल्म संगीत का कार्यक्रम। 6:00 आप सुनेंगे मुख्य समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से। 6:02 पर हम आपको सुनवाएंगे मंगला कार्यक्रम सात रंग। 6:30 पर सुनिए कार्यक्रम आपका स्वास्थ्य, चर्चा होगी स्वस्थ आहार बेहतर जीवन, भेंटवार्ता होगी नेत्रदान महादान, भेंटवार्ताकार होंगे डॉक्टर शरीन सोसन तोपनो, भेंटकर्ता रमेश कुमार दास। 6:55 पर हम आपको ले चलेंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र, जहां से आप सुन सकेंगे प्रादेशिक समाचार और जिले में आजकल। 7:15 पर सुनिएगा फरमाशी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद। 7:30 पर आप सुनते हैं कार्यक्रम किसान वाणी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। चर्चा होगी शिक्षक दिवस पर, संथाली लोकगीत होगा मदन सोरेन और साथियों के स्वर में। आज के मेहमान के अंतर्गत भेंटवार्ता होगी फलदार पौधों से होने वाले लाभ, भेंटवार्ताकार होंगे लेबिया चंगो और इनसे बातें करेंगी आसामणि गो। उड़िया लोकगीत का आनंद लीजिएगा जितेंद्र प्रधान और साथियों के स्वर में। 8:00 हम आपको ले चलेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र, जहां से आप सुन सकेंगे महिला एशिया कप T20 क्रिकेट मैच 2026 के अंतर्गत भारत और पाकिस्तान के बीच खेले जाने वाले क्रिकेट मैच का सीधा प्रसारण के लिए। 8:45 पर आप सुनेंगे समाचार संध्या आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से क्रमशः हिंदी और अंग्रेजी में। 9:15 से पुनः आप सुन सकेंगे क्रिकेट मैच का प्रसारण। 11:00 आप सुनेंगे तो ये थी आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रम विवरण। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं FM 101.7 MHz पर। श्रोताओं आइए सुनते हैं कार्यक्रम गुलदस्ता।

और आइए सुनते हैं मुकेश की आवाज़ में फिल्म हिमालय की गोद में, इस फिल्म का गाना। गीत के बोल हैं चांद सी महबूबा।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: क्या आप तनाव, चिंता, उदासी, मानसिक परेशानी या आत्महत्या के विचारों से जूझ रहे हैं? याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। मानसिक स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है। मदद के लिए संपर्क करें रिनपास कांके रांची।
3: पिछले 100 वर्षों से मानसिक स्वास्थ्य चिकित्सा के क्षेत्र में एक अग्रणी संस्थान, जहां अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा मानसिक स्वास्थ्य संबंधी परामर्श और नशा मुक्ति का निःशुल्क उपचार उपलब्ध है। डायल करें 24/7 हेल्पलाइन नंबर 9471136697, टोल फ्री नंबर 1449 या 1800345406 पर।
2: समय पर मदद लें, स्वस्थ मन, बेहतर जीवन पाएं। रिनपास एवं झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।

इस गीत के साथ ही श्रोता, हमारा आज का गुलदस्ता कार्यक्रम अभी ही समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं, FM के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर। कुछ ही पल में आप सुनेंगे फिल्म संगीत का अगला कार्यक्रम।

फिल्म संगीत कार्यक्रम में आपका पुनः स्वागत है। कार्यक्रम के साथ मैं हूं अवनीश कुमार सिन्हा। पहला गीत है फिल्म वक्त से, गायक कलाकार हैं आशा भोसले और महेंद्र कपूर।

अभी आपने सुना फिल्म सहरा का ये नगमा, आवाज़ें थी लता मंगेशकर की। और आई सुनते हैं फिल्म नीला आकाश में आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी को।

श्रोता सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से। अगला गाना है फिल्म शिक्षा से, गायक कलाकार हैं यशुदास।

अभी आपने सुना फिल्म घर द्वार का ये नगमा, आवाज़ें थी रूना लैला की। और आइए सुनते हैं फिल्म ताजमहल में मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर को।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: इसके साथ ही श्रोता, हमारा आज का फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब यही समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं FM के 101.7 MHz पर, और आइए सुनते हैं मुख्य समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से।
3: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं पूनम क्रिकेटा। हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल ने राज्य सरकार पर विपक्ष के विधायकों की रेकी कराने का गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सदर विधायक प्रदीप प्रसाद के आवास के सामने हाई रेजोल्यूशन CCTV कैमरा लगाना लोकतंत्र में एक बड़ा अपराध है। उन्होंने इस मामले में पुलिस से 48 घंटे बाद भी खुलासा न होने पर सवाल उठाए हैं। सरायकेला खरसावां के गम्हरिया में आयोजित शिक्षक दिवस सम्मान समारोह में बेहतरीन शैक्षणिक कार्य और शत प्रतिशत परिणाम दिलाने वाले 271 से अधिक शिक्षकों को सम्मानित किया गया। जिला शिक्षा पदाधिकारी कैलाश मिश्रा ने प्रशस्ति पत्र प्रदान करते हुए कहा कि शिक्षकों का यह योगदान जिले में शिक्षा की गुणवत्ता को नई ऊंचाई देगा। खूंटी उपायुक्त मोहम्मद जावेद हुसैन ने आज सदर अस्पताल का औचक निरीक्षण कर मरीजों को मिलने वाले आहार, दवाओं के स्टॉक और स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लिया। उपायुक्त ने डॉक्टरों को अस्पताल में उपलब्ध दवाएं ही लिखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जल्द ही अस्पताल में नर्सों और मैन पावर की कमी दूर की जाएगी। लोहरदगा के नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय हिरही में आज डालसा के निर्देश पर एक विशेष मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया। बच्चों के अस्वस्थ होने की सूचना पर शिविर लगाकर उनके स्वास्थ्य और खून की जांच की गई। डालसा सचिव मनोरंजन कुमार ने परिसर का निरीक्षण कर पौष्टिक भोजन और साफ सफाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साहिबगंज जिले के राजमहल थाना क्षेत्र में पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध बैग से 36 एंड्रॉइड मोबाइल फोन बरामद किए। राजमहल SDPO विमलेश कुमार त्रिपाठी ने बताया कि पुलिस अधीक्षक को मिली गुप्त सूचना पर यह कार्रवाई की गई। अंधेरे का लाभ उठाकर मोटरसाइकिल चालक मौके से फरार हो गया। और इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन शाम 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

कार्यक्रम आपका स्वास्थ्य में आप सबों का स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं रमेश दास। कैसे हैं श्रोताओं? हमें उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम स्वास्थ्य के बारे में कुछ विशेष बातें करते हैं। जी हाँ, स्वस्थ आहार, बेहतर जीवन। श्रोताओं, स्वस्थ और संतुलित आहार बेहतर और लंबा जीवन जीने का सबसे मुख्य आधार है। जैसे मैं कहूँ कि संतुलित आहार के कुछ प्रमुख घटक हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, यह शरीर को मुख्य ऊर्जा प्रदान करता है। इसके लिए साबुत अनाज और दलिया का सेवन करें। प्रोटीन, यह मांसपेशियों के विकास और मरम्मत में मदद करता है। इसके लिए दालें, चना, दूध, पनीर या अंडे शामिल हैं। फल और सब्जियां, रोजाना कम से कम 400 ग्राम ताजे फल और हरी सब्जियां जरूर खाएं, जो विटामिन और फाइबर से भरपूर होती है। वसा, संतृप्त वसा के बजाय सीमित मात्रा में अच्छे स्रोतों जैसे घी या बादाम का सेवन करें। श्रोताओं, स्वस्थ जीवन के लिए कुछ महत्वपूर्ण आदतें बनाएं, जैसे हाइड्रेशन, दिन भर में पर्याप्त मात्रा में पानी या छाछ, नारियल पानी जैसे पेय पदार्थ जरूर पिए। कम चीनी और नमक, भोजन में चीनी और नमक का सेवन कम रखें ताकि ब्लड प्रेशर और दिल की बीमारियों से आप दूर रह सकें। जंक फूड से दूरी बनाएं, मैदे से बनी चीज़ें और पैकेट बंद और तली भुनी चीज़ों से बचें। सबसे खास बात तो यह है श्रोताओं कि आप समय पर भोजन जरूर करें। सही समय पर हल्का और पौष्टिक भोजन करने की आदत बनाएं। तो इस तरह अगर हम देखें तो कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिसका हमें आदतें बनाना चाहिए। आदतें के कहने का मतलब ये है कि हमें इस पर जरूर ध्यान देना चाहिए। इससे भी

दान कैसे, और खासकर इसके लिए पखवाड़ा चल रहा है, ऐसे में कुछ विशेष जानकारी हम उन्हें लें। लेकिन उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण संदेश ले लें।

0: क्या आप तनाव, चिंता, उदासी, मानसिक परेशानी या आत्महत्या के विचारों से जूझ रहे हैं? याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। मानसिक स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है। मदद के लिए संपर्क करें रिनपास कांके रांची।
1: पिछले 100 वर्षों से मानसिक स्वास्थ्य चिकित्सा के क्षेत्र में एक अग्रणी संस्थान, जहां अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा मानसिक स्वास्थ्य संबंधी परामर्श और नशा मुक्ति का निःशुल्क उपचार उपलब्ध है। डायल करें 24/7 हेल्पलाइन नंबर 9471366 97, टोल फ्री नंबर 1444 99 या 1800345406 पर।
0: समय पर मदद लें, स्वस्थ मन बेहतर जीवन पाएं। रिनपास एवं झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: श्रोताओं, हर साल की भांति इस साल भी 25 अगस्त से 8 सितंबर तक नेत्र पखवाड़ा दिवस मनाया जा रहा है। आज हम इसी पर विशेष जानकारी लेने के लिए हम पहुंचे हुए हैं नेत्र रोग विशेषज्ञ सदर अस्पताल चयावासा के डॉक्टर सेलिन सोसन टोपनो जी के पास। तो सबसे पहले तो हमारे इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है, नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: पहला सवाल तो हम आपसे यही करेंगे कि ये जो नेत्रदान पखवाड़ा है क्या?
1: नेत्रदान पखवाड़ा एक विशेष जागरूकता अभियान है। यह हर साल 25 अगस्त से 8 सितंबर तक मनाया जाता है। यह स्पेशली हर एक सरकारी अस्पताल में इसको मनाया जाता है और इसका उद्देश्य है कि मृत्यु के बाद नेत्रदान के लोग के लिए लोग अधिक से अधिक लोग प्रेरित हुए है ना, और नेत्रदान के बारे लोग समझे इसका महत्व क्या है। और मुख्य रूप से हम लोग करते हैं कि लोगों को नेत्रदान के लिए संकल्प पत्र भरवाते हैं।
0: अच्छा।
1: और ये इससे हम लोग का है कि भारत में कॉर्नियल ब्लाइंडनेस कम होने की संभावना है और समाज में फैली गलत धारणाओं, अंधविश्वासों एवं डर को दूर करना ही इसका मुख्य उद्देश्य है।
0: अच्छा मैडम, एक चीज बताइए, ये नेत्रदान है क्या?
1: नेत्रदान का अर्थ है किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसकी आंखें दान करना ताकि किसी कॉर्नियल अंधत्व से पीड़ित व्यक्ति को दृष्टि वापस लाने में मदद मिल सके।
0: अच्छा, तो नेत्रदान की आवश्यकता क्यों है?
1: हमारे देश में लाखों लोग कॉर्नियल ब्लाइंडनेस की वजह से अंधकारमय जीवन जी रहे हैं। कॉर्निया खराब होने से दवा या चश्मा काम नहीं करता है, उसकी दृष्टि सिर्फ कॉर्नियल ट्रांसप्लांट यानी प्रत्यारोपण से ही लौट सकती है और यह प्रत्यारोपण केवल तब संभव है जब कोई व्यक्ति मृत्यु के बाद अपनी आंखें दान करे, तभी ये संभव हो सकता है।
0: अच्छा, नेत्रदान में क्या पूरी आंखें निकाली जाती है?
1: नहीं, ऐसा नहीं है, पूरी आंखें नहीं निकाली जाती है, सिर्फ आंखों का सामने वाला पारदर्शी हिस्सा जिसे हम लोग कॉर्निया या काली पुतली कहते हैं वो निकाला जाता है, उसके साथ में एक स्क्लेरल रिम निकाला जाता है, पूरी आंख नहीं निकाली जाती है।
0: अच्छा, नेत्रहीन व्यक्ति को नेत्रदान से क्या लाभ हो सकता है?
1: जब नेत्रहीन व्यक्ति में कॉर्निया प्रत्यारोपण किया जाता है तो वह पहले की तरह सारा संसार देख सकता है।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, किसी व्यक्ति को नेत्रदान क्यों करना चाहिए, इससे क्या लाभ है?
1: आप अगर दान करते हैं तो जो आंखें आपकी तो कोई काम की नहीं है, उससे कम से कम दो लोग तो जरूर ही का जीवन रोशन होगा, दृष्टि मिलेगी, दो से अधिक लोग को भी दृष्टि मिल सकती है। अभी के नए टेक्नोलॉजी के अनुसार करीब 6 लोग को भी प्रत्यारोपण किया जा सकता है और यह एक सरल सुरक्षित

0: और महान सेवा है। नेत्रदान से समाज में प्रेम, करुणा और मानवता को बढ़ावा मिलता है। आपका यह छोटा सा निर्णय किसी के लिए नई जिंदगी बन सकती है, इसलिए हमें नेत्रदान करना चाहिए।
1: अच्छा, हम नेत्रदान करने की प्रक्रिया क्या है ये थोड़ा हमारे श्रोताओं को बता दें।
0: नेत्रदान के लिए जीवित व्यक्ति कुछ नहीं करता है, बस एक संकल्प पत्र भरता है जो कि आपको नज़दीकी नेत्र बैंक या सरकारी अस्पताल में आपको मिल जाएगा। जीवित व्यक्ति सिर्फ एक संकल्प पत्र ही भरता है, उसके बाद उनको कुछ नहीं करना पड़ता है। मृत्यु के बाद, मतलब जब आप संकल्प पत्र भरते हैं तो अपने परिवार वालों को ज़रूर बता दीजिए, ताकि जब आपकी मृत्यु होती है तो आप के परिवार वाले नज़दीकी आई बैंक को कॉल करेंगे। नज़दीकी आई बैंक वाले को कॉल किया जाता है तब वो लोग आएंगे, और ये जो होता है कम से कम 6 घंटे के अंदर में ही करना चाहिए, क्योंकि तब तक ही कॉर्निया जीवित रहता है। तो जैसे मृत्यु होती है, परिवार वालों को करना चाहिए कि तुरंत ही कॉल करें नज़दीकी आई बैंक, या फिर एक हेल्पलाइन है 1919, आई बैंक का हेल्पलाइन नंबर है, वहाँ भी सूचना दे सकते हैं। उसी में आई बैंक से एक टीम आएगी, आपके पास आएगी, उसके बाद अपने रिश्तेदारों, आपके रिश्तेदारों से सहमति लेंगे। अगर वे लोग सहमत होंगे तभी आपका नेत्रदान हो पाएगा। वो लोग रिटन कंसेंट लेंगे, सहमति पत्र लेंगे लिखित में कि आप देना चाहते हैं, तभी हो पाएगा, अदरवाइज नहीं होगा।
1: अच्छा अच्छा अच्छा, लोगों में बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं कि अगर नेत्रदान करते हैं तो जो टीम आती है क्या पूरी आंखें निकाल लेते हैं?
0: नहीं, ऐसा नहीं है। वो लोग पूरी आंख नहीं निकालते हैं, ये सिर्फ कॉर्निया निकाला जाता है। जब निकाला भी जाता है तो उसके बाद वो लोग क्या करते, एक छोटा सा बटन डाल देते हैं।
1: अच्छा।
0: जिसकी वजह से वो जो आपकी आँख, जो चेहरा, मृत व्यक्ति का चेहरा वैसे के वैसे दिखता है।
1: अच्छा।
0: मतलब चेहरा में कोई बदलाव नहीं आता है, और बहुत ही जो प्रशिक्षित लोग है होते हैं वही लोग करते हैं।
1: अच्छा।
0: इसलिए कोई टेंशन की बात नहीं है।
1: अच्छा, अच्छा। अच्छा, हमारे देश में कितने लोग हैं जिन्हें ये ज़रूरत है नेत्र की?
0: राष्ट्रीय अंधापन नियंत्रण कार्यक्रम के लक्ष्य के अनुसार प्रत्येक वर्ष 1 लाख लोगों का प्रत्यारोपण होना चाहिए।
1: अच्छा।
0: लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि करीब अभी जो डाटा है 40,000 लोग ही नेत्रदान करते हैं।
1: अच्छा, अच्छा।
0: तो इस ये जो है गैप वो पूरा नहीं हो पा रहा है। तो जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग होंगे नेत्रदान के लिए उतना ये गैप फुलफिल होगा।
1: अच्छा अच्छा, सरकार के द्वारा तो नेत्रदान के लिए प्रोत्साहन के लिए कई अभियान भी चला रहे हैं, लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है किस वजह से अब तक ज़्यादा लोग नहीं कर रहे हैं, क्या कारण हो सकता है?
0: अभी भी लोगों के बीच में जागरूकता की कमी है, और कुछ लोग अंधविश्वास करते हैं। जैसे कि कहा जाता है कि अगर हम नेत्रदान करेंगे तो फिर अगले जन्म में हम अंधे पैदे होंगे, या फिर हो सकता है कि भगवान एक्सेप्ट ना करे। ये सब बातें हैं। अभी तो हम लोग इस ऐसे ज़माने में हैं कि हम लोग को ये सब सोचना नहीं चाहिए, आगे की सोच करना चाहिए, मानवता के बारे भी सोचना चाहिए। तो मेरे हिसाब से करना चाहिए नेत्रदान, ज़्यादा से ज़्यादा लोग करेंगे उतना अंधापन कम होगा।
1: कम होगा। अच्छा, ऐसे कि कोई उम्र सीमा है कि किस वर्ग के लोग ज़्यादा इससे ग्रसित हैं?
0: जनरली बच्चे और युवा वर्ग इससे ज़्यादा लोग प्रभावित हैं, क्योंकि बच्चों में विटामिन ए की कमी में रहती है, और यंग एज में एक्सीडेंटल बहुत ज़्यादा होता है,

0: सबके वजह से ये दो मुख्य कारण लोग हैं जो कि बच्चे और युवा वर्ग इससे पीड़ित रहते हैं।
1: अच्छा, चलते चलते एक और बात हम आपसे जानना चाहेंगे कि आंखों के बचाव के लिए हमें इतना प्रिकॉशन लेना चाहिए कितना?
0: बच्चों को समझाना चाहिए कि नुकीली चीज़ों से दूर रहें, मतलब जो खेल सब खेलते हैं थोड़ा बच करके या फिर प्रोटेक्शन ले करके, जैसा अब क्रिकेट खेल रहे हैं, गुल्ली डंडा खेल रहे हैं तो चश्मा पहन ले, आजकल तो गॉगल सब पहना जा सकता है, वो सब कर सकते हैं। और जो मशीन वाले काम कर रहे हैं वो लोग भी अपना प्रोटेक्शन ले, क्योंकि कुछ भी वेल्डिंग का काम कर रहे हैं कुछ भी हो सकता है, तुरंत छींटा पड़ सकता है। तो वैसे में ज़्यादातर लोग चश्मा के उपयोग से सही होगा। और खान पीन में जैसे कि विटामिन ए वाला चीज़ सब ले ताकि आँख सही रहे।
1: अंत में आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि नेत्रदान के बारे में आप क्या सोचते हैं और क्या कहना चाहेंगे हमारे श्रोताओं को?
0: नेत्रदान मानवता के सबसे महान सेवाओं में से एक है। आप तो इस दुनिया से चले जाएंगे लेकिन आपकी आंखें अमर हो जाएगी। हम अपने साथ अपनी आंखें नहीं ले सकते, वो हमारे कुछ काम की नहीं, लेकिन हमारी आंखों से किसी व्यक्ति को दुनिया देखने का अवसर मिल सकता है। इससे बड़ा क्या उपहार हो सकता है? वो व्यक्ति जो वर्षों से दुनिया देखने का इंतजार कर रहा है, आपके एक छोटी सी सोच से उसका जीवन बदल सकता है। अंत में कहना चाहूँगी, हमारी आंखें हैं अनमोल, इन्हें नष्ट ना करें। हमारी आंखें हैं अनमोल, इसे नष्ट ना करें, नेत्रदान करें और मृत्यु के बाद भी किसी की दुनिया रोशन करें।
1: श्रोताओं, जिस तरह रक्तदान महादान है तो उसी ही तरह ये नेत्रदान भी महादान है, जिससे आप अपनी आंखों से दूसरे को रोशनी दे सकते हैं। तो मैडम, आपने हमारे श्रोताओं को बहुत अच्छी जानकारियां दी। हमें उम्मीद है कि हमारे श्रोता आपके बातों से जागरूक होंगे और नेत्रदान के लिए आगे आएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: श्रोताओं, अभी हम जानकारी ले रहे थे नेत्रदान पखवाड़ा में, विशेष नेत्रदान महादान। जानकारी दे रही थी डॉक्टर सेलिन सोशन टोपनो, जो नेत्र रोग विशेषज्ञ सदर अस्पताल चैंबा की हैं।
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 7 करोड़ से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपने बैंक शाखा से संपर्क करें।
4: क्या आप तनाव, चिंता, उदासी, मानसिक परेशानी या आत्महत्या के विचारों से जूझ रहे हैं? याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। मानसिक स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है। मदद के लिए संपर्क करें रिनपास कांके रांची।
5: पिछले 100 वर्षों से मानसिक स्वास्थ्य चिकित्सा के क्षेत्र में एक अग्रणी संस्थान, जहां अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा मानसिक स्वास्थ्य संबंधी परामर्श और नशा मुक्ति का निःशुल्क उपचार उपलब्ध है। डायल करें 24/7 हेल्पलाइन नंबर 9471366697, टोल फ्री नंबर 1444-99 या 1800-345-4060 पर।
4: समय पर मदद लें, स्वस्थ मन बेहतर जीवन पाएं। रिनपास एवं झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।

तो इसी के साथ ही हमारा आज का आपका स्वास्थ्य कार्यक्रम भी समाप्त होता है। अगले बार कुछ विशेष जानकारियों के साथ हम पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे यानी रमेश दास को विदा दें। नमस्कार, अपना ख्याल रखिएगा।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपका स्वास्थ्य। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं, FM के 101.7 MHz से। आइए अब हम आपको ले चलते हैं आकाशवाणी के रांची केंद्र, जहां से आप सुन सकेंगे प्रादेशिक समाचार और जिले में आजकल। कृपया प्रतीक्षा करें।

घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल, देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।

0: प्रसार भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: वेक्टर जनित रोग, मलेरिया, फाइलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, कालाजार और जापानीज इंसेफेलाइटिस से बचाव के लिए मच्छरों से अपना बचाव करें। अपने घर के आसपास सफाई रखें, जल जमाव न होने दें, पानी के बर्तनों को ढक कर रखें, पूरे आस्तीन के कपड़े पहनें और हमेशा मच्छरदानी के अंदर सोएं।
2: बुखार होने पर ओझागुनी के पास ना जाएं, अपने गांव की सहिया को बताएं या नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में जाएं, मुफ्त जांच और उपचार कराएं।
1: वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: कम प्रीमियम ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही RPLI, इससे बेहतर कुछ नहीं।
4: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। जेपीएससी परीक्षा में कथित अनियमितता मामले में पूर्व अध्यक्ष एल खियांगते को राहत नहीं। रांची की विशेष अदालत ने खारिज की जमानत याचिका। शिक्षक दिवस पर राष्ट्रपति ने प्रदान किए राष्ट्रीय पुरस्कार। धनबाद के मुनमुन भट्टाचार्य भी सम्मानित। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने दी बधाई। वोटर लिस्ट गड़बड़ी की जांच के लिए सीईओ के रवि कुमार पहुंचे संथाल परगना। पाकुड़ में फर्जीवाड़े के आरोप में 5 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज। हजारीबाग के मेरू कैंप में बीएसएफ की भव्य पासिंग आउट परेड। 140 नव आरक्षकों ने ली देश सेवा की शपथ। और जमशेदपुर में राज्य रैंकिंग टेबल टेनिस चैंपियनशिप का दूसरा दिन 7 जिलों के 154 खिलाड़ी दिखा रहे हैं दमखम। कल खेले जाएंगे फाइनल मुकाबले। और अब समाचार विस्तार से। रांची की अपर न्यायायुक्त की अदालत ने जेपीएससी परीक्षाओं में अनियमितता के मामले में जेल में बंद आयोग के पूर्व अध्यक्ष एल खियांगते की जमानत याचिका खारिज कर दी है। सीआईडी ने जमानत का कड़ा विरोध करते हुए आरोप लगाया कि परीक्षा कराने वाली एजेंसी चयन में उनकी भूमिका थी और उन्होंने करीब 2 करोड़ रुपए का कमीशन लिया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 प्रदान किए। देश के 69 शिक्षकों के साथ धनबाद के मुनमुन भट्टाचार्य को भी इस राष्ट्रीय सम्मान से नवाजा गया। वह इस वर्ष झारखंड की एकमात्र शिक्षिका हैं जिन्हें सरकारी स्कूल में अंग्रेजी शिक्षा को सुगम बनाने के लिए सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षकों से पाठ्य पुस्तकों से आगे बढ़कर विद्यार्थियों के जीवन को संवारने और उनका बचपन सुरक्षित रखने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार विजेताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि हर बच्चे के भीतर की मासूमियत को जीवित रखने के लिए शिक्षकों को भी अपने भीतर के बच्चे को जीवित रखना चाहिए।
1: मैं पूरे शिक्षा जगत से ये कहना चाहता हूँ कि हमें पहले से ज्यादा किताबों से बाहर निकल करके, सिलेबस से बाहर निकल करके बच्चों की जिंदगी में घुसना पड़ेगा। बचपन मरने नहीं देना चाहिए और बचपन बनाए रखने का सबसे बड़ा काम टीचर कर सकते। टीचर का काम है कि उसके भीतर का बचपन बना रहे।
0: शिक्षक दिवस पर राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन को नमन कर शिक्षकों को शुभकामनाएं दी। राजभवन में राज्यपाल ने उनके चित्र पर माल्यार्पण किया। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में एआई और आधुनिक तकनीक के जरिए बच्चों को अपनी संस्कृति से जोड़कर शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ किया जा रहा है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार मतदाता सूची पुनरीक्षण की जांच के लिए संथाल परगना के 4 दिवसीय दौरे पर हैं। पहले दिन पाकुड़ के आहूत गांव में जांच के दौरान फर्जी दस्तावेजों से वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के प्रयास का खुलासा हुआ। सीईओ के निर्देश पर 4 अपात्रों और 1 सीएससी संचालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई।
2: पाकुड़ एसी बरवा में कुछ शिकायत प्राप्त हुआ, उसमें कुछ फेक सर्टिफिकेट के सामने आए। साथ में एक प्रज्ञा केंद्र है, वो भी उसमें इन्वॉल्व था। वो फेक सर्टिफिकेट देने के लिए उनका संबंध में एफआईआर दर्ज करने के लिए निर्देश दिया गया। साथ में अंचलाधिकारी द्वारा एक निर्धारित प्रक्रिया है सरकार का, उसी प्रक्रिया का उल्लंघन करते हुए एसआर के लिए अलग से जाति प्रमाण निवारण पत्र दिया जा रहा है, वो बिल्कुल गलत है। उसके बारे में हम लोग आगे कार्रवाई।
0: नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य को प्रभावित करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि पुनरीक्षण के दौरान ऑनलाइन प्रमाण पत्र जारी करने के सरकारी आदेश से पारदर्शिता पर असर पड़ सकता है। श्री मरांडी ने निर्वाचन आयोग से निष्पक्ष सत्यापन की मांग की है। हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल ने राज्य सरकार पर विपक्ष के विधायकों की रेकी कराने का गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सदर विधायक प्रदीप प्रसाद के आवास के सामने हाई रेजोल्यूशन सीसीटीवी कैमरा लगाना लोकतंत्र में एक बड़ा अपराध है। उन्होंने इस मामले में पुलिस से 48 घंटे बाद भी खुलासा न होने पर सवाल उठाए हैं। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR News Alerts। और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन। भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने झारखंड परीक्षा लीक मामले को पेपर की लूट करार दिया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बात करते हुए उन्होंने विपक्षी दलों विशेषकर राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि परीक्षा के मुद्दे पर दिल्ली में शोर मचाने वाले नेता झारखंड के अभ्यर्थियों के भविष्य पर मौन साधे हुए हैं।
3: जो कुछ झारखंड में तथ्य प्रकाश में आया है उसने यह साफ किया है कि यह पेपर लीक नहीं बल्कि पेपर लूट है, और इस लूट की छूट कौन दे रहा है ये कम से कम राहुल गांधी जी को बताना चाहिए। परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि जितने भी राजनीतिक दल दिल्ली में परीक्षा के विषय को लेकर दहाड़ और चिंगाड़ रहे थे, झारखंड के मुद्दे के ऊपर तीन बंदर हो गए हैं।
0: केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने झारखंड में प्रदर्शनकारी छात्रों पर दर्ज FIR को लेकर राज्य सरकार और विपक्षी गठबंधन पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने सरकार पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि परीक्षा धांधली की CBI जांच होनी चाहिए क्योंकि यहां युवाओं का भविष्य दांव पर लगा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव मिथिलेश ठाकुर ने दावा किया है कि राज्य सरकार की नीतियों से छात्र पूरी तरह संतुष्ट हैं। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि छात्रों के विरोध के पीछे भाजपा का राजनीतिक एजेंडा है। उन्होंने आश्वस्त किया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आगामी परीक्षाओं में युवाओं को पारदर्शी अवसर देने के लिए प्रतिबद्ध है।
4: सरकार की जो निर्णय हुए और माननीय न्यायालय ने भी जो आदेश पारित किया उसके विरुद्ध तो छात्रों का कहीं से भी कोई आक्रोश नहीं, कोई प्रदर्शन नहीं, छात्र पूरी तरह से संतुष्ट है क्योंकि राज्य के हर वर्ग के लोगों के हितों की रक्षा करने का संकल्प हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने ले रखा है और मुद्दा विहीन हो गई है भारतीय जनता पार्टी तो ये छात्रों की आड़ में अपनी राजनीति रोटी सेकना चाहती है।
0: बोकारो के बिरसा आश्रम में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सेवा संकल्प अभियान को लेकर भाजपा की जिला स्तरीय कार्यशाला आयोजित की गई। मुख्य अतिथि प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू और सांसद ढुलू महतो ने कार्यकर्ताओं से PM मोदी के सेवा एवं राष्ट्र निर्माण के संदेश को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का आह्वान किया। बोकारो के शिबू सोरेन स्मृति भवन में आज झारखंड आंदोलनकारियों के लिए भव्य सम्मान समारोह आयोजित किया गया। उपायुक्त अजय नाथ झा और SP नाथु सिंह मीणा ने आंदोलनकारियों को मेमेंटो और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। उपायुक्त ने कहा कि यह सम्मान उनके ऐतिहासिक संघर्ष और बलिदान के प्रति कृतज्ञता है। हजारीबाग के मेरू कैंप में सीमा सुरक्षा बल का भव्य दीक्षांत परेड आयोजित किया गया। देश के विभिन्न राज्यों से आए 140 नव आरक्षकों ने 44 सप्ताह का कड़ा बुनियादी प्रशिक्षण पूरा कर देश सेवा की शपथ ली। महानिरीक्षक धीरेन्द्र संभाजी कुटे ने जवानों को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। जमशेदपुर के JRD टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में द्वितीय झारखंड राज्य रैंकिंग टेबल टेनिस चैंपियनशिप का रोमांच आज दूसरे दिन भी जारी रहा। 7 जिलों के 154 खिलाड़ी अंडर 11 से लेकर सीनियर वर्ग में अपनी रैंकिंग के लिए मुकाबला कर रहे हैं। फाइनल मैच कल खेले जाएंगे। और अब अंत में मुख्य समाचार। JPSC परीक्षा में कथित अनियमितता मामले में पूर्व अध्यक्ष एल खियांगते को राहत नहीं। रांची की विशेष अदालत ने खारिज की जमानत याचिका। शिक्षक दिवस पर राष्ट्रपति ने प्रदान किए राष्ट्रीय पुरस्कार। धनबाद की मुनमुन भट्टाचार्य भी सम्मानित। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने दी बधाई। वोटर लिस्ट गड़बड़ी की जांच के लिए CEO के रवि कुमार पहुंचे संथाल परगना। पाकुड़ में फर्जीवाड़े के आरोप में 5 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज। हजारीबाग के मेरू कैंप में बीएसएफ की भव्य पासिंग आउट परेड 140 नव आरक्षकों ने ली देश सेवा की शपथ। और जमशेदपुर में राज्य रैंकिंग टेबल टेनिस चैंपियनशिप का दूसरा दिन, 7 जिलों के 154 खिलाड़ी दिखा रहे हैं दमखम, कल खेले जाएंगे फाइनल मुकाबले। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सवेरे 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
5: आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है, आइए सुनते हैं जिले में आजकल।
0: जिले में आजकल

0: इस अंक में आप सुनेंगे पलामू जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे पलामू संवाददाता।
1: पलामू के पाकी स्थित एमके कॉलेज में मेरा युवा भारत एवं राष्ट्रीय सेवा योजना के तत्वावधान में खेलो इंडिया डायलॉग खेल की बात पीएम के साथ कार्यक्रम के तहत युवा संवाद का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में मेरा भारत की पलामू जिला युवा अधिकारी सुमी सिंह ने कार्यक्रम के बारे में विस्तार से बताया।
2: पलामू में अभी है बहुत सारे स्पोर्ट्स एक अपॉर्चुनिटीज है, बहुत सारे यूथ निकल के आ रही है जो अपने से जा रहे, जैसे लेगी खेल की बस खेल अभी रोनी सस्ते जो अभी रैशेस हो रहा है, इसलिए उन्होंने किस तरीके से वो एग्जीक्यूट से जा सके जो अपनी खेल अच्छी स्पोर्ट्स ना, जैसे शुभम खा को वो साथ में ये करके आए हैं और वो काफी अच्छा कर रहे हैं। हमें लग रहा है की पलामू के पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज हो और सबसे बेहतर हमारा विश्व यूथ ऑपरेशन स्पोर्ट्स के पास माई भारत ओपन के थ्रू भी हम बहुत सारी स्टीम्स
1: नशीले पदार्थों की खरीद बिक्री रोकने के लिए पलामू पुलिस ऑपरेशन प्रहार चला रही है। इसी ऑपरेशन के तहत पुलिस ने 2,20,00,000 रुपए का 443 किलो गांजा नौडीहा थाना क्षेत्र से बरामद किया। पुलिस अधीक्षक कपिल चौधरी ने मामले को मीडिया में साझा किया।
3: भारत सरकार के निर्देशानुसार अवैध मादक पदार्थों की तस्करी और बिक्री की रोकथाम के लिए पलामू पुलिस के द्वारा ऑपरेशन प्रहार चलाया जा रहा है। इसी क्रम में नौडिया थाना अंतर्गत कल एक बड़ी सफलता पुलिस को हाथ लगी है। एक बड़ी गांजेरी टेप को जब्त किया गया है, इसमें कुल मिला के 4 फुट 40 किमी से अधिक गांजा जब्त हुआ है और जो ट्रक इसमें तस्करी में शामिल था वो ट्रक एक जब्त हुआ है और एक टेम्पो जिसमें ये तस्करी करते थे लोग, और इस पूरे घटनाक्रम में 2 व्यक्ति जो कि नौडिया थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं उनकी गिरफ्तारी हुई है।
1: मानदेय बढ़ोतरी समेत विभिन्न मांगों को लेकर जीएसएलपीएस कैडर संघ ने पलामू जिले के सभी प्रखंडों से पहुंची महिला कैडरों ने उपायुक्त कार्यालय पर रोषपूर्ण प्रदर्शन किया। कैडरों ने कहा कि 1700 रुपए में काम करना संभव नहीं है। कैडर गुड्डी कुमारी ने पूरे आंदोलन की जानकारी दी।
4: नमस्कार, मेरा नाम गुड्डी कुमारी नावा ब्लॉक से आई हूँ। हम एपीएस के पद पे काम करते हैं, जो बकरी के सुई होना दवाई होना मंथली 1700 महीना मिलता है, लेकिन 8 महीना हो गया अभी पेमेंट नहीं मिला है। अब बोलते हैं कि पेमेंट बढ़ाइए, पेमेंट दीजिए, तो बोलते हैं कि आप ट्रांसफर हो जाइए, निकल दीजिए, दूसरे कोई के खोज लेंगे। प्रतिदिन 50 रुपए में कोई काम करेगा? घर से हम लोग बहुत दबाव आ रहा है, इसके लिए हम लोग मानदेय के लिए यहाँ पे मांगने आए हैं, लेकिन डीसी सर मिलने से इनकार कर दिए।
1: राज्य सरकार द्वारा अभ्यर्थियों और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर किए गए लाठीचार्ज के विरोध में आहूत संपूर्ण झारखंड बंद का पलामू में भी असर दिखा। कहीं टायर जलाकर प्रदर्शन किया गया तो कहीं कार्यकर्ता सड़क पर बैठ गए। भाजपा के पलामू जिला अध्यक्ष अमित तिवारी ने घटनाक्रम की जानकारी दी।
5: जिस प्रकार से भ्रष्ट मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड के सभी संस्थाओं को बेचने का काम किया है और छात्र नौजवानों के अरमानों को सपनों को बेचने का काम किया है, चाहे जेपीएससी हो, चाहे एसएससी हो या दूसरे जो नौकरी देने वाले संस्थान हो, आज सब संस्थान को हेमंत सोरेन ने नीलाम कर दिया है।
1: पलामू में स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया गया। मुख्य समारोह पुलिस स्टेडियम में हुआ। यहां सूबे के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने ध्वजारोहण किया। जसप्रीत सिंह, आकाशवाणी समाचार, पलामू।
0: अभी आप सुन रहे थे पलामू जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आजकल।

आप सुन रहे थे जिले में आजकल आकाशवाणी के रांची केंद्र से। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ से। श्रोताओं आइए सुनते हैं कार्यक्रम आपकी पसंद। आपकी पसंद कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम के साथ मैं हूं अवनीश कुमार सिन्हा। पहली पसंद आप सबों की है। तुरी टोला चाईबासा से मदन ठाकुर, पुष्पा देवी, रोहित ठाकुर, संगीता देवी, लाडो, हरी, खुशी कुमारी, रिया कुमारी, अर्पिता कुमारी, आमजोड़ा पोखरिया, मालुका से शिवा गोप, प्रेम गोप, प्यारी बहने, संगीता गोप, लिपि गोप, दीपाली गोप, मोहल्डिया सोनवा से नंद किशोर महतो, राधामणि महतो, रवि बारी, वंदनी, दीपक, संतोष, राहुल, बिट्टू, आयुष, गीतेश, अन्नु, तन्नू, डिस्को महतो, भाई नंदू महतो, मेन रोड सोनवा से गुरुचरण नायक, अनसुईया नायक, प्रियंका नायक, देवाशीष नायक, गुलशन नायक, पिनाक पानी प्रधान, तनुश्री प्रधान, नील पानी प्रधान, निक पानी प्रधान, बड़ा बाम्बू सुपाही साई से देवेंद्र तांती, राकेश तांती, कुमारी निशा तांती, प्रकाश तांती, ललित प्रधान, उग्रसेन प्रधान, श्यामदेव नायक, पूजा, सीमा नायक, सुदर्शन प्रमाणिक, ममता, नमिता, सुशीला, ग्राम गेलिया लोहर से कोमल बेसरा, बासंती, रमेश, अन्नू, बनमाली, सिद्धू कुमारी और पूजा। इसी गीत को सुनना चाहे वसुंधरा कॉलोनी से एंटोला चाईबासा से भोला राम मधुर, अंबर कुमार मधुर, विशाल कुमार मधुर, प्रशांत कुमार मधुर, नीला मधुर, करुणा मधुर, रिंकी मधुर, अनिष्का मधुर, आस्था मधुर, श्रेष्ठा मधुर और सनी मधुर। आप सभी सुनना चाहते हैं फिल्म सफर का ये गाना। आवाजें हैं किशोर कुमार की।

अगली पसंद आप सबों की बड़ी बाजार चाईबासा से मुअज्जम बिहारी समीमा खानम निम्मी बिट्टू किरण रोशनी परी मुस्कान नबीहा बड़ी बाजार चाईबासा से भागीरथ महतो एवं इनके परिवार के सभी सदस्य कुचाई बिदरी से केपी सेठ सोए सरिता सोए दुर्गामती राजकुमारी रेशमी विशाल मुन्ना और शनि ग्राम सुराबेड़ा से बास सिंह सरदार वीरू सरदार रमेश कमल सिंह और अंशु एवं सरदार परिवार बड़ा बम्बू सुपाही साई से देवेंद्र तांती राकेश तांती निशा तांती प्रकाश तांती ललित प्रधान और देवेंद्र जी ग्राम गिले लोहर से कोमल गांव कीता सरायकेला से राधा कृष्ण गोप राजेश महतो अमित गोप अंकित गोप अभिषेक गोप आशीष गोप सुमित गोप विकी गोप सुनीता गोप गीता गोप रीता गोप सुलेखा गोप आराध्या गोप खुशी गोप माहिर गोप घोड़ाबंधा लोग क्षमा करेंगे बरियातू रांची से नीतीश मेघा आकांक्षा और अरब उत्तराखंड रुद्रपुर से राजीव सुमन और आदित्य आप सभी सुनना चाहते हैं फिल्म आँखें का ये नगमा आवाज़ें हैं लता मंगेशकर की।

कार्यक्रम के अंत में आई सुनते हैं फिल्म खुशबू का ये गाना, आवाज़ें किशोर कुमार की है, सुनना चाहा है आप सबों ने। अमलाटोला चाईबासा से गोरख प्रसाद गुप्ता, फूलबंती गुप्ता, अभिषेक गुप्ता और सोनू। गांव कुईड़ा से पौंडे बोईपाई, रेशनल बोईपाई, यशमती बोईपाई, कश्मीरा बोईपाई, मोनिका बोईपाई, सुनीता बोईपाई, मीनाक्षी बोईपाई, देवी चरण भंज और तारकेश्वर बांदा। जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, नवनीत भाटिया, पप्पी भाटिया। छोटा निमरी चाईबासा से बाबू राम, शांति देवी, ऋतिक कुमार, कोमल कुमारी, रोहन कुमार। महालीसाई से बिरबल महाली, सरस्वती महाली, प्रेमचंद महाली, फूलमणि महाली, शकुंतला महाली, सुमांति महाली, यशोदा महाली, शांति महाली। चांडिल ग्राम हारूडी से तुलसीदास महतो, कल्पना महतो, मनोरमा महतो, मनमहिनी महतो, दिनबंधु। खासवां पतिसाई से सुकरा नायक, मंजू नायक, जलेश्वर नायक, कौरव नायक। सोनवा गांव पोड़ाहाट से मिथुन नायक, राकेश नायक, मुकेश नायक, मकरू आचार्य। बड़ा निमटी चाईबासा से तुलसी पथिक, मीरा देवी, बजरंगी ठाकुर, मीतू रंजन, राजीव रंजन, मौलिक रंजन, अमृत कुमार, अमित कुमार, सुमित कुमार। चांदपुर पोटका से संतोष कुमार भगत, बासंती भगत, मीनाल कांति भगत, चांदनी भगत, मास्टर आयुष भगत, राजकुमार भगत। कॉलेज रोड घाटशिला से सोना, रूपा, मोनिका, शिवम, मौसमी, संतोष और आनंद।

इसके साथ ही हमारा आज का आपकी पसंद कार्यक्रम अब ही समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं, FM के 101.7 MHz पर। आइए सुनते हैं कार्यक्रम किसानवाणी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

0: किसान वाणी।
1: इहो पिना तेहेन्या चासबास अखड़ा किसान वाणी कार्यक्रम किसान वाणी अजो में सनाम चसी बुहा मिसी को अली ठाकुर चंद्र मुर्मू
2: और आशा मणि गोपका जोहार
1: चसी बुहा मिसी को नवा कार्यक्रम बोना जो में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार होते थे और तेहेन हो जाओ लेका के अडीगान चर्चा रिया विषय को इन साव सावते रस्क बकरा सेरेन को हो और इन साव सावते बड़ा जो कथा को हलिं अगु तरह का चसी बुहा मिसी को जाओगे नवा कार्यक्रम एतो प्रेमी चर्चा विषय लेकाते हम बढ़ाया का और तेहेन चर्चा विषय तो हुयुक कना शिक्षक दिवस मेनते हों चसी बुहा मिसी को शिक्षक मेन लेखान मीट माचेता मीटंग परब गे मीटंग दिन गे नवा जहां मनोत अगुआ कना चसी बुहा मिसी को नवा दो मनोतान सर्वपल्ली राधा कृष्णन आ जन्म महारे शिक्षक दिवस मेनते बन मनाव अगुआ नवा दो प्रत्येक वर्षो 5 सितंबर हिलोग गे मनावा चिकाते इन हिलोग आजा जन्म हुई लेन तहन 1888 रे और इन साव सावते नुकिन दो अब भारत रे मारांग मची रहे चे नुका मेन गनुआ राष्ट्रपति हुकिन तहे कना और इन साव सावते उपराष्ट्रपति हुकिन तहे कना अकिना उहर तहे कना चे समाज चे लेकाते मानस से लहा अबवा दिसम चे लेकाते मानस से लहा नो लगते जुदी माचेत कोआ चे शिक्षक कोआ चे मास्टर कोआ मिटंग योगदान तहन खान तीन मरंग कमी हुई दड़े आमेंते किन नवा किन मेन लेता और इन साव सावते चेक लेकाते अब समाज मड़ंग से सुधर साव सावते अब भारत रे राष्ट्र निर्माण जहां बन मेता गा कना नवा चेक लेकाते हुई दड़े आ नवा को लगते माचेत को गे मड़ंग से को जुदी कुरुमुटु को नुकाय को छुटो को आ इन खान दो मड़ंग से लहा दड़े गो
2: बिल्कुल ठाकुर जी आज 5 सितंबर शिक्षक दिवस पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। यह दिन भारत के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जीवन और शिक्षा के प्रति उनका दृष्टिकोण से जुड़ा है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 को हुआ। वे देश के प्रमुख दार्शनिक शिक्षाविद और राजनेताओं में शामिल रहे। यह दिन देश के उन शिक्षकों के प्रति सम्मान और आभार व्यक्त करने का अवसर है जो केवल किताबों का ज्ञान नहीं देते बल्कि विद्यार्थियों के व्यक्तित्व सोच और भविष्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनका मानना था कि शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ जानकारी या तकनीकी कौशल हासिल करना नहीं होना चाहिए। शिक्षा ऐसी सोच विकसित करे जिससे व्यक्ति तर्कशील बने, लोकतांत्रिक मूल्यों को समझे और जिम्मेदार नागरिक के रूप में समाज में योगदान दे, और यही विचार आज भी शिक्षक दिवस के मूल संदेश को मजबूत बनाता है।
1: सरी कथा गया समय और इन्हें साव सावते जहाँ ने तो गिद्र को स्कूल को रे कॉलेज को रे चे जहाँ के उनका ना मचेत को जगह मिना जहाँ मचेत को गिद्र को पढ़ावे को चे मास्टर को शिक्षक या शिक्षक जहाँ मिना को उनको मचेत बन मिता को करना उनको जहाँ को पढ़ावे को उनको दिन तिगे तेहिया दिन दो नवा शिक्षक दिवस में ते मनाओ अगुआ करना तो चसी बया मिसी को नेतो बोना जम के अनुआ खाटो मचाते तेहिया नवा शिक्षक दिवस इदी कते बीत बार कथा को तो दिलावन कार्यक्रम

इंसानों के कारण जलवायु परिवर्तन, यह यूनेस्को का संदेश है। कोयला, तेल और गैस जलाना, पेड़ काटना और पशुओं को पालना जैसे मानवीय काम ऐसे ग्रीन हाउस गैसेस उत्पन्न करते हैं जो पृथ्वी को गर्म कर देते हैं। औद्योगिक क्रांति के बाद से पृथ्वी की सतह का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा बढ़ चुका है और जमीन महासागर के मुकाबले और तेज गर्म हो रही है। बर्फ के प्राचीन अध्ययन बताते हैं कि हवा में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर अब 8 लाख सालों या 800 हजार सालों में सबसे ज्यादा है। बर्फ का पिघलना, समुद्र का स्तर बढ़ना, यह बदलाव वापस नहीं किया जा सकता। फिर भी उत्सर्जन लगातार बढ़ता जा रहा है। समुद्रों,

0: बर्फ की परतों और समुन्दर तल में होने वाले कई परिवर्तन अब लौटाए जा नहीं सकते। क्या आप जानते हैं पृथ्वी का तापमान लगभग 1.1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ चुका है, जिससे जमीन, समुन्दर और वायुमंडल सब पर गहरा असर पड़ा है।
1: कार्यक्रम किसानवाड़ी में आप सबका पुनः स्वागत है। किसान भाई बहनों,
2: हाँ आशा जी, रिवेश कथा बिन ले किया सांसांते अलाहों लंग रस्कों संदेश को लंग आंजम किया तो दिलाबुन कर्चकड़ा मानसित बुन लहान्योगार हों और तेहिं बुन बढ़ाया मीन गपाल मराव लिखाते चे भेंट वार्ता माध्यम ते फलदार पौधों से होने वाले लाभ विषय इदी कते और नोकिन ले आ लेबिया जोंको तिकिन और अकिन सला गपाल मराव रेमिना किना आसामनी गोप तिकिन इनखन दिलाबुन आंजम लेके नो मीन गपाल मराव।
1: फलदार वृक्षों से होने वाले लाभ, इस विषय में जानकारी देने के लिए आज हमारे बीच उपस्थित हैं। सबसे पहले आप अपना परिचय हमारे किसान भाई बहनों को दीजिए।
3: मेरा नाम है लेबिया जोंको और ग्राम जोंको ससन से, जिला हमारा पश्चिम सिंहभूम है।
1: आपका हम कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जोहार।
3: जोहार आपको भी।
1: आप फलदार वृक्षों को लगाए हुए हैं, तो ये जो फलदार वृक्ष हैं ये लगभग कितने साल हो गए हैं आप लगाए हुए?
3: कुछ पौधे जो है कि पिताजी के समय से लगा हुआ है, कुछ पौधे हमने जो लगाए हैं वो पल दे रहा है, अभी भी प्रत्येक साल हम 2-3 पौधा लगाते रहते हैं।
1: अच्छा, तो आपके यहाँ किस किस तरह के फलदार वृक्ष हैं?
3: अभी वर्तमान में जो पल हम लोग बेच रहे हैं या खा रहे हैं, ये अमरूद का पौधा है, संतरा का है, नींबू का है, पपीता का है और कुछ नया पौधा जो लगाए हैं, कटहल है, आंवला है और लीची है, इस तरह का हमने पौधा लगाए हैं।
1: हमारे बहुत से नए भी किसान भाई बहन रहते हैं, अगर वो इच्छुक है हम फलदार वृक्ष लगाए, तो शुरुआती प्रक्रिया किस तरह से करना ज्यादा अच्छा है?
3: कि हम लोग ये सोच करके हम लोग नहीं करते हैं कि पेड़ पौधा हम नहीं खाएंगे या बहुत समय लगेगा, लेकिन पेड़ पौधा हमारे लिए सहूलियत, और जिस समय हमने कुछ काम नहीं भी करेंगे या किसी कारणवश हम बीमार हो जाएंगे, तो उस समय हमारा क्या है कि फलदार वृक्ष जो है तैयार होकर हमारे फल देने लगेगा, जिससे हमारा कुछ इनकम भी आ सकता है।
1: बिल्कुल, तो इन सबको लगाना चाहते हैं तो किस तरह से गड्ढा तैयार कर?
3: ये कम से कम लाइन बाय लाइन अगर लगाया तो बहुत सुंदर लगेगा देखने में भी, और इसमें आपको कोई भी चीज को अगर उस बीच में कुछ खेती करना चाहते हैं, ट्रैक्टर चलाने में भी सहूलियत हो सकता है, उसमें खेती भी लगा सकते हैं, इसीलिए कम से कम 10-15 फीट की दूरी पर लगाएं और 2-3 फीट का गड्ढा जरूर करें।
1: अच्छा, तो ये जो जब गड्ढा तैयार करते हैं तो क्या इसमें खाद भी देते हैं?
3: जी, हम लोग जो है कि गोबर खाद देते हैं और जब पौधा लग जाने के बाद समय समय पर DAP, यूरिया, फास्फेट और पोटास हम लोग देते हैं।
1: अच्छा, ये तो शुरुआती प्रक्रिया हुआ, इसके बाद पौधा लगाने के बाद क्या इसमें भी फिर से पुनः खाद देते हैं?
3: जब हमको अगर उचित लगे कि हमारे जो मिट्टी जो आसपास जो है कि बहुत टाइट लगे तो उसको कोड़ कर मिट्टी को ढीली कर देना चाहिए।
1: अच्छा, और सिंचाई की क्या व्यवस्था है, सिंचाई किस तरह से करते हैं?
3: सिंचाई हमारा तालाब है, तालाब से हम लोग पानी लेते हैं और सब जो कि पेड़ पौधा में सब जगह लगा देते हैं।
1: जी, तो ये जो तालाब है आपका निजी है या सरकारी तालाब है?
3: अभी निजी है।
1: अच्छा, निजी तालाब है, तो इसके माध्यम से ही सिंचाई करते हैं?
3: उसी तालाब के माध्यम से पानी सिंचाई करते हैं।
1: अच्छा, आम लगाए हैं तो इसमें भी अलग अलग किस्मों को लगाए हुए हैं क्या?
3: जी जी, अलग अलग आम्रपाली लगाए हैं, लंगड़ा लगाए हैं, मालदा लगाए हैं, ये अभी शुरू नहीं है, पहले से जो लगा हुआ है वो पल दे रहा है, अभी जो नया वैरायटी लगाए हैं उसमें पल अभी नहीं पकड़ा है।
1: फलदार वृक्ष लगाते हैं, इनको लगभग बड़ा होने में कितना समय लगता है, अगर हम सही किस्मों का चुनाव करें तो?
3: अगर किसान, ये किसान के ऊपर भी डिपेंड करेगा, अगर हम सही से अगर देखभाल अगर मेहनत करें 3-4 साल में फल देना शुरू कर देगा।
1: अच्छा, 3-4 साल का ही बस समय लगेगा?
3: जी जी, जैसे कुछ कुछ है, जैसे अमरूद है 3-4 साल में पल आना शुरू हो जाएगा, अगर नींबू करे तो 1-2 साल फिर लेट हो जाएगा, इस प्रकार से सब अलग अलग का 1-2 साल का डिफरेंस हो सकते हैं, नहीं तो अगर सही से अगर देखभाल करे तो वो भी समय पर पल देना शुरू करेगा।
1: बिल्कुल, अगर अभी हम देखभाल की बात कर रहे हैं तो विशेष किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे फलदार जो वृक्ष हैं वो अच्छी तरह से बढ़े?
3: जिस तरह हम लोग मनुष्य पर ध्यान देते हैं कि बच्चा को विकसित होने के लिए, या उसी प्रकार पेड़ पौधे में भी समय समय पर उसको देखभाल, कीटनाशक की प्रकोप से बचाना है, उसको समय पर पानी देना चाहिए या समय पर खाद पानी देना चाहिए, उस तरह का अगर देखभाल करें तो उस पेड़ पौधा बढ़ने और फल देने में कोई कमी नहीं छोड़ेगा।
1: बिल्कुल, इसमें भी किसी तरह का रोग लगता है, कीटों का प्रकोप?
3: जी जी जी, बहुत प्रकार से जो कि पत्ती जो मरोड़ टाइप का या कीड़ा मकोड़ा भी बहुत सारे पेड़ पौधा को कमजोर देकर को अटैक करने का जाता है, तो उस प्रकार से हमको समय समय पर कीटनाशक का या घर पर तैयारी करके भी हम उसको प्रयोग कर सकते हैं, या तो हम बाजार में आसानी से रूप से खरीद करके भी हम लगा सकते हैं।
1: ये जो घर में आप तैयार कर रहे हैं बता रहे हैं, तो ये किस तरह का तैयार करते हैं, देसी दवा?
3: जैसे हम लोग गांव में आसानी से उपलब्ध रहता है करंज का पत्ता हो गया, करंज का पल हो गया या नीम का है, उस तरह का अगर करंज नीम का अगर पल है वो इकट्ठा करके उसको पाउडर बना करके पानी को उबला हुआ गर्म पानी में में उसको रख करके उसको स्प्रे कर सकते हैं।
1: अच्छा, तो ये लगभग एक दिन पहले ही इसको तैयार करते हैं, फिर ठंडा होने के बाद अगले दिन इस्तेमाल करते
3: हैं। जी जी जी जी। और उसमें हम कुछ अगर मिलाना चाहें, जैसे सर्फ हो चाहे शैम्पू हो, जिससे हमारा वहाँ चिपक स्थिति बने, तो उस तरह का हम लगा सकते हैं।
1: बिल्कुल, ये तो बहुत ही अच्छा घरेलू नुस्खा है।
3: जी जी जी।
1: हम इसे आसानी से घर पर ही तैयार कर सकते हैं। ये जो फलदार वृक्ष लगाए हैं, इनके बीच में आप किसी तरह का बागवानी भी किए हुए हैं क्या?
3: उस फलदार वृक्ष तो अपने जगह पर है, वहाँ पर छोटे छोटे जो साग सब्जी है वहाँ पर आसानी से हो सकता है, इसमें किसी भी प्रकार की पेड़ पौधों को दिक्कत नहीं होता है, इसीलिए वहाँ पर साग सब्जी लगाए हैं।
1: अच्छा, इन फलदार वृक्षों से आपको किस तरह का लाभ मिल रहा है?
3: जिस समय हमारे पास ऐसे ऐसे सब पौधा जो है कि अलग अलग समय में फल देता है, तो इसमें अलग अलग सीजन में हमको पैसा उपलब्ध है। जैसे अमरूद अलग सीजन में पलता है, नींबू अलग सीजन में पलता है, आम अलग सीजन में पलता है, तो इस प्रकार से हमको जिस समय पैसे की जरूरत होती है उस समय फल हमारे लिए तैयार हो जाता है, तो हमारा पैसा उपलब्ध हो जाता है।
1: बिल्कुल, और जब इसको बाजार में बेचते तो इसका सही मूल्य भी प्राप्त होता है।
3: जी जी जी।
1: तो दो पौधों के बीच की दूरी क्या रखे हैं?
3: 10 फीट।
1: अच्छा, और पौधे से पौधे की दूरी?
3: पौधे से पौधे की दूरी 10 फीट और जैसे लाइन की लाइन दूरी 10 फीट रखे हैं।
1: अच्छा, इन सबको फिर जब फल लाना शुरू हो जाता है, जब फल भी तैयार होता है, तो फिर इनको बेचते कहाँ है?
3: हमारा नजदीकी बाजार जो है कि सरायकेला चाईबासा में, दो जगह हमने ले जा करके बेचते हैं।
1: अच्छा, तो इसको ले जाने के लिए क्या सुविधा है?
3: हमारे पास बाइक है, मोटरसाइकिल है, और जिस तरह एक दिन में जैसे खत्म हो जाता है 10 से 20 किलो, हम ले जा करके बीच बीच में हम ले जा करके बेचते हैं।
1: ये तो बहुत ही अच्छा है, आपका यहाँ नजदीकी बाजार है और आने जाने के लिए आप अपने मोटरसाइकिल का ही प्रयोग करते हैं।
3: जी जी जी।
1: इसके अलावा भी आप मछली पालन का कार्य भी किए हुए हैं?
3: जी जी, हमारा तालाब होने के नाते मछली पालन का भी काम करते हैं और वहाँ बतख भी छोड़े हुए हैं।
1: अच्छा, कभी कभी वृक्षों में फल भी कम आता है, तो इसका भी कोई कारण रहता है या ये मौसम पर निर्भर करता है?
3: ये बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन हम ये मान के चलते अगर उसमें उसको खान पान अगर सही से उपलब्ध नहीं होने के कारण से भी फल फूल नहीं दे पाता, तो इसके हम लोग पौधे के जो अगल बगल जो है कि घास उस निकौनी करते हैं साफ करके, और उस मिट्टी को जो है कि भुरभुरा करके उस मिट्टी को नया मिट्टी को पलटी कर देते हैं, जिससे हमारा कुछ जो है कि उत्पादन बढ़ जाता है।
1: बिल्कुल। अच्छा, तो इसमें मिट्टी की तैयारी, खाद और सिंचाई, ये सब का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है।
3: ये अच्छा मुनाफा लेने के लिए, अच्छा उत्पादन लेने के लिए सारी बातों पर ध्यान देना जरूरी होगा।
1: बिल्कुल। जो फलदार वृक्ष लगाए हैं, इसमें आप अपना स्वयं का ही पूंजी लगाकर इसकी शुरुआत की हुई है?
3: जी जी, ये अपना पूंजी ही लगा करके अभी शुरुआत की है।
1: जी, तो आपको इसमें लगभग कितना मुनाफा हो रहा है?
3: एक पौधा में 7 से 10 हजार के बीच आ जाता है।
1: अच्छा, ये तो काफी अच्छा है। कृषि के साथ ये फलदार वृक्षों से किस तरह का लाभ मिल रहा है?
3: कि इसमें कृषि और फलदार वृक्ष एक दूसरे से अगर सोचा जाए तो एक दूसरे का पूरक है, जिससे एक दूसरे अगर मान लो पत्ता जो गिर जाता है तो उसको हम कंपोस्ट बना करके उसका प्रयोग हम लोग पेड़ पौधा या तो फिर साग सब्जी में भी प्रयोग कर सकते हैं।
1: बिल्कुल, देखा जाए तो दोनों तरफ लाभ ही लाभ है।
3: जी,
1: एक साल में लगभग आप 2 फसलों को प्राप्त कर सकते हैं।
3: जी जी जी, 1 साथ 2 फसलों का हम लोग लाभ ले सकते हैं।
1: अंत में आप हमारे किसान भाई बहनों को क्या संदेश देना चाहेंगे?
3: इस प्रकार हमने फलदार वृक्ष करके लगा करके हमारा जो है कि परिवार में आय को हम बढ़ा सकते हैं, और किसान वाणी को इस तरह का फलदार वृक्ष को लगाना चाहिए।
1: बिल्कुल, कृषि के साथ अगर फलदार वृक्ष लगाते हैं तो हरियाली भी है, आसपास का जो वातावरण है वो भी स्वच्छ बना रहता है।
3: जी जी, अगर आसपास का अगर हम लोग जहाँ रहते हैं अगर पेड़ पौधा अगर रहे तो वहाँ का शुद्ध हवा को भी मिलेगा, और जिससे हमारा जो है कि उससे जो आमदनी होगा तो उससे हमारे घर परिवार का एक अच्छा इनकम भी रहेगा।
1: बिल्कुल, फलदार वृक्षों से होने वाले लाभ, इस विषय में आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, अपना बहुमूल्य समय दिए, इसके लिए हम आपका पूरे आकाशवाणी परिवार की ओर से आपका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जोहार।
3: जोहार।
2: जैसे भी हम इसी को नहीं तो अड़ी बस कथा बन बढ़ाए कि आज फलदार पौधों से होने वाले लाभ विषय यदि करते नाकिन ले थन ले बिया जो को तिकिन नियते हम और हम देला नसेना बन आज हम लेके नो मीट बार जरूरी संदेश को।
4: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 8 सालों में कृषि एवं इससे जुड़े क्षेत्रों को आधुनिक बनाने और किसानों को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। साल 2013-14 में जहां कृषि बजट केवल 21,933 करोड़ रुपए था, वहीं साल 2022-23 में इसे बढ़ाकर 1,24,000 करोड़ कर दिया गया। तभी तो साल 2013-14 में जहां खाद्यान्न उत्पादन 265.05 मिलियन टन था, वहीं साल 2021-22 के तीसरे अग्रिम अनुमान में ये बढ़कर रिकॉर्ड 314.51 मिलियन टन हो गया। वहीं साल 2013-14 में बागवानी फसलों का उत्पादन जहां 280 मिलियन टन था, वहीं साल 2021-22 में ये बढ़कर 333.25 मिलियन टन हो गया। किसानों की कृषि संबंधी जरूरतों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना लागू की गई।
5: प्रधानमंत्री जो सम्मान निधि आती है ना, वो डायरेक्ट

0: खाते में आती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई व्यवधान नहीं। और फिर उसको निकाल के हम बाजरा को बीज ले आते हैं, गेहूं को बीज ले आते हैं, सरसों को बीज ले आते हैं। बातें हमारे जो खेल चल तो बढ़िया।
1: अब तक 11.37 करोड़ से भी ज्यादा पात्र किसानों को 2 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा राशि ट्रांसफर की जा चुकी है। किसानों को प्राकृतिक आपदा और बेमौसम बारिश से होने वाले फसल नुकसान से बचाने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की गई।
2: हमने 1800 रुपए प्रीमियम भरा था, अधिक वर्षा होने की वजह से पूरी फसल खराब हो गई थी। उसका हमने इंश्योरेंस कंपनी को उनको सूचना दी और उनके प्रतिनिधि आके हमारे खेतों का निरीक्षण किया उन्होंने, और उसके बाद में फिर हमारा बीमा 2022 में 76,000 रुपए मुझे प्राप्त हुआ।
1: अब तक 10.69 करोड़ से ज्यादा आवेदक किसानों को 1,18,195 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का भुगतान किया गया है। साल 2014 के मुकाबले अब किसानों को दलहन, तिलहन और धान की उत्पादन लागत से 1.5 गुना ज्यादा MSP दिया जा रहा है। इस बढ़े हुए MSP दर पर साल 2020-21 में 991 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा गेहूं व धान की खरीद हुई। 2,44,159 करोड़ रुपए मूल्य की गेहूं व धान की फसलों की रिकॉर्ड खरीदी हुई, जिससे 1.75 करोड़ से भी अधिक किसानों को फायदा हुआ। एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत 1,00,000 करोड़ रुपए की मदद से कृषि और इससे संबंधित बुनियादी ढांचों को विकसित किया जा रहा है।
3: AIF के थ्रू हमको लोन मिला, जिससे ये मिल चल रही है। इस क्षेत्र में ऐसी और भी मिलें, और भी प्रोजेक्ट हैं जो चल रहे हैं। ये सरकार का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, जिससे गांव में खुशहाली आ रही है।
1: 313.58 लाख से भी ज्यादा नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए। मिट्टी में पोषक तत्वों के अधिकतम उपयोग करने के लिए किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड जारी करने की शुरुआत की गई। विभिन्न चरणों में अब तक 23 करोड़ से भी ज्यादा सॉइल हेल्थ कार्ड्स जारी किए जा चुके हैं। किसान की आय में बढ़ोतरी करने और पर्यावरण को स्वस्थ रखने के लिए परंपरागत कृषि विकास योजना को बढ़ावा दिया गया।
4: ये गंगा के किनारे जैविक खेती करना ये बहुत ही जरूरी जो सरकार का उपक्रम है। प्रदूषण फैलता है, उससे भी उसको राहत मिलती है, और इस तरह से फसल भी अच्छी होती है और उसकी गुणवत्ता भी अच्छी होती है।
1: खेत स्तर पर जल उपयोग दक्षता बढ़ाने हेतु, सूक्ष्म सिंचाई के प्रोत्साहन हेतु प्रति बूंद अधिक फसल योजना क्रियान्वित की जा रही है। 10,000 से ज्यादा नए FPO का गठन और उसका संवर्धन किया जा रहा है।
5: मैं APO का डायरेक्टर हूँ। मेरा FPO पूरा हो गया है। 3,02,000 रुपया किसान का है शेयर होल्डर, और 3,02,000 रुपया सरकार दी है, उससे हम लोग खाद बीज का दुकान किया हूँ।
1: किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य दिलाने के लिए देश भर की मंडियों को आपस में ई नाम प्लेटफॉर्म से जोड़ा जा रहा है। ग्रामीण स्तर पर रोजगार को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन की शुरुआत की गई। देश को खाद्य तेल में आत्मनिर्भर बनाने के लिए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन की शुरुआत की गई। इसके तहत 11,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की राशि आवंटित की गई है। संवेदनशील कृषि उत्पादों की आवाजाही के लिए किसान रेल चलाई जा रही है। बहुत शीघ्र खराब होने वाले फल, सब्जियों एवं अन्य बागवानी उत्पादों की आवाजाही को सुनिश्चित करने के लिए किसान रेल का संचालन होने से किसानों को लाभ हो रहा है। कृषि को आधुनिक बनाने के लिए स्मार्ट उपकरण उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। इसके अलावा सिंचाई, कीटनाशकों और पोषक तत्वों के छिड़काव के लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी को भी अपनाया जा रहा है।
6: हमारी सरकार किसानों के हित में हर संभव कदम उठा रही है, लगातार एक के बाद एक नए कदम उठाती जा रही है।
1: कृषि में रिफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के 8 साल शानदार प्रदर्शन से उपलब्धियां बेमिसाल।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
6: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना
7: मिलेगा।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: ठाकुर जी, कार्यक्रम के अंत में अब हम आनंद लेते हैं उड़िया लोकगीत का, जितेन प्रधान व साथियों के स्वर में।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम किसान वाणी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। और आइए अब हम आपको ले चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र, जहां से आप सुन सकेंगे महिला एशिया कप T20 क्रिकेट मैच 2026 के अंतर्गत भारत और पाकिस्तान के बीच खेले जाने वाले क्रिकेट मैच के सीधा प्रसारण के लिए।

0: दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम दुबई।
1: हवा महल में आज हमारी श्रृंखला सुनो कहानी।
2: दोस्तों, हवा महल कार्यक्रम में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला सुनो कहानी। सुनो कहानी में हम आपको सुनवा रहे हैं गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की लिखी कहानियां। आज आपको सुनवा रहे हैं कहानी पिंजर, वाचन स्वर आपकी रेडियो सखी ममता सिंह का। जब मैं पढ़ाई की पुस्तकें समाप्त कर चुका तो मेरे पिता ने मुझे वैदक सिखाना चाहा और इस काम के लिए एक जगत के अनुभवी गुरु को नियुक्त कर दिया। मेरा नवीन गुरु केवल देशी वैदक में ही चतुर न था बल्कि डॉक्टरी भी जानता था। उसने मनुष्य के शरीर की बनावट समझाने के आशय से मेरे लिए एक मनुष्य का ढांचा यानी कि हड्डियों का पिंजर मंगवा दिया था, जो उस कमरे में रखा गया जहां मैं पढ़ता था। साधारण व्यक्ति जानते हैं कि मुर्दा विशेषतः हड्डियों के पिंजर से कम आयु वाले बच्चों को जब वे अकेले हों कितना अधिक भय लगता है। स्वभावतः मुझको भी डर लगता था और आरंभ में मैं कभी उस कमरे में अकेला न जाता था। यदि कभी किसी आवश्यकतावश जाना भी पड़ता तो उसकी ओर आंख उठाकर न देखता था। एक और विद्यार्थी भी मेरा सहपाठी था जो बहुत निर्भय था। वो कभी उस पिंजर से भयभीत न होता था और कहा करता था कि इस पिंजर की सामर्थ्य ही क्या है जिससे किसी जीवित व्यक्ति को हानि पहुंच सके। अभी हड्डियां हैं, कुछ दिनों पश्चात मिट्टी हो जाएंगी। किंतु मैं इस विषय में उससे कभी सहमत न हुआ और सर्वदा यही कहता रहा कि ये मैंने माना कि आत्मा इन हड्डियों से विलग हो गई है, तब भी जब तक ये विद्यमान है वो समय असमय पर आकर अपने पुराने मकान को देख जाया करती है। मेरा ये विचार प्रकट में अनोखा या असंभव प्रतीत होता था और कभी किसी ने ये नहीं देखा होगा कि आत्मा फिर अपनी हड्डियों में वापस आई हो। किंतु ये एक अमर घटना है कि मेरा विचार सत्य था और सत्य निकला। कुछ दिनों पहले की घटना है कि एक रात को गृहस्थ आवश्यकताओं के कारण मुझे उस कमरे में सोना पड़ा। मेरे लिए ये नई बात थी, इसलिए नींद न आई और मैं काफी समय तक करवटें बदलता रहा, यहाँ तक कि समीप के गिरजाघर ने 12 बजाए। जो लैंप मेरे कमरे में प्रकाश दे रहा था वो मध्यम होकर धीरे धीरे बुझ गया। उस समय मुझे उस प्रकाश के संबंध में विचार आया कि क्षण भर पहले वो विद्यमान था किंतु अब सर्वदा के लिए अंधेरे में परिवर्तित हो गया। संसार में मनुष्य जीवन की भी यही दशा है, जो कभी दिन और कभी रात के अनंत में जा मिलता है। धीरे धीरे मेरे विचार पिंजर की ओर परिवर्तित होने आरंभ हुए। मैं हृदय में सोच रहा था कि भगवान जाने ये हड्डियां अपने जीवन में क्या कुछ न होंगी। सहसा मुझे ऐसा ज्ञात हुआ जैसे कोई अनोखी वस्तु मेरे पलंग के चारों ओर अंधेरे में फिर रही है। फिर लंबी सांसों की ध्वनि जैसे कोई दुखित व्यक्ति सांस लेता है मेरे कानों में आई और पांवों की आहट भी सुनाई दी। मैंने सोचा ये मेरा भ्रम है और बुरे स्वप्नों के कारण काल्पनिक आवाजें आ रही हैं। लेकिन पांव की आहट फिर सुनाई दी। इस पर मैंने भ्रम निवारण हेतु उच्च स्वर से पूछा, कौन है, कौन है यहाँ? ये सुनकर वो अपरिचित शक्ल मेरे समीप आई और बोली, मैं हूँ, मैं अपने पिंजर को देखने आई हूँ। मैंने विचार किया मेरा कोई परिचित मुझसे हंसी कर रहा है, इसलिए मैंने कहा, ये कौन सा समय पिंजर देखने का है? वास्तव में तुम्हारा अभिप्राय क्या है? ध्वनि आई, मुझे असमय से क्या अभिप्राय, मेरी वस्तु है, मैं जिस समय चाहूं इसे देख सकती हूँ। आह, क्या तुम नहीं देखते, ये मेरी पसलियां हैं जिनमें वर्षों मेरा हृदय रहा है। मैं पूरे 26 बरस इस घोंसले में बंद रही जिसको अब तुम पिंजर कहते हो। यदि मैं अपने पुराने घर को देखने चली आई तो इसमें तुम्हें

0: क्या बाधा हुई?
1: मैं डर गया और आत्मा को टालने के लिए कहा, अच्छा ठीक है ठीक है, तुम जाकर अपना पिंजर देख लो, मुझे तो नींद आ रही है, मैं सोता हूँ। मैंने हृदय में निश्चय कर लिया कि जिस समय वो यहाँ से हटे मैं तुरंत भागकर बाहर चला जाऊंगा। लेकिन वो टलने वाली न थी, कहने लगी, क्या तुम यहाँ अकेले सोते हो? अच्छा आओ कुछ बातें करें। उसका आग्रह मेरे लिए व्यर्थ की विपत्ति से कम न था। मृत्यु की रूपरेखा मेरी आंखों के सामने फिरने लगी, लेकिन विवशता से उत्तर दिया, अच्छा तो बैठ जाओ और कोई मनोरंजक बात सुनाओ। आवाज आई, लो सुनो, 25 बरस बीते, मैं भी तुम्हारी तरह मनुष्य थी और मनुष्यों में बैठकर बातचीत किया करती थी, लेकिन अब श्मशान के शून्य स्थान में फिरती रहती हूँ। आज मेरी इच्छा है कि मैं फिर एक लंबे समय के पश्चात मनुष्यों से बात करूं। मैं प्रसन्न हूं कि तुमने मेरी बातें सुनने पर सहमति प्रकट की है। क्यों, तुम बातें सुनना चाहते हो या नहीं? ये कहकर वो आगे की ओर आई और मुझे मालूम हुआ कि कोई व्यक्ति मेरे पांव के पास बैठ गया है। फिर इससे पूर्व कि मैं कोई शब्द मुख से निकालूं, उसने अपनी कथा सुनानी आरंभ कर दी। विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं सुनो कहानी। आज रविंद्रनाथ टैगोर की लिखी कहानी पिंजर। वो बोली, महाशय, जब मैं मनुष्य के रूप में थी तो केवल एक व्यक्ति से डरती थी और वो व्यक्ति मेरे लिए मानो मृत्यु का देवता था। वो था मेरा पति। जिस प्रकार कोई व्यक्ति मछली को कांटा लगाकर पानी से बाहर ले आया हो, वो व्यक्ति मुझको मेरे माता पिता के घर से बाहर ले आया था और मुझे वहां जाने न देता था। अच्छा था उसका काम जल्दी ही समाप्त हो गया, अर्थात विवाह के दूसरे महीने ही वो संसार से चल बसा। मैंने लोगों की देखा देखी वैष्णव रीति से क्रियाकर्म किया, लेकिन हृदय में बहुत प्रसन्न थी कि कांटा निकल गया। अब मुझको अपने माता पिता से मिलने की आज्ञा मिल जाएगी और मैं अपनी पुरानी सहेलियों से, जिनके साथ खेला करती थी, मिलूंगी। लेकिन अभी मुझको मायके जाने की आज्ञा न मिली थी कि मेरा ससुर घर आ गया और मेरा मुख ध्यान से देखकर अपने आप कहने लगा, मुझको तो इसके हाथ और पांव के चिन्ह देखने से मालूम होता है कि ये लड़की डायन है, डायन। अपने ससुर के वे शब्द मुझको अब तक याद है, वे मेरे कानों में गूंज रहे हैं। उसके कुछ दिनों बाद मुझे अपने पिता के यहाँ जाने की आज्ञा मिल गई। पिता के घर जाने पर मुझे जो खुशी प्राप्त हुई वो वर्णन नहीं की जा सकती। मैं वहां प्रसन्नता से अपने यौवन के दिन व्यतीत करने लगी। मैंने उन दिनों अनेकों बार अपने विषय में कहते हुए सुना कि मैं सुंदर युवती हूं, पर तुम कहो, सुनो, तुम कहो ना, तुम्हारी क्या सम्मति है? मैंने उत्तर दिया, मैंने तुम्हें जीवित देखा ही नहीं, मैं कैसे सम्मति दे सकता हूं? जो कुछ तुमने कहा ठीक होगा, ठीक। वो बोली, मैं कैसे विश्वास दिलाऊं कि इन दो गढ़ों में लज्जाशील दो नेत्र देखने वालों पर बिजलियां गिराते थे। खेद है कि तुम मेरी वास्तविक मुस्कान का अनुमान इन हड्डियों के खुले मुखड़े से नहीं लगा सकते। इन हड्डियों के चहुओर जो सौंदर्य था, अब उसका नाम तक बाकी नहीं है। मेरे जीवन के क्षणों में कोई योग्य से योग्य डॉक्टर भी कल्पना न कर सकता था कि मेरी हड्डियां मानव शरीर की रूपरेखा के वर्णन के काम आएंगी। मुझे वो दिन याद है
0: जब मैं चला करती थी तो प्रकाश की किरणें मेरे एक एक बाल से निकलकर प्रत्येक दिशा को प्रकाशित करती थीं। मैं अपनी बाहों को घंटों देखा करती थी। ये वही बाहें थीं जिसको मैंने दिखाई, अपनी ओर आसक्त कर लिया। संभवतः सुभद्रा को भी ऐसी बाहें नसीब न हुई होंगी। मेरी कोमल और पतली उंगलियां मृणाल को भी लजाती थीं। खेद है कि मेरे इस नग्न ढांचे ने तुम्हें मेरे सौंदर्य के विषय में सर्वथा झूठी सम्मति निर्धारित करने का अवसर दिया। तुम मुझे यवन के क्षणों में देखते तो आंखों से नींद उड़ जाती और वैदिक ज्ञान का सौदा मस्तिष्क से अशुद्ध शब्द की भांति समाप्त हो जाता। उसने कहानी का तारतम्य प्रवाहित करते हुए कहा। और फिर मेरे भाई ने निश्चय कर लिया था कि वो विवाह न करेगा और घर में मैं ही एक स्त्री थी। मैं संध्या समय अपने उद्यान में छाया वाले वृक्षों के नीचे बैठती तो सितारे मुझे घूरा करते और शीतल वायु जब मेरे समीप से गुजरती तो मेरे साथ अटखेलियां करती थी। मैं अपने सौंदर्य पर घमंड करती और अनेकों बार सोचा करती थी कि जिस धरती पर मेरा पांव पड़ता है यदि उसमें अनुभव करने की शक्ति होती तो प्रसन्नता से फूली न समाती। कभी कहती संसार के संपूर्ण प्रेमी युवक घास के रूप में मेरे पैरों पर पड़े हैं। अब ये संपूर्ण विचार मुझको अनेक बार विफल करते हैं कि आह क्या था और अब क्या हो गया। मेरे भाई का एक मित्र सतीश कुमार था जिसने मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरी का प्रमाण पत्र प्राप्त किया था। वो हमारा भी घरेलू डॉक्टर था। वैसे उसने मुझको नहीं देखा था लेकिन मैंने उसको एक दिन देख ही लिया और मुझे ये कहने में भी संकोच नहीं कि उसकी सुंदरता ने मुझ पर विशेष प्रभाव डाला। मेरा भाई अजीब ढंग का व्यक्ति था। संसार के शीत ग्रीष्म से सर्वथा अपरिचित वो कभी गृहस्थ के कामों में हस्तक्षेप न करता। वो मौन प्रिय और एकांत में रहा करता था जिसका परिणाम ये हुआ कि संसार से अलग होकर एकांत प्रिय बन गया और साधु महात्माओं का सा जीवन वो बिताने लगा।

दोस्तों, हवा महल कार्यक्रम में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला सुनो कहानी। आज आप सुन रहे थे गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की लिखी कहानी पिंजर का पहला भाग। इसका दूसरा भाग हम आपको सुनवाएंगे अगले शनिवार को सुनो कहानी में। कहानी में वाचन स्वर था आपकी रेडियो सखी ममता सिंह का। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हर्षवर्धन गवई।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।
1: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्प्रेरी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
2: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
1: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया।
2: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
1: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा
2: जी।
1: तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
2: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे,
1: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
2: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी देर में आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम चित्रलोक।

श्रोताओं, ये गीत आपने सुना फिल्म मैं वापस आऊँगा से, आवाज़ शिल्पा राव, अंतरानंदी, फहीम अब्दुल और इरशाद कामिल की थी। गीत के बोल इरशाद कामिल के और संगीत ए आर रहमान का।

0: श्रोताओं, ये गीत आपने सुना फिल्म रेड 2 से। आवाज़ें परंपरा टंडन और सचेत टंडन की थी। गीत के बोल कौसर मुनीर के और संगीत सचेत परंपरा का।
1: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
2: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली गलियां।
1: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
3: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
1: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
4: तुम्हारी याद सताते हैं
1: हर रोज सुबह 7 बजे, सिर्फ विविध भारती पर।

0: ये है विविध भारती।
1: विविध भारती देश का रेडियो।
2: ओ मेरे पिया दे रंग किया है वहाँ से टेली।
3: चाहे हो पुराने मधुर गाने या नए संगीत की ताजगी।
4: मैं निकला ओ गद्दी लेके ओ रास्ते पर।
1: चाहे हो मन लुभावनी बातें।
5: एक्टर बनने का शौक मुझे हुआ, मैंने शहीद फिल्म देखी थी दिलीप कुमार साहब की, और कुछ ही महीनों में फिल्म फेयर में टैलेंट कॉन्टेस्ट के लिए अर्जी छप कर आ गई। अर्जी मैंने भरी, धर्मेंद्र सिंह देओल, तस्वीरें भेज दी, मुझे बुला लिया गया और मेरी फोटो सिलेक्ट करने वाले थे दत्त साहब और नरगिस जी।
3: विविध भारती पर हर पल है खास।
1: आज के मेहमान और कार्यक्रम है अपने आप में अनोखे।
6: आज के फनकार।
3: विविध भारती हर रोज लाती है ढेर सारी खुशियाँ और ढेर सारा मनोरंजन।
6: विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।
1: विविध भारती, संगीत, मनोरंजन और संस्कृति का संगम।

0: श्रोता में गीत आपने सुना फिल्म आंखों की गुस्ताखिया से, आवाज़ विशाल मिश्रा की थी। गीत के बोल और संगीत विशाल मिश्रा का ही था।
1: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
2: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली गलियां।
1: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
3: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
1: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास, भूले बिसरे गीत।
2: तुम्हारी याद सताती है
1: हर रोज सुबह 7 बजे, सिर्फ विविध भारती पर।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सर फिरोजी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोहराया, वैश्विक अनिश्चितता के बीच 7.8% की जीडीपी वृद्धि भारत की आर्थिक शक्ति को दर्शाती है। उन्होंने नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के विद्यार्थियों को संबोधित किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भावी पीढ़ी के उद्यमियों और वैज्ञानिकों में स्वतंत्र सोच को प्रोत्साहित करने में शिक्षकों की भूमिका पर बल दिया। नेपाल में अचानक आई बाढ़ से प्रभावित जल विद्युत परियोजना की सुरंगों में फंसे लोगों को बचाने के लिए भारत और नेपाल का संयुक्त अभियान जारी। महाराष्ट्र के मेलशेत

0: और पेंच बाघ अभयारण्य गिद्धों के लिए सबसे सफल पुनर्वास स्थल बना। उत्तरी उत्तर पूर्वी राज्यों, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों, बिहार, पूर्वी राजस्थान, दिल्ली और मध्य प्रदेश में सोमवार तक तेज बारिश के आसार। और चाइना मास्टर्स बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी पुरुष डबल्स फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत की 7.8% की तिमाही वृद्धि आर्थिक शक्ति को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि भारत ने नीतिगत अवरोध से नीतिगत गतिशीलता तक का लंबा सफर तय किया है। श्री मोदी ने नई दिल्ली में SRCC के शताब्दी समारोह में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि दुनिया भारत को सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बनते हुए देख रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि SRCC ने वर्षों से छात्रों की कई पीढ़ियों को सीखने, आगे बढ़ने और समाज में बदलाव लाने का अवसर दिया है।
1: जब कोई इंसान 100 वर्ष जीता है तो उसे अनुभवों का सागर माना जाता है, और जब कोई संस्थान 100 वर्ष का होता है तो वो उपलब्धियों और प्रेरणाओं का महासागर हो जाता है। अपनी 100 वर्षों की इस यात्रा में SRCC ने पीढ़ियों को गढ़ा है, उन्हें उज्जवल भविष्य से जोड़ा है। जो आए उन्होंने पढ़ा और जो निकले वो गढ़े हुए निकले।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि 14 करोड़ भारतीय मिलकर भारत को विकसित और आत्मनिर्भर बनाएंगे। इससे पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने अपने भाषण में SRCC द्वारा वर्षों से उच्च स्तर बनाए रखने की सराहना की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज भारत तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। उन्होंने कहा कि वैश्विक बाजार में कुशल मानव संसाधनों की आवश्यकता है। केंद्रीय मंत्री ने इसे युवा आबादी के लिए एक अवसर बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी SRCC के शताब्दी समारोह में भाग लेने के लिए दिल्ली मेट्रो से गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि शिक्षकों को सर्वोच्च सम्मान दिया जाना चाहिए, क्योंकि वे भारत को सीखने और नेतृत्व करने में मदद करते हैं। शिक्षक दिवस पर आज एक लेख साझा करते हुए उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों में स्वतंत्र सोच को प्रोत्साहित करना, उनकी जिज्ञासा को जगाना, प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देना और उनकी तर्क शक्ति तथा निर्णय क्षमता को निखारना शिक्षण के सबसे उपयोगी और फलदायी आयामों में से है। राष्ट्रपति ने कहा कि प्रेरणा दायक शिक्षा से ही उद्यमियों, वैज्ञानिकों और रचनात्मक कलाकारों की पीढ़ियां तैयार की जा सकती हैं। शिक्षक दिवस के अवसर पर आज नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के माध्यम से ही विकसित भारत का संकल्प पूरा हो सकता है। उन्होंने कहा कि प्राथमिक विद्यालय में नगण्य ड्रॉप आउट दर शिक्षकों के प्रयासों के कारण ही संभव हो पाई है।
2: हमारे संविधान में निहित अवसर की समानता के आदर्शों को कार्य रूप देने का सबसे प्रभावी माध्यम शिक्षा है। हमारे देश में प्राइमरी स्कूल ड्रॉप आउट रेट 12 वर्ष पहले लगभग 4.5% था। अब ये ड्रॉप आउट रेट नहीं के बराबर है। ये उपलब्धि शिक्षकों के प्रयासों से संभव हो सकी है। इस राष्ट्रीय सफलता के लिए मैं सभी शिक्षकों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा।
0: राष्ट्रपति ने कहा कि भारत को विश्व की कौशल राजधानी के रूप में स्थापित करना और साथ ही ज्ञान शक्ति बनना देश की प्राथमिकता है।
2: चुने गए सुयोग्यों प्रशिक्षकों के योगदान को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दी गई है। देश के विकास में एकेडमिक एक्सेलेंस, स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप का बहुत अधिक महत्व है। भारत को नॉलेज सुपर पावर बनाने के साथ साथ स्किल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड के रूप में स्थापित करना हमारी राष्ट्रीय प्राथमिकता में से शामिल है।
0: राष्ट्रपति ने महिलाओं के अधिकारों और शिक्षा को आगे बढ़ाने में सावित्रीबाई फुले की महत्वपूर्ण भूमिका को भी याद कर उन्हें नमन किया। राष्ट्रपति मुर्मू ने स्कूली शिक्षा को शिक्षा प्रणाली का आधार बताया।
2: ज्ञान और कौशल तो कभी भी प्राप्त किया जा सकता है, परंतु बचपन में ही सदाचार की शिक्षा देना अधिक प्रभावी सिद्ध होता है। आरंभिक कक्षा में बच्चों के बौद्धिक, शारीरिक और नैतिक विकास पर निष्ठापूर्वक ध्यान देकर हमारे शिक्षक अच्छे विद्यार्थियों और कर्तव्यनिष्ठ नागरिकों की भावी पीढ़ियां तैयार करते हैं।
0: राष्ट्रपति ने कहा कि शिक्षकों का ये दायित्व है कि वे कुछ विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों में आत्मविश्वास जगाएं।
2: कुछ विद्यार्थी गांव के किसी सामान्य स्कूल से शहर के बड़े स्कूल में आते हैं और थोड़ा असहज हो जाते हैं। कुछ विद्यार्थी स्वभाव से ही संकोची होते हैं। कुछ विद्यार्थी में बहुत प्रतिभा होती है लेकिन उनमें आत्मविश्वास की कमी होती है। ऐसे सभी विद्यार्थी जो किसी कारण से कोई भी कमी महसूस करते हैं उनमें आत्मविश्वास जगाना और उन्हें आगे बढ़ाना शिक्षकों का विशेष दायित्व होना चाहिए।
0: समारोह में 27 राज्यों, 7 केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र सरकार के 6 संगठनों के 48 चयनित स्कूल शिक्षकों को पुरस्कार प्रदान किए गए। राष्ट्रपति उच्च शिक्षा संस्थानों और पॉलिटेक्निक के 21 शिक्षकों तथा संकाय सदस्यों को भी राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज शिक्षक दिवस के अवसर पर कानून, न्याय और विधिक शिक्षा पर मासिक व्याख्यान श्रृंखला शुरू करने की घोषणा की। ये व्याख्यान श्रृंखला कानून, न्याय और समाज से संबंधित महत्वपूर्ण समकालीन मुद्दों पर संवाद और विचारों के आदान प्रदान के लिए नियमित मंच प्रदान करेगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
4: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
5: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
4: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत और नेपाल के बचाव दल का चिली में सुरंग में बचाव अभियान जारी है और सुरंग के भीतर से भारी मलबा, पानी तथा कीचड़ हटाया जा रहा है। नेपाल में भारत के राजदूत नवीन श्रीवास्तव ने आज बताया कि बचाव अभियान को सुगम बनाने के लिए पास के स्याफ रुबेसी से सुरंग के प्रवेश द्वार तक एक पहुंच मार्ग का निर्माण भी चल रहा है। 26 अगस्त को नेपाल तिब्बत सीमा के पास हिमस्खलन के कारण अचानक बाढ़ आई। इस आपदा ने उत्तरी और मध्य नेपाल में व्यापक तबाही मचाई जिससे घर, सड़कें, पुल और जल विद्युत परियोजनाएं क्षतिग्रस्त हुई। इस बीच विनाशकारी बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 1344 हो गई है। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने आज स्वस्थ असहमति और विचार विमर्श की संस्कृति के महत्व पर जोर दिया। नई दिल्ली में चल रहे ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीश मंच के अंतर्गत भारत के मुख्य न्यायाधीश ने ब्रिक्स के सदस्य देशों और सहयोगी देशों के प्रतिनिधि मंडलों को संबोधित किया। एक रिपोर्ट।
6: न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने उचित न्याय सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने याद दिलाया कि नालंदा विश्वविद्यालय एक समय में सबसे प्रतिष्ठित शैक्षणिक केंद्र हुआ करता था, जहां विश्व भर के विद्यार्थियों और शोधकर्ताओं को बिना किसी भेदभाव या बाधा के प्रवेश दिया जाता था। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स को भी जीवंत नालंदा विश्वविद्यालय के रूप में जाना जाना चाहिए। मध्यस्थता पर एक सत्र के दौरान न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने मध्यस्थता संस्थानों के बीच सहयोग को मजबूत करने, पेशेवर प्रशिक्षण, बहुभाषी क्षमता और न्यायाधीशों, मध्यस्थों, वकीलों और व्यवसायों के बीच संवाद को बढ़ावा देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि मध्यस्थता को मजबूत किया जाना चाहिए ताकि संवाद कायम रह सके, व्यापार जारी रह सके और ब्रिक्स के सदस्य देशों के बीच विश्वास बढ़ सके। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि भारत शिलालेखों और समुद्री व्यापार से लेकर गणित तक अपनी विरासत का अध्ययन करने और उसे दोबारा प्राप्त करने में पहले से कहीं अधिक आत्मविश्वास से भरा हुआ है। नई दिल्ली में वार्षिक इतिहास पुरस्कार समारोह और डॉक्टर एस एल भैरप्पा स्मृति व्याख्यान में श्रीमती सीतारामन ने कहा कि भारत अब आत्मनिर्भर है।
7: इंडिया टुडे सेल्फ अश्योर्ड, हमने इस मामले में किसी और की अनुमति का इंतजार करना छोड़ दिया है और अब हम अपनी विरासत का अध्ययन खुद कर रहे हैं। हम शिलालेखों को पढ़ रहे हैं, अपने समुद्री व्यापार के इतिहास को समझ रहे हैं और गणित के जरिए कहानियों को पूरी प्रसन्नता और सटीकता के साथ सामने ला रहे हैं।
8: टेलिंग दीज स्टोरीज विद रियल प्लेजर।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं।
9: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान। पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ एआई टेक्नीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 10 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
10: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
11: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
0: ये आकाशवाणी है। महाराष्ट्र के मेलघाट और पेंच बाघ अभयारण्य बंदी प्रजनित गिद्धों के पुनर्वास के लिए भारत के सबसे सफल स्थलों के रूप में उभरे हैं, जहां जीवित रहने की उत्साहजनक दर दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने सोमवार तक पूर्वोत्तर राज्यों, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों, सिक्किम, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान, दिल्ली और मध्य प्रदेश में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। उधर बिहार के कई हिस्सों में बाढ़ के कारण जनजीवन प्रभावित है। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स फाइनल में पहुंच गई है। भारतीय जोड़ी ने आज सेमीफाइनल मुकाबले में मलेशिया के नूर मोहम्मद अजरीन अयूब और टैन वी क्योंग को 21-16, 18-21, 21-11 से हरा दिया। और महिला T20 क्रिकेट एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच दुबई में मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक पाकिस्तान ने 13 ओवर में 7 विकेट पर 45 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोहराया, वैश्विक अनिश्चितता के बीच 7.8% की GDP वृद्धि भारत की आर्थिक शक्ति को दर्शाती है। उन्होंने नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के विद्यार्थियों को संबोधित किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भावी पीढ़ी के उद्यमियों और वैज्ञानिकों में स्वतंत्र सोच को प्रोत्साहित करने में शिक्षकों की भूमिका पर बल दिया। नेपाल में अचानक आई बाढ़ से प्रभावित जल विद्युत परियोजना की सुरंगों में फंसे लोगों को बचाने के लिए भारत और नेपाल का संयुक्त अभियान जारी। और चाइना मास्टर्स बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी पुरुष डबल्स फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
12: Good evening. This is Akashvani. I am Valsa Williams with the news at 9.

धरती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।

श्रोताओं, गीत आप सुन रहे हैं फिल्म रोजा से, आवाज़ एसपी बाला सुब्रमण्यम और चित्रा की, गीत के बोल पीके मिश्रा के और संगीत एआर रहमान का।

ये है विविध भारती। आज के फनकार प्रोग्राम आप सुनेंगे थोड़ी ही देर में।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: चंदा मामा दूर के, पकाए भूर के।
0: जरा सुनिए

0: कैसी बना ये गाना।
1: एक जमाना था 1951 या 50 में, बाबूलाल चतुर्वेदी एक यहाँ प्रोग्राम इंचार्ज दिल्ली से आए।
0: संगीतकार रवि,
1: उन्होंने एक दिन फोन किया, कहने लगे यहाँ हम लोरियां रिकॉर्ड करना चाहते, बना रिकॉर्ड कर दो। तो मेरी माँ अक्सर गाना गा के नहीं, एक लाइन सुना करते, दो लाइन, चंदा मामा दूर के पुए पकाए दूर के। मैंने उसकी ट्यून बना ली, चंदा मामा दूर के पुए पकाए दूर के।
2: आप खाए थाली में, सुनने को थे प्याली में।
0: ऐसी अद्भुत यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: झीलों के शहर में रहने का ख्वाब कितना मीठा और सुहाना होता है, ये तो आपने सुना। लेकिन ये भी आपको बता दें कि विधु विनोद चोपड़ा मूल रूप से कश्मीर के ही हैं, इसीलिए शायद इनकी फिल्मों में हसीन वादियों की लोकेशन ज्यादा होती हैं।
1: और पढ़ाई लिखाई भी वहां हुई, कॉलेज भी वहां हुआ। सो अगर सही मानों में आप कहें तो कश्मीरी हूं मैं, कश्मीर से हूं और कश्मीर में ही मेरी कश्मीर के बाद मैं सीधा फिल्म इंस्टीट्यूट पूना में गया था।

मैं ये बात मान के चलता हूँ कि हिंदुस्तान में हर छोटे शहर में हर छोटा लड़का या हिंदी फिल्म का हीरो बनना चाहता है या क्रिकेट प्लेयर बनना चाहता है, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में दो ही हीरो हैं, या तो क्रिकेट प्लेयर्स हैं या हिंदी फिल्म के हीरो हैं।

हर बच्चे की तरह, छोटे शहर के बच्चे की तरह, मेरा भी एक ही सपना था कि मैं फिल्मों में कुछ करूं, और हिंदी फिल्मों में, और वहां कश्मीर में सिर्फ हिंदी फिल्म देखने को मिलती थी। और मैं पढ़ाई में बहुत तेज था, मैं फर्स्ट क्लास फर्स्ट हूँ इकोनॉमिक्स में, मैं टॉप किया हूँ यूनिवर्सिटी, नेशनल स्कॉलर ऑफ इंडिया हूँ। लेकिन बचपन से ही, और जब मैं फिल्म इंस्टीट्यूट गया, मैं माफ कीजिए आगे जा रहा हूँ, लेकिन एक बात जो कहना चाहूंगा आपसे, तो मुझसे ऋषिकेश मुखर्जी ने पूछा कि आप तो फर्स्ट क्लास फर्स्ट हैं इकोनॉमिक्स में, कैम्ब्रिज जाना चाह रहे हैं पीएचडी के लिए, तो आप फिल्म इंस्टीट्यूट क्यों आए? तो मैंने उनसे कहा क्योंकि मैं बेवकूफ हूँ। पूछा कि ये हर लड़का जो फिल्म इंस्टीट्यूट में आता है पढ़ाई के लिए, आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो बेवकूफ है? मैंने कहा नहीं, अगर उस लड़के के पास कैम्ब्रिज में पीएचडी करने की चॉइस हो, और एफटीआईआई से डीसीडी डिप्लोमा इन सिनेमा की चॉइस हो, और वो ऑप्ट करे यहाँ आना, तो वो बेवकूफ ही नहीं, गधा है बिल्कुल। तो फिर ऋषिदा ने मुझसे बड़े प्यार से पूछा कि आप गधे क्यों बन रहे हैं? तो मैंने उनको जवाब दिया कि जो बचपन में मेरी एक चाइल्डहुड फैंटेसी थी, जो एक ख्वाब था, मैं जो जितनी मेरी रैशनल सेंसेस हैं उनको ओवर रूल करके यहाँ आया हूँ। मतलब मैं बिल्कुल सोच नहीं रहा हूँ इस बात को, मैं सिर्फ दिल और जज्बात से ये डिसीजन ले रहा हूँ।

0: दोस्तों, विनोद चोपड़ा का घरेलू नाम है विधु, जिसको मिलाकर ये कहलाए विधु विनोद चोपड़ा। यदि आपने इनकी कोई फोटो या तस्वीर देखी हो तो निश्चित ही आप भी मानेंगे कि ये काफी हैंडसम हैं। लेकिन इन्होंने पर्दे के पीछे रहकर फिल्म निर्माण और निर्देशन की बागडोर ही क्यों संभाली, इसका भी एक राज है।
1: मैंने अपनी जो डिप्लोमा फिल्म थी मर्डर एट मंकी हिल में, उसमें मैं हीरो था, लेकिन मुझे बिल्कुल एक्टिंग करके मजा नहीं आया, बिल्कुल ही नहीं। और मुझे तो ऐसा लगता था उस समय भी और आज भी कि एक्टर्स जो हैं, ठीक है कि मैगजीन्स में उनकी फोटो छपती है, लोग कहते हैं वाह, लेकिन हैं वो सिर्फ पपेट्स हैं बिल्कुल, उनके धागे तो किसी और के हाथ में। जैसे आनंद में उसने बहुत कमाल की लाइन गुलजार भाई ने लिखी थी कि धागे ऊपर वाले के हाथ में, तो यहाँ धागे जो हैं उन एक्टरों के, वो हमारे हाथ में।

विधु विनोद चोपड़ा ने बहुत ही चुनिंदा फिल्में बनाई हैं। फिल्मकार के रूप में उनका नजरिया लीक से हटकर है, अपनी बात को फोकस करने का उनका अपना अंदाज है। 1942 ए लव स्टोरी से ही उन्होंने ये बात साबित कर दी थी।

विधु विनोद चोपड़ा ने जब फिल्मों में आना तय किया तभी ये सोच लिया था कि फिल्म मनोरंजन का मीडिया तो है लेकिन इसका उपयोग अपनी बात कहने के लिए कैसे किया जाए इस बात में सावधानी बरती जाए तो यकीनन फिल्मों का स्तर ऊंचा उठाया जा सकता है। आपको याद होगा कि उनकी हर फिल्म में एक नया विषय जरूर होता है, चाहे वो फिल्म मिशन कश्मीर हो, 42 ए लव स्टोरी हो, परिंदा हो या हो करीब, सभी में एक नया एहसास उनकी फिल्मकारी का आपको जरूर मिलता है।

मुन्ना भाई MBBS। इसके मुख्य चरित्र को लेकर उन्होंने कई समस्याओं को फिल्म के माध्यम से हमारे सामने पेश किया है। लोगों ने उनके बात कहने के इस अंदाज को भी बहुत बहुत पसंद किया है।

मुन्ना भाई एमबीबीएस के बाद लगे रहो मुन्ना भाई ने भी काफी लोगों को प्रेरित किया, इंस्पायर किया और ये फिल्म भी एक मिसाल बन गई।

0: और दोस्तों विधु विनोद चोपड़ा ने प्रोड्यूस की थी थ्री इडियट्स, देखी होगी आपने और मजा भी लिया होगा।
1: जब लाइफ हो आउट ऑफ कंट्रोल हो टोको करके गोल।

0: सन 2014 में विधु विनोद चोपड़ा ने प्रोड्यूस की थी फिल्म पी के।
1: तुझे तक तक तक तकते रहना, तेरी बक बक बक सुनते रहना।

0: आज का ये प्रोग्राम आज के फनकार केंद्रित था निर्माता निर्देशक विधु विनोद चोपड़ा पर, संपादन और प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। अब दीजिए इस प्रोग्राम से अपने दोस्त राजेंद्र त्रिपाठी को इजाजत। नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: हम जो गाना बनाते हैं उसमें 50% 50% हाथ जो है सिर्फ सॉन्ग राइटर का है।
0: संगीतकार ओपी नैयर।
1: ये हकीकत है, इसको बाकी लोग नहीं मानेंगे। जिगरा चाहिए ये मानने के लिए कि ओपी नैयर कुछ नहीं बगैर सॉन्ग राइटर के। मैं दूसरों की बात नहीं करता। आप 50% तो शायर हो गए और 25% जो काम है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है ऑर्केस्ट्रेशन में और सिंगर में। बाकी आप 25% अगर बोले तो क्रेडिट कंपोजर का है, ज्यादा कुछ है।
0: ऐसी अद्भुत यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। बस थोड़ी ही देर में प्रस्तुत होगा छाया गीत। कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

रात के शांत आकाश में टंगा चांद किसी प्रेम पत्र की तरह लगता है, जिसे प्रकृति ने हर प्रेमी के नाम लिखा हो। उसकी दूध या रोशनी मन की बेचैन लहरों को सहला देती है। जब

कोई अपने प्यार को याद करता है तो सबसे पहले उसकी निगाहें चांद की ओर उठती हैं, मानो चांद दूर बैठे उसके प्यार तक उसके दिल का हाल पहुंचा देगा।

जब ये रात अपने आंचल में सितारों के असंख्य दीपक सजा लेती है और चांद चुपके से आसमान की चौखट पर आ बैठता है, तो उसकी चांदनी इस जमी के साथ साथ प्रेम करने वालों के दिलों पर भी उतरती है। वो हर धड़कन से कहती है, सच्चा प्रेम आकाश की तरह असीम है और चांद की तरह हर अंधेरी रात में झिलमिलाती रोशनी का समंदर बनकर लौट आता है।

के चेहरे का रूप बन जाता है तो कभी किसी की याद का, कभी वो मिलन की रात का गवाह होता है तो कभी जुदाई की लंबी रातों का हमसफर। मगर उसकी चांदनी हर बार यही कहती है, मोहब्बत दूरियों से नहीं हारती, वो तो इंतजार से और भी गहरी हो जाती है।

चांद की तरह है। वो हर दिन एक सा नहीं रहता। कभी पूर्णिमा की उजली मुस्कान बनकर जीवन को आलोकित कर देता है, तो कभी अमावस्या की खामोशी में भीतर ही भीतर धड़कता रहता है। पर जैसे चांद बादलों भरी रात में भी कभी खोता नहीं, बस कुछ समय के लिए आंखों से ओझल हो जाता है, वैसे ही सच्चा प्रेम भी परिस्थितियों के बादलों में छिप सकता है, लेकिन मिटता कभी नहीं।

कहते हैं इश्क अगर सच्चा हो तो प्रेमियों की आंखों में चांद उतर आता है और चांदनी उनकी मुस्कान में खिल उठती है। मोहब्बत अगर चांद है तो विश्वास उसकी चांदनी है। चांद कभी कभी बादलों में छिप जाता है मगर चांदनी का एहसास हमेशा के लिए दिल में बस जाता है। जैसे सच्चा प्रेम दूर होकर भी दिल के आंगन को रोशन करता रहता है।

ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है FM के 101.7 MHz पर। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम। पहला गाना हमने लिया है फिल्म अनाड़ी से, गायक कलाकार हैं लता मंगेशकर।

अभी आपने सुना फिल्म आवारा का ये गाना, आवाज़ थी लता मंगेशकर की। और आइए सुनते हैं फिल्म फकीरा में लता मंगेशकर और किशोर कुमार को।

0: इसके साथ ही श्रोता, हमारा आज का सुरों के रंग कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं, FM के 101.7 MHz पर। कुछ ही पल में आप सुनेंगे समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत की सकल घरेलू उत्पाद दर 7.8% की तिमाही वृद्धि आर्थिक शक्ति को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि भारत ने नीतिगत अवरोध से नीतिगत गतिशीलता तक का लंबा सफर तय किया है। नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स SRCC के शताब्दी समारोह में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि दुनिया भारत को सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बनते हुए देख रही है।
2: दुनिया भारत को फ्रजाइल 5 बता रही थी, आज दुनिया भारत को फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बनते हुए देख रही है। 7.8% क्वार्टरली ग्रोथ ने देश का जोश बढ़ाया है। और इसी बीच जापानीज क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भारत की रेटिंग अपग्रेड कर दी है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि SRCC ने वर्षों से विद्यार्थियों की कई पीढ़ियों को सीखने, आगे बढ़ने और समाज में बदलाव लाने का अवसर दिया है।
2: जब कोई इंसान 100 वर्ष जीता है तो उसे अनुभवों का सागर माना जाता है, और जब कोई संस्थान 100 वर्ष का होता है तो वो उपलब्धियों और प्रेरणाओं का महासागर हो जाता है। अपनी 100 वर्षों की इस यात्रा में SRCC ने पीढ़ियों को गढ़ा है, उन्हें उज्जवल भविष्य से जोड़ा है। जो आए उन्होंने पढ़ा और जो निकले वो गढ़े हुए निकले।
1: इससे पहले शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत आज तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। प्रधानमंत्री समारोह में भाग लेने के लिए दिल्ली मेट्रो से पहुंचे थे। शिक्षक दिवस के अवसर पर आज नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के माध्यम से ही विकसित भारत का संकल्प पूरा हो सकता है। उन्होंने कहा कि प्राथमिक विद्यालय में नगण्य ड्रॉपआउट दर शिक्षकों के प्रयासों के कारण ही संभव हो पाई है। समारोह में 27 राज्यों, 7 केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र सरकार के 6 संगठनों के 48 चयनित स्कूल शिक्षकों को पुरस्कार प्रदान किए गए। राष्ट्रपति ने उच्च शिक्षा संस्थानों और पॉलिटेक्निक के 21 शिक्षकों तथा संकाय सदस्यों को भी राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने स्वस्थ असहमति और विचार विमर्श की संस्कृति के महत्व पर जोर दिया। नई दिल्ली में चल रहे ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीश मंच के अंतर्गत भारत के मुख्य न्यायाधीश ने ब्रिक्स के सदस्य देशों और सहयोगी देशों के प्रतिनिधि मंडलों को संबोधित किया। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज शिक्षक दिवस के अवसर पर कानून, न्याय और विधिक शिक्षा पर मासिक व्याख्यान श्रृंखला शुरू करने की भी घोषणा की। ये व्याख्यान श्रृंखला कानून, न्याय और समाज से संबंधित महत्वपूर्ण समकालीन मुद्दों पर संवाद और विचारों के आदान प्रदान के लिए एक नियमित मंच प्रदान करेगी। महाराष्ट्र के मेलघाट और पेंच बाघ अभयारण्य बंदी प्रजनित गिद्धों का पुनर्वास के लिए भारत के सबसे सफल स्थलों के रूप में उभरे हैं, जहां जीवित रहने की उत्साहजनक दर दर्ज की गई है। भारत और नेपाल के बचाव दल का चिली में सुरंग में बचाव अभियान जारी है और सुरंग के भीतर से भारी मलबा, पानी तथा कीचड़ हटाया जा रहा है। नेपाल में भारत के राजदूत नवीन श्रीवास्तव ने आज बताया कि बचाव अभियान को सुगम बनाने के लिए पास के सियाफ रुबेसी से सुरंग के प्रवेश द्वार तक एक पहुंच मार्ग का निर्माण भी चल रहा है। महिला टी20 क्रिकेट एशिया कप में भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया है। पाकिस्तान ने भारत के सामने जीत के लिए 56 रन का लक्ष्य रखा था। भारत ने 8 ओवर 4 गेंद में 3 विकेट खोकर लक्ष्य को हासिल कर लिया। बाएं हाथ की स्पिनर श्री चर्नी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 7 रन देकर 3 विकेट लिए। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब दिया गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अमृत भूषण। Prime Minister Narendra Modi today said India's 7.8% quarterly growth amid global uncertainty reflects its economic strength. He said India has come a long way from policy paralysis to policy dynamism. Addressing the gathering at the centenary celebrations of Sri Ram College of Commerce, SRCC, in New Delhi, Mr. Modi said the world is watching India become the fastest growing major economy. Contrasting past struggles with today's achievements, the Prime Minister emphasized that terrorism has been defeated, with armed forces confidently striking enemies in their own homes and peace restored from Jammu and Kashmir to the northeast.
2: Duniya Bharat ko fragile 5 bata rahi thi. Aaj duniya Bharat ko fastest growing major economy banne se hue dekh rahi. Abhi hafte bhar mein hi Bharat ki economy ko lekar कई सारी पॉजिटिव खबरें आई। 7.8% क्वार्टरली ग्रोथ ने देश का जोश बढ़ाया है और इसी बीच जापानीज क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भारत की रेटिंग अपग्रेड कर दी है। ये 7.8% की ग्रोथ भी ऐसे समय में आई है जब वेस्ट एशिया का युद्ध चल रहा है।
3: Presenting hard economic data to counter persistent critics, the Prime Minister shared that smartphone exports now exceed 2.5 lakh crore rupees, while domestic defence production has hit an all-time high of nearly 2 lakh crore rupees. Prime Minister said Sri Ram College of Commerce, SRCC, has given generations of students the opportunity to learn, grow and make a difference over the years. Mr. Modi said the college has distinguished itself over the years, making a mark for academic excellence. He termed the alumni of SRCC as very special and the OGs. The Prime Minister stated that former Finance Minister Arun Jaitley was an alumnus of SRCC. He said SRCC alumni have left their mark in every sector. Prime Minister Modi highlighted the profound significance of this 100-year milestone for both the college and the nation's education sector and paid tribute to founder Sri Ram and bowed to his enduring vision. President Draupadi Murmu today stressed that teachers must be held in the highest esteem as they help India learn and lead. In an article on the occasion of Teachers' Day, President Murmu said encouraging independent thinking in students, igniting their curiosity, promoting the tendency to ask questions, and sharpening their capacity for argument and judgment are among the most useful and rewarding dimensions of teaching. Earlier today, President Murmu conferred the National Teachers' Awards in New Delhi. 48 selected school teachers received the awards from the President. India and Nepal rescue teams are continuing a rescue mission at the Chilime Tunnel, removing heavy debris, water and mud from inside the tunnel. Ambassador of India to Nepal, Naveen Srivastav, said today work was also underway to construct an access road from nearby Siafrubesi to the tunnel portal to facilitate the rescue operation. In a social media post, Mr. Srivastav elaborated that given the difficult terrain and narrow valley, heavy helicopter usage is not possible. India continues to assist Nepal in the humanitarian assistance and disaster relief (HADR) operations in the country. Meanwhile, the death toll from the devastating flash floods in Nepal has risen to 1,344. Rescue operations are underway in 8 affected districts, while around 5,000 people remain missing. More than 13,000 people have been rescued so far. The India Meteorological Department has forecast heavy rainfall over northern and northeastern states, sub-Himalayan West Bengal, Bihar, East Rajasthan, Delhi and Madhya Pradesh till Monday. Thunderstorms accompanied with lightning and gusty winds are likely over Jammu and Kashmir, Ladakh, Rajasthan, West Bengal, interior Karnataka, Tamil Nadu, Puducherry, Karaikal and Andaman and Nicobar Islands for the next 2 days. In women's cricket, India defeated Pakistan by 7 wickets in a Group A match of the 2020 Asia Cup at Dubai International Stadium in UAE tonight. Pakistan had set a target of 56 runs for India. India achieved the target, comfortably scoring 57 for 3 wickets in 8.7 overs. Electing to bat first, Pakistan were all out for 55 in 18.1 overs. And that is the end of this news bulletin.
0: हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ से। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 11:10 हो रहे हैं। हमारी आज की सभा अब यहीं संपन्न होती है। कल सुबह यानी कि 5:56 पर हम आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। शुभ रात्रि। जय हिंद।